श्रोताओं, श्रद्धा हमें विश्वास करना सिखाती है और विश्वास ही हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला देता है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे मन के भावों में बसती है। आइए इसी आस्था और समर्पण के साथ एक भक्ति रचना सुनें।

श्रोताओं, भजन केवल संगीत नहीं, भावों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों के साथ श्रद्धा भी बहती है। और इसी भक्ति रचना के साथ ही अब आज का भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में आप सभी का स्वागत है। हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारी जानकारियां नए अनुभवों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की ताजा हालचालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन

0: आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jandar Mandir in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jandar Mandir must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but had failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on...
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आज फल और सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग विषय पर डॉक्टर नीलिमा गर्ग से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल और सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहां इनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किसान भाई जहां फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं तो इनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें?

0: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, विपणन एवं भंडारण। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फल एवं सब्जी एक पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनमें पानी की मात्रा और चीनी की मात्रा दोनों ही अधिक होती है, इसी वजह से इसको हमें एक अच्छे तरीके से ग्रेडिंग, पैकेजिंग और इसकी भंडारण करना है और बाद में उसकी विपणन व्यवस्था करनी है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, उनकी फसल अधिक समय तक सुरक्षित रहेगी और उपभोक्ता को भी अच्छी फसल और कम दाम का लाभ मिलेगा।
1: तो शुरुआत करें कि ग्रेडिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ये हो कैसे?
0: जी, ग्रेडिंग का अर्थ है छटाई। ये पूर्व काल से ही चली आती है। सबसे पहले तो हम लोग फलों और सब्जियों को उनके आकार के हिसाब से छांटते हैं कि छोटा आलू या बड़ा आलू, या फिर जैसे केला है तो वो कच्चा केला या पक्का केला, कि कच्चे केले में हरा रंग होता है तो वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पक्का केले को जल्दी ही उसका विपणन करना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक पहुंच जाए इससे पहले कि वो खराब हो जाए। इसके अलावा हम वजन के आधार पर भी हम ग्रेडिंग करते हैं, और ये ग्रेडिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है मैनुअल, जो अधिकतर किसान भाई खुद करते हैं, वो छांट छांट कर सब्जियों को अलग करते हैं, और दूसरी मशीन के द्वारा होती है। मशीन के द्वारा जो ग्रेडिंग होती है वो जल्दी होती है और सुरक्षित भी होती है, क्योंकि उसमें हाथ का जो स्पर्श नहीं रहता है, जिससे कि वो खराब नहीं होती है। लेकिन दोनों ही तरीके की ग्रेडिंग प्रचलित है।
1: डॉक्टर साहब, फल और सब्जियों की बात चल रही है तो बाजार में जो दिखता है वही बिकता है
0: जी,
1: तो इसकी पैकेजिंग में क्या कुछ खास है?
0: बहुत खास बात है आज की डेट में, तो वही जो आपने बताया कि जो दिखता है वो बिकता है। तो पैकेजिंग आकर्षक होने के साथ साथ वो मजबूत होनी चाहिए, प्लस वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। इस पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। प्लास्टिक पैकेजिंग को, पॉलिथीन को हम लोग ना कह रहे हैं और इको फ्रेंडली पैकेजिंग के ऊपर जा रहे हैं। इससे आपका उत्पाद ताजा रहता है और सुरक्षित रहता है। यह वजन में भी हल्का होता है तो इसके जो परिवहन के जो खर्चा होता है वो भी कम आता है,
1: यानी ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह ले आने में भी आसानी रहती है। तो इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं
0: पैकेजिंग के? पैकेजिंग तो आपकी ये कई तरीके की होती है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो हमने आपको बताई, दूसरी वायुरोधी पैकेजिंग। वायुरोधी पैकेजिंग में ऑक्सीजन जो है वो कम से कम आपके फल या सब्जी के कांटेक्ट में आती है, जिससे कि उसका ब्राउनिंग का या खराब होने का कम खतरा रहता है, और ये भी आजकल काफी पैकेजिंग प्रचलित है। प्लस शीत पैकेजिंग, ये इस तरीके से है जिससे कि उत्पादों को निम्न तापमान पर पैक किया जाता है,
1: यानी कम तापमान
0: जी, जैसे 16 या 17 डिग्री कम से कम, तो जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं जल्दी गर्मी से पा करके।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन के बारे में
0: जी।
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें
0: जी। किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 94-15-78-66-33, 94-15-78-66-33, 94-15-78-66-33। अब अधिक ध्यान देने की जरूरत है पोस्ट हार्वेस्ट पे, और ये जो आपका जो तुड़ाई है, ग्रेडिंग है, पैकेजिंग और विपणन, ये सब महत्वपूर्ण अंग है। और जब यदि आपका तुरंत विपणन नहीं हो पाता है तो आप उसको एक सही स्थान पर भंडारित करिए, जिससे आपकी फसल का बाद में भी अच्छा मूल्य मिल पाए।
1: डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आई और फल सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फल और सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग, इस विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर नीलिमा गर्ग से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। श्रोताओं, इसी के साथ अब कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का सुविचार, विषय है पितृ विसर्जन और महालया। वाचन स्वर है डॉक्टर करुणा शंकर दुबे का।
3: महालया शब्द का अर्थ आनंद

0: निकेतन है। आलय अर्थात घर, इस दिन मह यानी आनंदित हो जाना है। और महालया पर्व महाशक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा के सम्मान और महिषासुर मर्दिनी के रूप में आने की सूचना है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्राणी का अस्तित्व देह तक सीमित है। देह के जन्म के साथ उसका जन्म तथा देह के मृत्यु के साथ ही उसकी मृत्यु होती है। देह के पहले या बाद में उसका किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। विषय सुख ही परम सुख है और प्रभुत्व का अधिकाधिक विस्तार ही उस सुख का उपाय है। किसी भी प्रकार उसका संपादन ही परम पुरुषार्थ है। इससे परे न कोई वस्तु है और न इससे अधिक किसी को कुछ करना है। इस प्रकार के विचार ही असुर हैं और इन विचारों की पुष्टि एवं बल वृद्धि जिससे हो वही इनका अधिपति महिषासुर है। और वह महिषासुर तामस अहम भाव, यह अहम भाव इन विचार रूप अपने असुर सैनिकों द्वारा सद्विचार रूप सुरों या देवों को पराजित कर उनके विवेक रूप इंद्र को पदच्युत कर सत्व रूप स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करता है। महिषासुर का अंत करने के लिए देवी को अवतरित होना पड़ता है। पदच्युत इंद्र और पराजित देव उस असुर का कुछ भी नहीं कर सके, स्वयं भगवती को भी इसे पछाड़ने के लिए महान समारंभ करना पड़ा। जब समस्त देवताओं के तेज एक लक्ष्य एकत्रित हुए और उनके संगठित रूप का नेतृत्व देवी के चरणों में अर्पित कर देवताओं ने सारे साधन उन्हें सौंप दिए, तब देवी महिषासुर का वध करने के लिए प्रस्तुत हुई। पहले अहम भाव के पोषक दुर्विचार रूप सैनिकों का वध किया। सेना का संहार देख विभिन्न रूपों में अहंकार रूप में महिषासुर खड़ा हुआ, किंतु देवी के सामने उसकी कुछ भी नहीं चल सकी। अंतः देवी ने अपनी चमचमाती तलवार से उस असुर का शिरोच्छेद कर दिया। असुराधिप रूपी अहम भाव को गिरते ही देख देवताओं में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। स्वर्ग में पुनः विवेक रूपी इंद्र का राज्य स्थापित हो गया। वैसे तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, किंतु पश्चिम बंगाल की मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा कैलाश पर्वत छोड़कर 9 दिनों के लिए अपने घर परिवार सहित लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय और सरस्वती के साथ पृथ्वीलोक पर आती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान नई फसलों का पकना शुरू हो जाता है। देवी के लिए स्वागत गीत जागो तुमी जागो, बाजलो तोमार आलोर बेनू एवं एलोमा आगमन और सम्मान महिषासुर मर्दिनी के रूप में बंगाल के लोग शाकेबी अर्थात उच्च वर्ग और बानेदी यानी कुलीन घर के लोग नवरात्र के 6ठे दिन कल्पारंभ से पूजा आरंभ करते हैं। फिर बोधन यानी प्रतिमा का अभिषेक कर देवी का आह्वान और देवी के अधिवास स्थान को पवित्र किया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन 9 पत्रिका 9 वृक्षों के 9 पल्ल को पीले धागे से अपराजिता माला में बांध कर गंगा जल से पवित्र किया जाता है। ये पत्ते देवी के प्रतीक हैं। फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। 8वें दिन महाअष्टमी पूजा कुमारी लड़कियों की पूजा होती है। इसी महाअष्टमी और नवमी के बीच संधि पूजा होती है। महिषासुर का वध होता है। संधि पूजा चामुंडा देवी के लिए होती है। नवमी में महिषासुर मर्दिनी पूजा होती है। दशमी को महाआरती होती है। भक्त प्रतिमा के सामने पानी में प्रतिमा को देखकर विदाई देते हैं। प्रत्येक अवसर पर ढाक का वादन किया जाता है और यह पर्व इसी से विसर्जित होता है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार। विषय था पितृ विसर्जन और महालया। वाचन स्वर था डॉक्टर करुणा शंकर दुबे का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज पूरा जगत ही माता रानी को इंतजार कर रहा है, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। वास्तव में भक्त के मन में माँ के आगमन की प्रतीक्षा भी एक उत्सव के समान होती है। कहीं मंदिर में सजती ज्योति, कहीं घर में गूंजती घंटियों की ध्वनि और कहीं मन ही मन चलती माँ के स्वागत की तैयारियां। ऐसे लगता है कि माँ अम्बे के चरण जहाँ पर पड़ेंगे वहीं स्वर्ग का वास हो जाएगा, स्वर्ग का एहसास होगा।

श्रोताओं, प्रातः काल का समय माँ जगदम्बा की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। उगते सूर्य की पहली किरण के साथ जब मन श्रद्धा से भर उठता है तो माता रानी के प्रति कृतज्ञता का ये भाव सहज ही प्रकट होने लगता है। आइए दिन की इस मंगल बेला में माता रानी की वंदना करते हुए सुनते हैं ये पावन भजन।

आस्था मनुष्य के जीवन का वह पक्ष है जो उसे अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ता है। माँ दुर्गा की उपासना हमारी इसी आस्था का एक सुंदर रूप है।

श्रोताओं, भक्ति का आधार है श्रद्धा और समर्पण। जब मन अपने आराध्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है, तब प्रार्थना का प्रत्येक भाव विशेष बन जाता है।

श्रोताओं, प्रार्थना मनुष्य के अंतर्मन की सहज अभिव्यक्ति है। इसमें आशा भी होती है, कृतज्ञता भी और अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा भी। वास्तव में माँ शक्ति की आराधना हमारे जीवन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।

श्रोताओं, आशा है कि इन भक्तिमय प्रस्तुतियों ने आपके मन को शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से अवश्य भर दिया होगा। माता रानी हम सब का कल्याण करे और सभी पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, कहा जाता है राम नाम में है छुपा सभी दुखों का अंत, राम ही पर्याप्त है कहते साधु संत। नमस्कार, लखनऊ में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 319। आज आप सुनेंगे लंका में घमासान युद्ध होने का प्रसंग।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्ध भूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा, उन्होंने अग्निबाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बाल विकास मन्त्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जनसहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यन्त्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन सम्पादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक आपत्तीनां रोधनाय निर्वाचनायोगेन प्रपत्र 7 आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचनायोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इन्दौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ में। श्रोताओं, प्रातः के 7 बजे हैं और समय हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज की वार्ता में नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं, जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार, क्या बता रही हैं, आइए सुने।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास और सोचने पर मजबूर करने वाला है। 10 अक्टूबर जिसे हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ये दिन केवल एक जागरूकता दिवस नहीं है बल्कि ये हमें आत्म मंथन करने, भीतर झांकने और समाज के उस पक्ष को समझने का अवसर देता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे मन का स्वास्थ्य। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर शरीर की बीमारियों को ही गिनते हैं, जैसे बुखार, खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब का केंद्र अगर कोई है तो वो है हमारा मन, हमारी सोच, भावनाएं, अनुभव और प्रतिक्रिया। मानसिक स्वास्थ्य न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी दिशा देता है। आज के इस दौर में जहां जीवन की गति तेज है, अपेक्षाएं अधिक हैं, प्रतिस्पर्धा तीव्र है और सामाजिक जुड़ाव कहीं खोता जा रहा है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां और गहरी होती जा रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, अकेलापन, नींद की कमी, आत्मग्लानी और आत्महत्या जैसे गंभीर विषय अब सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर मौजूद हैं, कभी चुपचाप तो कभी सन्नाटे में चीखते हुए। दुख की बात तो ये है कि इन समस्याओं को आज भी समाज में कमजोरी माना जाता है। अगर कोई कह दे कि वो दुखी है या तनाव में है तो उसे बहाना, नाटक या ध्यान हटाने की कोशिश कह दिया जाता है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी उतनी ही वास्तविक है जितना कोई फ्रैक्चर या बुखार। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आँखों से दिखती नहीं लेकिन भीतर से मनुष्य को तोड़ सकती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें यही सिखाता है कि हम संवाद करें खुले दिल से, बिना शर्म, बिना संकोच। हमें ये समझना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, साहस है।

0: हम अपने किसी करीबी से ये पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? कुछ बात करनी है क्या? मैं सुन रहा हूँ। तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये उस व्यक्ति के भीतर उपज रही बेचैनी को थाम लेने वाला हाथ होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जीवन में कुछ बुनियादी आदतें बेहद मददगार होती हैं, जैसे नियमित नींद, स्वस्थ भोजन, थोड़ा व्यायाम और सबसे ज्यादा जरूरी स्वयं से संवाद। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तब हमारा मन भी हमारे साथ खड़ा होता है। इसके अलावा ध्यान, प्राणायाम, संगीत, प्रकृति से जुड़ना, पुराने मित्रों से मिलना, ये सभी चीजें हमारे मन को स्थिरता और सुकून देती हैं। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह की दौड़ में है, कोई करियर की, कोई रिश्तों की, कोई आर्थिक स्थिरता की। इस दौड़ में कई बार हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं, खुद से संवाद टूट जाता है। यही वो जगह है जहां मानसिक थकान जन्म लेती है, और जब ये थकान गहराती है तो व्यक्ति को लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है या उसकी समस्या कोई नहीं समझेगा। लेकिन यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, समझना और समझाना। परिवारों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, हर जगह मानसिक स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि रोना कोई शर्म की बात नहीं है। युवाओं को बताना चाहिए कि हर असफलता अंत नहीं होती, और बुजुर्गों को ये महसूस कराना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। हमारे रिश्ते, हमारी समझदारी और हमारा समर्थन किसी भी दवा से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। गांव हो या शहर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत सबको है। ये केवल काउंसलिंग सेंटर या थेरेपी तक सीमित नहीं है। अगर हम एक दूसरे को बिना जज किए सुनना सीखें, अगर हम खुद की बात कहने में हिचकिचाएं नहीं, अगर हम शब्दों का चयन सोच समझकर करें, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां हर मन सशक्त हो, हर दिल शांत हो। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने बल्कि अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहेंगे। हम चुप्पी नहीं, संवाद को चुनेंगे। हम उपेक्षा नहीं, समर्थन देंगे। और सबसे बढ़कर हम ये मानेंगे कि मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तन। मैं नीना सोनकर आपसे आज विदा लेती हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप इस चर्चा को केवल सुनकर भूलेंगे नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और विषय के साथ जो हमारे शरीर और मन दोनों को सशक्त बनाए। तब तक खुश रहिए, संतुलित रहिए और अपने मन की बात सुनना कभी न भूलिए। नमस्कार।
1: जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज की ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 से सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। रात्रि 10:00 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आज आनंद लीजिएगा अर्चना जी उपाध्याय के गाए कर्नाटक गायन का। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा गोरखपुर और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा जहनी सेहत पर खुसूसी प्रोग्राम। तहरीर और आवाज होगी डॉक्टर रबाब अंजुम की। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे विवेकानंद व्यास के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:00 बजकर

50 मिनट पर और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 से। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा उन्नत बीज का चुनाव और रबी में बीज उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर दीपक कुमार मिश्र से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 से। कार्यक्रम में आप विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विशेष ये वार्ता सुनेंगे। वार्ताकार होंगी दीपांक्षी वर्मा। शाम 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुशील सीतापुरी की वार्ता सुनिएगा, विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे रबी में हरा चारा उत्पादन विषय पर डॉक्टर केशव कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान जगत। कार्यक्रम में आज विज्ञान समाचारों के साथ डॉक्टर अगम दयाल श्रीवास्तव की वार्ता सुनिएगा, न नक्शा न GPF फिर भी सही पते पर कैसे पहुंचते हैं परिंदे। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज साइबर सुरक्षा विषय पर मोहित बजाज से सुरेंद्र राजेश्वरी की भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। और श्रोताओं रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर के गाए देवी भजन। और आज प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी जिंदगी में हमेशा मौजूद रहते हैं। घर की कोई पुरानी तस्वीर देखते ही किसी अपने की याद आ जाती है, किसी खास व्यंजन की खुशबू किसी बुजुर्ग की रसोई तक हमें ले जाती है, या फिर कभी कभी अचानक उनकी कही कोई छोटी सी बात हमें याद आ जाती है। वक्त गुजरता है, लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है। तो आज की विविधा भी ऐसी ही यादों को समर्पित है, उन अपनों को जो हमारे बीच भले ही नहीं है लेकिन हमारी स्मृतियों में आज भी बसे हुए हैं। अवसर है सर्व पितृ अमावस्या का, जिसे पितृ पक्ष के समापन के रूप में भी जाना जाता है।

श्रोताओं, भारतीय परंपरा में अपने पूर्वजों को याद करना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपने अतीत और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक भाव भी है। हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, उसकी कहानी हमसे पहले भी शुरू हुई थी। हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, परिवार की कई आदतें और जीवन के कुछ मूल्य कहीं न कहीं उन लोगों से जुड़े होते हैं जिन्होंने हमसे पहले इस परिवार को संभाला और आगे बढ़ाया। पितृपक्ष के इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं। अलग अलग परिवारों क्षेत्रों में इन परंपराओं के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा भाव एक ही है और वो है कृतज्ञता और स्मरण। हम अपने पूर्वजों से केवल उनकी संपत्ति या परिवार का नाम नहीं पाते, बल्कि हमें उनसे बहुत कुछ ऐसा भी मिलता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे जीवन जीने के तरीके, रिश्तों को निभाने की समझ, मुश्किल समय में धैर्य रखने की सीख और हाँ, परिवार को साथ लेकर चलने की भावना। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि किसी अपने के जाने के बाद हमारे पास उनकी सिर्फ तस्वीरें और यादें रह गईं, लेकिन गौर कीजिएगा, उनकी कुछ बातें हमारे व्यवहार में भी तो मौजूद होती हैं, है ना? कोई दादी की तरह खाना बनाता है, कोई पिता की तरह बात बात पर सलाह देता है, कोई नाना या दादा की तरह सुनाई कहानी आज भी अपने बच्चों को सुनाता है। यानी इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसका कुछ अंश हमारी जिंदगी में बना रहता है। सर्व पितृ अमावस्या का भाव इसी स्मरण को और गहरा करता है। ये उन सभी अपनों को एक साथ याद करने का अवसर है जिनसे हमारा रिश्ता रक्त का रहा हो, संस्कारों का रहा हो या आत्मीयता का रहा हो। श्रोताओं, सर्व पितृ अमावस्या पर हम अपने उन सभी प्रियजनों को श्रद्धा से याद करते हैं जिनकी आवाज अब हमें कभी सुनाई नहीं देगी, जिनके साथ बैठना अब संभव नहीं, लेकिन जिनकी कही बातें आज भी कभी कभी मन में गूंज उठती है। उनकी तस्वीर के सामने कुछ पल बैठना हो, परिवार के साथ उनकी कोई पुरानी बात साझा करनी हो या बस मन ही मन उन्हें नमन करना हो, भाव सच्चा हो तो स्मरण अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। और आज जब हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तो एक बात अपने वर्तमान रिश्तों के लिए भी साथ ले चले कि जिन्हें हम आज अपने पास पाते हैं, उनके साथ समय बिताने में देर ना करें, उनकी बातें सुने, उनकी यादों को दर्ज करें, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि कल यही आज की यादें बनेंगी। तो आइए आज सर्व पितृ अमावस्या के इस अवसर पर उन सभी अपनों को नमन करें जो हमारी आंखों के सामने नहीं, लेकिन हमारे मन की दुनिया में अब भी उतने ही करीब हैं। उनकी स्मृतियां हमारे भीतर प्रेम, कृतज्ञता और अपनेपन की लौ जलाए रखें। इसी भाव के साथ विविधा से अब मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। अपने प्रियजनों को याद कीजिए, उनके साथ समय बिताए अच्छे पलों को संजोइए और उनकी दी हुई अच्छी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार, फिर मिलने के वादे के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और जनहित के विषयों पर की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। कहा, अधिकतम 24 घंटे में मिलना चाहिए शिकायतों का संतोषजनक जवाब। और मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया की अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने लगाया विराम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास का नया मॉडल बन रहा है।
5: कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। यह एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
5: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्री परिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती।
4: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीर

0: वीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
1: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का, भदोही भी रहेगा।
0: प्रदेश कैबिनेट ने ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियों और जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन में करने और प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरने और जनता से सीधा संवाद करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। वह विकासखंड रहरा बाजार के बिलरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 803 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल खरीदने और OTP सत्यापन अनिवार्य किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने विराम लगा दिया है। विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को नया मोबाइल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण, समावेशी विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार की तरफ से सेवा संकल्प अभियान पर जारी विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
2: नीति आयोग को वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
3: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
4: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।
2: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के

0: स्पेस और नगर विकास विभाग के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग अपनाने की कार्यशाला का कल लखनऊ में समापन हो गया। अंतरिक्ष विभाग, भूस्थानिक उद्योग और विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने देश भर के इन स्पेस विशेषज्ञों और उद्योग भागीदारों से राज्य के किसानों के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार लाने और सूखे तथा बाढ़ से जुड़ी तैयारियों को मजबूत करने के लिए आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। झांसी में आज से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। खेल निदेशक डॉ आरपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश को मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
1: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया, जिसका उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अंचल में कल से मौसम के शुष्क रहने के संकेत दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और जनहित के विषयों पर की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। कहा अधिकतम 24 घंटे में मिलना चाहिए शिकायतों का संतोषजनक जवाब। और मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया की अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने लगाया विराम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह। दोस्तों नमस्कार। सुबह का ये वक्त अपने आप में कुछ खास होता है। दिन अभी पूरी तरह अपने रंग में आया नहीं है और हमारे सामने पूरा दिन खुला है।
3: हाँ, और इस पूरे दिन में क्या क्या होगा ये हमें भी कहाँ पता होता है। कुछ काम पहले से तय होते हैं तो कुछ चीजें अचानक सामने आ जाती हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इससे पहले कि हम और भी बातें करें, पहले हम अपना परिचय तो अपने श्रोताओं से करवा लें।
3: जी बिल्कुल।
2: तो मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और मेरे और साथ आज के सफर में है।
3: जी मैं आज आपके सफर में हूँ शिखा आपके साथ। तो आपके साथ भी हूँ और अपने श्रोताओं के साथ भी।
2: जी और ये सफर बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि दो प्यारे प्यारे से दोस्त आज एक साथ है।
3: जी बिल्कुल। और प्यारे प्यारे दोस्त तो है ही, और जब प्यारे प्यारे लिसनर्स सामने हो तो क्या ही बात। क्यों
2: बिल्कुल हर दिन और बहुत खूबसूरत हो जाता है जब आप जिसे पसंद करते हैं, आप जिसे चाहते हैं वो आपके साथ हो।
3: बिल्कुल।
2: तो भाई देखिए जिंदगी है, हर सुबह अपने साथ थोड़ी सी एक अनिश्चितता भी लेकर के आती है। हमें ये पता होता है हमें ये करना है, पर क्या वो वाकई हो जाएगा, कंप्लीट कर

0: पाएंगे हम अपने सारे टास्क, ये एक चैलेंज होता है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मन में काफी चीजें चलती है कि आज आज का ये जो दिन है ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी है, लेकिन वो कितना कुछ हम कर पाते हैं ये हमें खुद भी नहीं पता होता।
0: वो कहते हैं ना श्वेता कि जिंदगी हमेशा किसी तय स्क्रिप्ट पर नहीं चलती, कभी कोई काम देर से होता है, कभी किसी योजना में बदलाव करना पड़ता है,
1: और कभी किसी दूसरे की मदद के लिए हमें अपनी योजना भी बदलनी पड़ती है।
0: बिल्कुल, और ऐसे मौकों पर शायद हमें थोड़ा ठहर कर देखने का अवसर मिलता है कि हम किसी परिस्थिति का सामना किस तरह से कर रहे हैं ना।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज हमारे मन के मुताबिक हो ये हमारे हाथ में ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही, अब जैसे देखिए ना, हमारा हर रोज मन होता है कि हम अपने श्रोताओं से मिल सके, बात कर सके, है ना,
1: लेकिन हम हर रोज नहीं मिल सकते भाई, और भी हमारे जो हैं लोग वो बात करने के लिए बड़े ईगर रहते हैं कि आज हम मिलेंगे, तो अलग अलग दिन कुछ खास होता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ समेटे रहता है।
0: बिल्कुल, लेकिन जब आज मिले हैं तो यकीन मानिए आज की सुबह को तो हम खास बनाएंगे ही, आपके दिन को भी शानदार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्यों।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए इसी सहज भाव के साथ शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, और पहला सा नगमा एक खूबसूरत सा सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को, क्यों।

0: जी हाँ, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, क्योंकि दोस्तों खूबसूरती तो बस आंखों की होती है, अगर दिल भी खूबसूरत है तब कोई बात है, क्यों शिखा?
1: जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा आपने कि चेहरे की जो खूबसूरती है ना, वो आपके दिल से भी दिखती है, क्यों?
0: बिल्कुल, और दिल से खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। सलामी फिल्म का खूबसूरत सा नगमा सुना आपने कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में, और चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सुविचार की। तो शिखा, क्या कहता है आज का सुविचार हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: जी, आज का सुविचार कहता है हर परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं बदलती, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है।
0: जी, बहुत सरल बात है, लेकिन शायद हम अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाली इन बातों को भूल जाते हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां जो हर किसी की जिंदगी में आती है, हम उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ परेशानी पर चला जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना?
1: जी, और कहते ना कि जो ये परेशानी आती है निगेटिवनेस तो लाती है, लेकिन हमको उसके साथ पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जबकि कई बार बेहतर सवाल यह हो सकता है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। मसलन किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो निराश होने के बजाय
0: हम ये देख सकते हैं कि अगली बार क्या किया जाए, और हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें असफलता क्यों मिली,
1: क्यों
0: है,
1: मिली
0: और हम अगले प्रयास में उसे पहले दूर करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: है ना? और एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, देखिए अपने श्रोताओं से भी और आपसे भी शिखा साझा करना चाहूंगी कि देखिए कई बार होता है कि रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है, है ना? तो केवल अपनी बात सही साबित करने के बजाय ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले की बात भी समझें।
1: बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि हर परिस्थिति को आसानी से स्वीकार कर लिया जाए या अपनी भावनाओं को दबा दिया जाए, बल्कि बात इतनी है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की थोड़ी सी जगह हम अपने भीतर बचाए रखें। शायद यही जगह हमें जल्दबाजी के बजाय समझदारी से आगे बढ़ने में मदद करती है।
0: जी हाँ, और जब दृष्टिकोण बदलता है यानी देखने का नजरिया बदलता है तो कई बार वही परिस्थिति हमें कुछ सिखाने लगती है। और इसी खूबसूरत से विचार के बाद अब देखिए शिखा का हाथ बढ़ चुका है कि एक नगमा तो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे यहाँ।
1: जी, तो बिना देर करे भेजते हैं ये प्यारा सा गीत आप तक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को सुन रहे थे आप फिल्म थी मृत्यु दंड। तो शिखा
1: जी बिल्कुल बताइए, बेहतरीन सा ट्रैक सुना आपने, कैसा लगा, आपको कैसा लगा?
2: मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप कोई गीत चुन कर लाए और वो अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: भाई जो ये चुनते हैं ना, ये जो गीत चुनते हैं वो अपने श्रोताओं के लिए चुनते हैं, और साथ ही आपके लिए भी प्यारा सा गीत था। तो चलिए अब बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
2: जी बातों के साथ जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के इतिहास की, यानी कि 10 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ था खास, है ना?
1: जी
2: तो सबसे पहले बात करते हैं 1910 की। आज ही के दिन वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
1: जी और 1846 में आज ही के दिन ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह ट्राइटन की खोज की थी।
2: आगे बढ़ते हैं और 1964 की अगर बात करें तो टोक्यो जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था, जिसका पहली बार दूरदर्शन और उपग्रह के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया था।
1: जी और आपको बता दें सन 2014 में आज के दिन भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी।
2: जी बहुत खूब, और आगे बढ़ते हैं
1: कुछ और है जो इतिहास में हुआ था वो भी आप तक पहुंचाते हैं। सन 1924 में आज के दिन शिकागो में स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना की गई थी। और सन 2019 में आज के दिन साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई पीटर हैंडके को दिया गया था।
2: वाह क्या बात है, यानी आज का जो इतिहास है वो बहुत खास
1: है। बिल्कुल,
2: आज का दिन भी बहुत खास है।
1: और आज का दिन खास क्यों है?
2: क्योंकि आज हम मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
1: जी और इतनी अच्छी बात आपने बताई, और इस मतलब ये जो दिवस है उसका मनाने का उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये होता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, अगर देखिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही आपका ये चलता है कि आप अच्छे विचार अपने जीवन में ला सकते हैं, अपनी जिंदगी को भी सुचारू रूप से चला सकते हैं, है ना?
1: जी तो अभी तक अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग नहीं थे तो आज के दिन से ही आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सजग रहेंगे।
2: एक और खास दिन शिखा आज मनाया जाता है, पता है क्या?
1: बताइए।
2: आज राष्ट्रीय डाक दिवस है।
1: अरे वाह, नेशनल पोस्टल डे।
2: जी हाँ, और ये भारत में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो देश में भारतीय डाक सेवा के योगदान को सम्मानित करता है।
1: जी कितनी अच्छी बात आपने बताई, और हमारे श्रोता भी खुश हो जाते होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें उन तक पहुंचती हैं।
2: भाई हम इसीलिए

0: ढूंढ कर लाते हैं जानकारियां अपने श्रोताओं के लिए, और ऐसी ही एक बहुत रोचक किसी विषय पर भेंट वार्ता भी हम अपने श्रोताओं के लिए आज लेकर के आए हैं। और रमन प्रीत सिंह ने बात की है श्री अवधेश कुमार मिश्रा, प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल से। तो ये हम भी सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
1: जी
2: नमस्कार, आज सुबह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवधेश कुमार मिश्रा, जो कि प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल के हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी युवाओं में जेंजी का जो दौर चल रहा है, जेंजी पोस्ट ऑफिस के बारे में, क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
3: जी बिल्कुल, अभी डाक विभाग ने एक पहल की है कि अपने डाकघरों को डिजिटल मोड लाने के बाद में युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनको जेंजी की आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की मशीन है और उनके बैठने के लिए विशेष सुविधा दी गई है, उनके लिए कुर्सी, डिजाइनर कुर्सी, मेज, और साथ में वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर अलग से दिया गया है कि वो एक बिल्कुल रिलैक्स मोड में आकर के वहाँ पर डाकघर को विजिट करें और उसकी सेवाओं का लाभ लें। अभी हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में एक डाकघर का उद्घाटन किया गया था, तो वो अभी अपनी सेवाएं दे रहा है आईएम में, और अभी लखनऊ में और भी डाकघरों में को इस रूप में विकसित करने की योजना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डाकघर से युवाओं को जोड़ा जाए, हमारी सेवाओं को समझें, और चूंकि सब टेक्नोसेवी हैं नए युवा, तो टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जोड़ करके पैसे का लेन देन, खाते से पैसे का ट्रांसफर, या अगर मान लो पार्सल बुक कराते हैं तो अभी आपको चेंज देने की, कैश देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक डिजिटल मशीन है, पॉस मशीन है, उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि हम लोगों ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने डाकघर को अपग्रेड किया है।
2: मतलब जेंजी अपने डाकघर आकर अपना समय भी वहाँ पर थोड़ा सा
3: व्यतीत कर सकते हैं, वो उनको बिल्कुल घर का माहौल लगेगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा उनके लिए, उनकी एस्पिरेशंस के लिए कि भाई डाकघर इस तरह का नहीं है कि जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनली था, उसको नए रूप में उनके दीवारों को उनकी आवश्यकता पेंट किया गया है, कुछ डिजाइन भी बनाई गई हैं, और साथ में जो हमारी नई सुविधाएं, उनका डिस्प्ले है, आधार है, और इस पॉस मशीन है, खाने पीने का भी जो है वो एक सुविधा के रूप में उसको डेवलप किया गया है। जो
2: तो श्रोताओं को ये जानकर अच्छा लगा होगा कि डाकघर भी जो है वो हमारे युवाओं के लिए काम कर रही है, और उन्होंने ये जेंजी पोस्ट ऑफिस जो पहला अभी आईआईएम लखनऊ में ओपन हुआ है, तो आप वहाँ जाएं और डाकघर की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: तो शिखा, अभी हम सभी ने सुनी ये उपयोगी भेंटवार्ता जिसमें रमन सिंह बात कर रहे थे श्री अवधेश कुमार मिश्रा से, प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल से, और प्रस्तुति भी रमनप्रीत सिंह की थी।
1: जी, तो बातें तो हमने सुना दी, तो आज का इतना जो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग डे है, तो उसके ऊपर एक गीत भी हो जाए। जी हाँ
0: जी बिल्कुल। देखिए जो ये पत्र होते हैं, खत, लेटर जिन्हें बोलते हैं, भले ही अब उतना चलन में ना हो, लेकिन इनकी खूबसूरती अपने आप में है कि जब आप खत लिखें या किसी का खत आपको मिले तो कितनी खुशी होती है।

0: तो शिखा है, कहाँ खो गई आप?
1: जी मैं खो गई थी भाई, आपके इतना प्यारा आपने गाना बजा दिया ना, तो वो जो खतों का जो एक दौर था ना, उसमें खो गई थी।
0: बिल्कुल, ये दौर ही कुछ ऐसा था कि
1: तो
0: वाकई। और मैं सच बताऊँ, मैंने भी खत लिखे हैं, जैसे मम्मी को लिखवाना है, दादी को लिखवाना है, और वो जो एक भूमिका होती थी
1: जी जी
0: आरंभ करने का, अंत करने का, मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत बात आज के मैसेजेस वगैरह के माध्यम से तो नहीं आ
1: बिल्कुल
0: सकती।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी गाने में जैसे आपने मुझे आवाज दी ना प्यार से, शिखा कहाँ खो गई थी, मैं बस वहीं उसी रास्ते पे घूम रही थी।
0: लौट आइए, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं कि अब शिखा क्या बताने वाली है।
1: जी, और अब बताने वाले हैं हम कि भाई वेदर कैसे होने वाला है ना, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो अपने दिन की जो प्लानिंग होती है, आगे की एक दो दिन की प्लानिंग होती है, वो वेदर को समझ कर करते हैं।
0: बिल्कुल, तो मौसम की जानकारी देने के लिए हर रोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं मोहम्मद दानिश जी। तो आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का क्या हाल रहने वाला है।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
3: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, और सुबह सवेरे हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आज और आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है।
3: जी मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप खिली रहेगी, जिससे गर्मी का एहसास रहेगा। बाकी मॉर्निंग आवर और शाम को मौसम खुशनुमा रहेगा, हालांकि दोपहर में थोड़ा उमस वाली गर्मी सताएगी और अर्ली मॉर्निंग हल्की हल्की खुशनुमा सर्द का एहसास रहेगा।
2: जी, तो ये कह सकते हैं कि मानसून जाने के बाद अब सर्दी आने की कगार पर है।
3: जी जी जी, धीरे धीरे यहाँ से हल्का हल्का बढ़ोतरी होगा।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को मौसम संबंधी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद
1: जी। तो इतनी अच्छी जानकारी मोहम्मद दानिश जी ने दी और उसी के अकॉर्डिंग जो अपना प्लानिंग है वो हमारे लिसनर्स करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, और यही हम फिर से

0: एक बार कहेंगे कि मौसम बदल रहा है और इसमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, और इस जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारे सभी कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे और अपनी जिंदगी का लुत्फ भी उठा पाएंगे। किसी का
1: जी बिल्कुल सही कहा, और आप तो स्वस्थ रहिए ही रहिए और अपना ध्यान दीजिए, और साथ में घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उनका ध्यान जरूर से रखिए।
0: तो बस अब घड़ी की सुई कर रही है इशारा कि मुझे यानी रिंकी शर्मा को
1: और मुझे यानी शिखा पांडे को देनी होगी, लेनी होगी अनुमति। जी
0: तो अब फिर मिलने के वादे के साथ स्वीकार कीजिए हम दोनों का
1: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ का सफर भी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन

0: या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए

0: तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
3: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
4: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
2: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
5: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
2: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
7: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
6: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI

0: तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शीशपाल। श्रोताओं आज बहुत ही विशेष दिन है, 10 अक्टूबर 2026, और आज कई सारे दिवस हम मना रहे हैं और सबसे प्रमुख है सर्वपित्र अमावस्या आज हम मना रहे हैं। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। साथियों जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, वे भी इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों के लिए जल अर्पित करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना तथा दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या हमें अपने पूर्वजों के योगदान और परिवार की परंपराओं को याद करने का अवसर देती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में अपने माता पिता, बुजुर्गों और परिवार के प्रति सम्मान तथा सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, आज एक और बहुत विशेष दिन है जो हम मना रहे हैं। आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। साथियों, आपको बता दें कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सहयोग देना है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं पर खुलकर बात करना बहुत आवश्यक है। मानसिक परेशानी होने पर परिवार, मित्रों और विशेषज्ञों से मदद लेने में संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक संवाद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं। साथियों, आइए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और एक संवेदनशील स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान करें। साथियों, इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने बात की मनोवैज्ञानिक दीपक सिंह जी से, जो मनोवैज्ञानिक हैं और मानसिक चिकित्सालय बरेली और टेलीमानस नेशनल हेल्पलाइन में काउंसलर भी हैं। आइए सुनवाते हैं आपको ये बातचीत।
1: दीपक सिंह जी, नमस्कार। कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर
2: जी, आज नमस्कार
1: जी। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है?
2: जी बिल्कुल, मेरा नाम दीपक है और मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। और बात करें कि ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है
1: जी,
2: इसका सबसे अच्छा कारण यही है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी और अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है
1: जी।
2: और जैसे इस वर्ष की थीम भी है कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड, रियल वॉइसेस रियल चेंज। इसका बिल्कुल सरल अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अनुभव करने वाले लोगों की बात सुनी जाए और उनके अनुभवों के आधार पर वास्तविक बदलाव किए जाएं, है ना। तो ये इस साल की थीम है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है
1: जी,
2: और वो डरा हुआ है कि परिवार क्या कहेगा, है ना। और दूसरा है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नौकरी की तलाश में है, हर दिन असफलता लेके घर आ रहा है, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है रोज के रोज
1: जी।
2: एक महिला है जो घर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है और अपनी परेशानियों में उलझी हुई है, वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन उन्हें डर रहता है कि लोग उन्हें कहीं पागल ना समझ लगे, ठीक है, इस वजह से वो दूसरों से कह नहीं पाते
1: जी।

0: मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं कि इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है उसका मतलब ही यही है कि लोगों को सुना जाए कम से कम
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: और मान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हमें उन भावनाओं को या उनकी तकलीफों का जो भी वो अनुभव कर रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए
1: जी।
0: इस थीम से तो हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए यही समझ रहे हैं इस बार के लिए और आगे के लिए हमें हमेशा ये देखना है कि लोग कोई भी जूझ रहा है जैसे मैं तीन चीज हमेशा अभी इनसे जोड़ के बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके आसपास या सिर्फ इनको कहेंगे कि कुछ जो पहलू मैंने बताए हैं वही अकेले नहीं मान लीजिए स्कूलों में विद्यार्थी हो गए है ना कार्यस्थलों में कर्मचारी हो गए या और भी लोग जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं ठीक है तो उनसे हमें जैसे हम खुद आम जनता है या हम आप हैं मैं हूँ या जो लोग उनके साथ रहते हैं तो सबसे पहले तीन चीज अगर आप चीज कर रहे हैं कि आप नोटिस कर रहे हैं
1: जी
0: है ना सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि क्या ऐसा जो इंसान रोज हमारे साथ बैठता है बात करता है क्या उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है क्या वो ऐसा है कि वो अकेला महसूस कर रहा है या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है अब वो पहले की तरह नहीं रह गया
1: जी
0: ठीक है और दूसरा फिर हमें उससे क्या करना है हमें लिसन यानी कि पहले तो हमें नोटिस करना है फिर लिसन जैसे इस साल का वो भी है कि हमें सुनना है बिना जजमेंटली
1: जी
0: क्योंकि इन किसी भी व्यक्ति की कैसी भी परेशानी हो सकती है शायद वो हमारे लिए कुछ ना हो
1: बिल्कुल
0: लेकिन अगर वो परिस्थिति में है तो उसका मतलब ये है कि हम अगर उसको बिना जजमेंटल होके उसकी बात सुनेंगे तो उसको बहुत ज्यादा हम सहायता दे सकते हैं ये मान के सकते हैं
1: जी
0: और तीसरा है कनेक्ट कि हमें जैसे ही अगर ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति परेशानी में मानसिक परेशानी में है तो हमें उसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कहाँ करना है किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को या उसके माँ बाप को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको उस समय सहयोग कर सके
1: जी
0: तो इस साल की थीम के हिसाब से मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोगों को अपने जो भी आसपास के लोग हैं मैं तो ये कहूँ कि जो भी अगर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित इंसान है तो उसके अनुभव से सीखना चाहिए उनके अनुभवों को सुनना चाहिए ताकि हम उनको उस हिसाब से उसकी मदद कर सकें
1: जी
0: जी
1: सर और मैं जैसे हम बरेली शहर के बारे में जानना चाहते हैं बरेली शहर की बात करें तो बरेली शहर में क्या स्थिति है और यदि किसी को बरेली शहर में जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है उसकी तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है कहाँ जा सकता है और किस प्रकार उसकी मदद हो सकती है
0: बिल्कुल सबसे पहले तो अगर बरेली शहर की बात करें तो बरेली शहर में आपका मानसिक चिकित्सालय है गवर्नमेंट की खुद का एक चिकित्सालय है और जिस तरीके से लोगों के दिमाग में स्टिग्मा होता है कि वो पागल खाना है
1: जी,
0: पर ऐसा नहीं है वो पुरानी बातें हो गई वो भी एक प्रकार का अस्पताल है और जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए है ना क्योंकि हम हेजिटेट होते हैं हम नॉर्मल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो ऐसे ही चले जाते हैं है ना लेकिन मानसिक चिकित्सालय में जाने से पहले काफी डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग हमें देख लेंगे तो हमें कुछ ऐसा कहने लगेंगे वैसा कहने लगेंगे
1: ये बात आपने लेकिन ऐसा बताइए सर क्योंकि बहुत सारे लोग उसको पागलखाना ही बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मतलब यहाँ पर शायद पागलों को इकट्ठा रखा जाता है या उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है बहुत भ्रांतियाँ हो सकती हैं लोगों के मन में पागलखाना
0: बिल्कुल है बिल्कुल है इसी वजह से मैं स्पेसिफिकली ये बात क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि लोग यहाँ आने से कतराते हैं मानसिक चिकित्सालय में है ना तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ मानसिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मानसिक स्वास्थ्य की कि आपका मन अगर अच्छा नहीं है आपको कोई तकलीफ हो रही है आपको लग रहा है कि आपके बिहेवियर में कोई परिवर्तन आ रहा है तो बरेली में एक तो मानसिक चिकित्सालय है आप वहां जाके अपना इलाज करा सकते हैं और बिल्कुल अस्पताल की तरह 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी होती है वहां पे और 1 रुपए का पर्चा होता है सरकारी आप जाइए डॉक्टर आपको देखते हैं वैसे ही नॉर्मल जैसे आपको बुखार की दवा दी जाती है ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य की दवा देके आप घर वापस जा सकते हैं ऐसा नहीं होता है कि जैसे जो है ना दिमाग में कि वहां पकड़ लेते हैं बंद कर लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती है तो एडमिट किया जाता है ना दूसरा स्थान आपका जिला चिकित्सालय में मन कक्ष विभाग है
1: अच्छा सर
0: तो हाँ जिला चिकित्सालय में

0: अंतरिक्ष विभाग है, मन कक्ष में आपके मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं आपका। 2 बजे से वहां पे भी, 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी रहती है वहां पे। और तीसरा है आपका कि अगर आप दोनों जगह नहीं जा पा रहे फिर भी आपको लग रहा है कि हम हेजिटेट हो रहे हैं, है ना, तो तीसरा है आपका भारत सरकार का टेली मेंटल हेल्थ यानी कि टेली मानस।
1: जी जी,
0: जहाँ टेली मानस में आप 24 घंटे यानी 24/7 कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, गाइडेंस और काउंसलिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पे 24 घंटे काउंसलर उपलब्ध रहते हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी कॉल लगा सकते हैं और ये इसका नंबर है 1-44-16।
1: सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतनी अच्छी बातें हमें बताई और अपना बहुत कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम, सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, आज एक और विशेष दिन है, आज है राष्ट्रीय डाक दिवस। साथियों, राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय डाक सेवा के महत्व और योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। डाक विभाग पत्रों और पार्सल के साथ साथ बैंकिंग, बचत योजनाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचता है। डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के बावजूद डाक सेवाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाककर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस डाककर्मियों की मेहनत, समर्पण और जनसेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। साथियों, इसी डाक दिवस के उपलक्ष्य में हमने बातचीत की प्रधान डाकघर बरेली के वरिष्ठ पोस्टमैन ओम प्रकाश शर्मा जी से। आइए सुनवाते हैं आपको ये बातचीत। ओम प्रकाश शर्मा जी, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते
0: जी। ओम प्रकाश जी, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाक दिवस
1: जी,
0: तो हमारे श्रोताओं को बताइए ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका?
1: देखिए साहब, राष्ट्रीय डाक दिवस भारत वर्ष में हर वर्ष 10 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है, एक सप्ताह के लिए, ठीक है
0: जी।
1: अच्छा, और इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय डाक सेवाओं के महत्व के लिए समझाना
0: जी।
1: और डाक कर्मचारियों के योगदान के लिए सम्मान देना और डाक सेवाओं के प्रति लोगों के लिए जागरूक करना है
0: जी। जी जी।
1: विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है और हमारे राष्ट्रीय डाक दिवस जो है वो 10 अक्टूबर से एक सप्ताह तक
0: जी
1: मनाया जाता है
0: जी। जी जी। अच्छा, और ये बताइए कि आप पहले से क्या बदलाव महसूस करते हैं, हमारे डाकघरों में क्या बदलाव आया है पुराने समय से, अगर अब तक देखें?
1: पुराने समय से ये है कि पहले उस समय जो है ये साधारण डाक जो होती थी उसके लिए फर्स्ट मेल बोलते थे, ठीक है। अच्छा, और वो जो है बड़ा तीव्र गति से जाती थी, उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था
0: जी,
1: और जो पत्रों के माध्यम से ही जो है एक दूसरे के लिए खैर खबर वगैरह सब मिलती थी और बड़ा पब्लिक जनता जो है वो डाकिया का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती थी।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, तो हम लोग जो थे उसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मोहल्लों-मोहल्लों में जाकर के घरों में पहुंचाते थे और वो उनके लिए उपलब्ध कराते थे। और अब आजकल जो है ये मोबाइल का दौर चल गया, इससे थोड़ा जो है वो परसेंटेज हल्की डाउन हुई है। आजकल जो है हमारे पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट वगैरह जो है रजिस्ट्री बंद कर दी है, स्पीड पोस्ट वगैरह जो है तीव्र गति से चल रही है और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हमारा विभाग अच्छी सेवाएं दे रहा है।
0: डाकघर से और कौन कौन सी सुविधाएं हम ले सकते हैं?
1: डाकघर से हमारे बहुत सुविधाएं, जैसे कि मनी ऑर्डर जो है आप विदेश में बैठ के जो है धन हमारे यहाँ भेज सकते हैं और वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमारे लिए मतलब मिल जाएगा।
0: अच्छा,
1: ठीक है। हाँ, और उसके अलावा जो है पोस्टमैन के लिए वो सब उसका दे दिया है, डिवाइस वगैरह दे दी है। अगर कोई जैसे मजदूर है बेचारा या खेतों में काम कर रहा है
0: जी,
1: तो वो तुरंत जो है उसके लिए जो है वो सुविधा वहाँ देगा और वो डिवाइस पे जो है
0: ये सुविधा पहुँचाई जाएगी।
1: हाँ, पहुँचाता है वो।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मतलब बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है
0: जी। जी जी जी। और डाकघर में कई सारी योजनाएं भी चलती हैं, बचत योजनाएं टाइप, तो
1: जी हाँ,
0: उनकी सुविधा हम कैसे ले सकते हैं?
1: उनकी सुविधाएं जो है पोस्ट ऑफिस में हमारे यहाँ कई योजनाएं हैं और उसका जो है अलग अलग प्रकार से जो है फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह का जो है अलग अलग मतलब हिसाब से उसका जो है परसेंटेज के हिसाब से उसका इंटरेस्ट मतलब आय योजना
0: जी,
1: तो मंथली इनकम स्कीम बोलते हैं, उसके लिए एक फिक्स का पैसा जो है उसमें जमा होता है
0: जी,
1: 6 साल के लिए प्रत्येक माह जो है मतलब उसका इंटरेस्ट जो है सूद जो है प्राप्तकर्ता जो है वो ले लेता है।
0: अच्छा ओम प्रकाश जी, अगर बात करें हम अपने बरेली शहर की
1: जी,
0: और हमारे बरेली वासियों को अगर ये सुविधा चाहिए तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, प्रधान डाकघर में या अपने आसपास के डाकघरों में भी ये सुविधा ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ 7-8 पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जहाँ से डिलीवरी होती है पोस्टमैन और मतलब वो बड़े पोस्ट

0: ऑफिस है, जैसे सिटी पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है, शामतगंज में पोस्ट ऑफिस है पुलिस चौकी के बराबर में, इज्जत नगर में है, पीएसी में है
1: जी,
0: तो इस प्रकार से ये, और ये आईटीबीपी में है
1: जी,
0: तो हमारे पास ऐसे करीब 7-8 पोस्ट ऑफिस हैं जहाँ की ये मतलब सुविधाएं जो है आपके लिए मिलती हैं।
1: जो
0: और
1: आपके घर से नजदीक हो मतलब वहाँ जाके वो सुविधा।
0: हाँ वैसे
1: ओम प्रकाश शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें आज राष्ट्रीय डाक दिवस पर, और आपको भी राष्ट्रीय डाक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी बरेली को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली, और बरेली की बात ना की जाए ऐसे कैसे हो सकता है। साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर है बरेली के लिए कि रिवर रेंचिंग कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शुक्रवार को रामगंगा नदी में 1,00,000 मछलियां छोड़ी गई हैं। साथियों, आपको बता दें कि नदियों में मत्स्य संपदा को बनाए रखने एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए ये आयोजन किया गया। इससे न केवल जल की गुणवत्ता में सुधार आता है बल्कि मछलियों का संरक्षण भी होता है। नदियों में प्रदूषण और मानव जनित क्रियाकलापों के कारण मछलियों की प्रजातियां घट रही हैं। जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे जलीय मत्स्य संपदा में कमी हो रही है। यह स्थिति न केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बल्कि मानव समुदाय के लिए भी नुकसानदेह है। इस समस्या के समाधान के लिए रिवर रेंचिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और साथियों, एक और बरेली के लिए खबर के कल से शुरू हो रहे हैं

शारदीय नवरात्र। साथियों, बरेली नवरात्रों के लिए सज धज कर पूरी तरह तैयार है और सारे मंदिरों में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। कालीबाड़ी का मंदिर हो, साहूकारा का नौ दुर्गा मंदिर हो, या नेकपुर का ललिता देवी मंदिर हो, बदायूं रोड सुभाष नगर करगैना का 84 घंटा मंदिर हो, या नरियावल का माँ शीतला मंदिर, सभी मंदिरों में बहुत धूमधाम से नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और कार्यक्रम में अब अधिक समय नहीं है कि आपसे और बातचीत की जाए, तो इसी के साथ अपने दोस्त शीशपाल को दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीनू खरे और रश्मि खरे के गाए इस देवी गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने जो लोकगीत सुना, स्वर था अनिता द्विवेदी का। आइए अब आपको सुनवाते हैं बालकृष्ण भारती के स्वर में ये देवी गीत।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले

0: वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था द स्काई इज पिंक। और अब मेट्रो इन दिनों फिल्म का गाना कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

फैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की बोल थी। प्रीतम की तर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
3: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। सफर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा मुसाफिर बनकर दिल में रह जाते हैं। न वो साथ होते हैं, न दूर होते हैं, बस यादों में हर पल मौजूद रहते हैं, है ना दोस्तों? जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, फोकस MRI डायग्नोस्टिक्स। आज शुरुआत फिल्मों से करते हैं
5: जी।
4: फिल्मों में हार्ट अटैक का सीन आपने बहुत बार देखा होगा। अचानक कोई व्यक्ति अपनी छाती पकड़ लेता है, बहुत तेज उसको दर्द हो रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है और आसपास के लोग समझ जाते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में हार्ट अटैक हमेशा इतना ड्रामेटिक नहीं होता, इतना फिल्मी नहीं होता। कई बार शुरुआत बहुत ही हल्के से होती है, बहुत सटल तरीके से होती है। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी हैवीनेस, थोड़ी सी बर्निंग कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, सांस कुछ थोड़ी सी फूल रही होगी या कुछ ज्यादा फूल रही हो, अचानक ठंडा पसीना आ जाएगा या फिर बस ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। या और यही आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हार्ट अटैक हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, जोर से नहीं आता, बिल्कुल फिल्मी ड्रामेटिक नहीं होता। कभी कभी वे सिर्फ सिंपल, बहुत ही हल्का सा वार्निंग सिग्नल देता है
5: जी।
4: अगर हम उन संकेतों को पहचान लें और समय पर एक्शन ले लें तो किसी की जान बच सकती है
5: जी।
4: बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हमारे हार्ट की मसल्स को लगातार ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। ये ब्लड कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है। अगर किसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट मसल तक ब्लड सप्लाई रुक जाएगी
5: जी,
4: है ना, या कम हो जाएगी, तो हार्ट मसल्स को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम
5: जी।
4: टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी देर ब्लड सप्लाई बंद रहेगी हार्ट मसल को उतना ज्यादा नुकसान होगा
5: जी। अच्छा,
4: जैसे आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आया लेकिन सही से वो पहुंच गया टाइम से, तो वो उसका स्टेंटिंग हो गई, वो ठीक हो गया। इसलिए कार्डियोलॉजी में, दिल की बीमारियों में सबसे फेमस कंसेप्ट है टाइम इज मसल। हार्ट अटैक में आपकी मसल्स हैम्पर्ड हो जा रही है, तो टाइम इज मसल, यानी हर मिनट मायने रखता है, एक एक मिनट मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। इसलिए हमारा पहले टारगेट ये है कि किसी को घर पर बैठकर पता करे कि ये न माने कि ये गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है। और अगर डाउट है तो आप मान लो यार कि डॉक्टर के पास चले जाओ
5: जी, बिल्कुल।
4: और डाउट हो रहा है तो पहले लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस पॉसिबिलिटी को मिस ना करें कि हार्ट अटैक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार्ट अटैक में चेस्ट सिम्टम कैसे हो सकता है? लोग अक्सर सोचते हैं हार्ट अटैक है तो बहुत तेज दर्द होगा, जरूरी नहीं है। कई पेशेंट इसे पेन भी नहीं कहते, वे कहते हैं डॉक्टर साहब छाती पर कुछ ऐसा लगता है, वजन रखा हुआ है। कोई कहता है मुझे लगता है चेस्ट जैसे टाइट ज्यादा हो गई है, जैसे मैं कमर में बेल्ट मानता हूं तो मुझे लगा है छाती पे मैंने बेल्ट बांध रखी है। कोई कहता है थोड़ा सा दबाव सा था, कोई कहता है जलन सी लग रही थी हल्की सी, कोई कहता है पीछे कमर में दर्द हो रहा था ऊपर की तरफ, और कोई कहता है मुझे स्क्वीज हो रहा था, जैसे कि नींबू को निचोड़ते हैं वैसे मुझे मतलब स्क्वीजिंग सी हो रही थी या मुझे जकड़न लग रही थी। इसलिए सिर्फ चेस्ट पेन के शब्द पर मत अटकिए
5: जी, बिल्कुल।
4: मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ छाती के दर्द पर मत अटकिए, शब्द बेहतर है चेस्ट डिस्कम्फर्ट। प्रेशर, टाइटनेस, हैवीनेस, स्क्वीजिंग, फुलनेस, बर्निंग, फला, ढिमका, बहुत सारी चीजें, इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है ना। हार्ट अटैक में दर्द कितना तेज है उससे तो इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम कैसे हैं और उसके साथ क्या हो रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड सिम्टम तो नहीं आया जो

0: में आज तक नहीं हुआ, या हमको जलन लग रही है लेकिन हो सकता जलन ना हो, हार्ट अटैक हो। अब दूसरा मिसकंसेप्शन, हार्ट की प्रॉब्लम है तो दर्द ऊपर की तरफ होगा, जरूरी नहीं है। डिस्कम्फर्ट या पेन दोनों, एक या दोनों चीज दोनों हाथों में जा सकती है, कंधों में जा सकती है, जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड में ही जाएगी, हो सकता है दोनों कंधों में चली जाए, है ना, आर्म्स में चला जाए, कमर में चला जाए, जबड़ों में चला जाए, कान की तरफ चला जाए, गर्दन की तरफ चला जाए, है ना, कहीं भी जा सकता है। कभी पेशेंट कहता है मेरे बाएं हाथ में हैवीनेस थी, कभी जबड़े में अजीब दर्द था, कभी कहेगा अपर अबडोमन में बर्निंग थी, मुझे लग रहा था जैसे कि कुछ मैंने गलत खा लिया था
1: जी।
0: इसलिए बॉडी के सिग्नल्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। अब प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हार्ट अटैक बिना टिपिकल सीवियर चेस्ट पेन के साथ हो सकता है कि बिना हो सकता है? हाँ, कुछ लोगों को चेस्ट डिस्कम्फर्ट बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही हल्का सा फील होता है
1: जैसे,
0: और कुछ प्रेजेंटेशंस में दूसरे सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, कि मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ सिम्टम आपको ज्यादा लगेंगे, जैसे किसी को लग रहा है बस सांस फूल रही है, बिना कारण ठंडा पसीना आ रहा है, थोड़ी सी उल्टी ऐसी लग रही है या उल्टी आई गई है ना, चक्कर आ रहा है, या थोड़ा थोड़ा हल्का सा सर लग रहा है, कि सर हल्का सा लग रहा है, या अचानक थोड़ा सा कमजोरी सी लगने लगी, या कुछ फटीक सा वीकनेस सा, मतलब सब कमजोरी सी लग रही है। विशेष रूप से जो महिलाएं होती हैं उनमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट के अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या थोड़ा सा उल्टी ऐसे लगना, या अनयूजुअल टाइटनेस होना, या कमर या बाजुओं में दर्द का जाना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं में, मतलब किसी में भी हो सकता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि कुछ भी हमें अनयूजुअल लग रहा है और हमारी उम्र है, मतलब मान लीजिए वैसे उम्र का आप कुछ रह नहीं गया, तब भी 40 साल के ऊपर है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जितने ज्यादा ओल्डर एडल्ट्स होंगे और जिनको डायबिटीज वगैरह है और दिल की बीमारियों का इतिहास रहा है, तो उनको सिम्टम्स बहुत सटल भी हो सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनको भी हो सकते हैं, किसी और को भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मैं और ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब हमेशा ये नहीं कि कोई सिम्टम ही नहीं था, सिम्टम था लेकिन उसको हमने इग्नोर कर दिया, या हल्का सिम्टम था हम उसको पकड़ नहीं पाए
1: जी, बिल्कुल।
0: कभी सिम्टम इतने माइल्ड या अनयूजुअल हो सकते हैं कि व्यक्ति उनको हार्ट से जोड़ ही नहीं पाता है। प्रॉब्लम कई बार सिग्नल की कमी नहीं होती, सिग्नल को पहचानने की कमी हो जाती है। अब एक बहुत कॉमन सिचुएशन, चेस्ट में छाती में हमें लगा जैसे कि कुछ जलन सी हो रही है, है ना, और पेट के ऊपरी हिस्से में भी हमको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है ना, तो हमारा पहला थॉट होता है यार गैस वैस हो गई होगी, कल कुछ खा लिया होगा, मतलब रात को देर में खा लिया, या कहीं पार्टी में चले गए वहां खा लिया, या हो रही है कुछ ना सुबह से लग रही है, या रात में शुरू हो गई रात के 2 बजे, और फिर शुरू होता है इंतजार, आदमी गोली खा लेता है और सोचता है यार थोड़ी में ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा सुस्ता लिया, थोड़ा लेट लिया, देखते थे आधे घंटे में ठीक होता है नहीं, उसका समझेंगे है ना दोस्तों, यही डिले डेंजरस है। देखिए अगर आपको एसिडिटी की हिस्ट्री है तब तो बात अलग है ना, लेकिन आपको एसिडिटी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा, तो उसको लाइटली मत लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर एसिडिटी, मैं ये भी नहीं कह रहा हर एसिडिटी हार्ट अटैक है, बिल्कुल नहीं, एसिडिटी बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत लोगों को होती है, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट नया है, नया वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जैसे आपको हिस्ट्री है डिस्कम्फर्ट की जो होती है, बर्निंग सेंसेशन आपको एसिडिटी देती है, तो बात अलग है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड है कि मतलब यार मैंने कुछ खाया तो था नहीं पहले कल, कुछ कल मैं पार्टी में तो गया नहीं था, है ना, और मुझे होती भी नहीं गई, पहली बार हुई है, तो उसको लाइटली मत लीजिए। या उसके साथ आपको पसीना आ रहा है, या आपको सांस हल्की सी भी फूल रही है, या आपको उल्टी ऐसा फील हो रहा है, या कुछ अपर बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, तो आप इसको लाइटली मत दीजिए, और सिर्फ एसिडिटी मानकर ठीक मत बनिए। हर चेस्ट बर्निंग हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ कर खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा। मैंने एक अभी प्रोग्राम था उसमें भी यही बोला था कि अगर आपको डाउट हो रहा है
1: जी,
0: तो ये चले जाओ डॉक्टर के पास, क्या होगा जी, जाएंगे आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिखाएंगे, है ना, डॉक्टर जाकर क्या कहेगा कि आपको हार्ट अटैक नहीं आया। अब मान लीजिए आपके सामने किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हुए जिन जो भी हम डिस्कस करें,
2: डॉक्टर साहब ऐसे में पहली बार क्या करना होगा?
0: देर मत करिए, सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करिए, है ना, उस बंदे को ड्राइव करके खुद मत जाने दीजिए हॉस्पिटल, आप ले जाइए या कोई और ले जाए,
1: गोल्डन टाइम को प्रयोग करना चाहिए।
0: भारत में जहां भी उपलब्ध हो तो एक यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर या आपके लोकल इमरजेंसी नंबर है उसको अपनी जेब में रखिए, क्या नंबर कर सकते हैं, लोकल एम्बुलेंस है या इमरजेंसी सर्विस को भी आप कॉल कर सकते हैं। पेशेंट को खुद ड्राइव मत करने दीजिए, एम्बुलेंस बेहतर है, क्योंकि रास्ते में कंडीशन अगर बिगड़ गई तो, इसलिए एम्बुलेंस बेटर रहती है, अगर नहीं आ रही है एम्बुलेंस देर लग गई तो अपनी गाड़ी से ले जाइए। तीसरी बात, घर पर ट्रीटमेंट करके सिम्टम्स खत्म होने का इंतजार मत करिए, और एस्पिरिन को लेकर भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं ना एस्पिरिन खा ली अब कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक का शक हो तो पहले इमरजेंसी हेल्प को कॉल करना है ना, एस्पिरिन लेकर ये देखने के लिए मत बैठिए कि पेन ठीक होता है नहीं, इमरजेंसी कॉल पे कर दीजिए, उसका इंतजाम कर दीजिए, फिर उसका एस्पिरिन खा लीजिए ना। एस्पिरिन हर व्यक्ति के लिए ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट नहीं होती, ये नहीं कि कोई भी खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा उससे। इमरजेंसी प्रोफेशनल या

0: मतलब डॉक्टर्स की एडवाइस जरूर लें, हो सकता है आपको डॉक्टर ने मना किया है एस्पिरिन खाने के लिए, तो मत खाइए, है ना, ये आपकी एस्पिरिन पहले से चल रही है ना?
1: जी, जी,
0: तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है एस्पिरिन हर एक के लिए अप्रोप्रिएट है। एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट
1: क्या है,
0: ये दोनों एक चीज नहीं होती। हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट अटैक में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक इफेक्टिव पंपिंग जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड वो बंद कर देता है।
1: अच्छा अच्छा जी,
2: और ऐसे में डॉक्टर साहब क्या होता है?
0: और व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है ना। हार्ट अटैक मतलब ऐसे माने तो हार्ट अटैक छोटी चीज है, कार्डियक अरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। हार्ट अटैक कभी कभी कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को कभी कभी ट्रिगर कर सकता है, लेकिन दोनों कंडीशंस अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति अचानक कोलैप्स कर जाए, रिस्पॉन्ड ना करे और नॉर्मल ब्रीदिंग भी ना हो तो ये इमरजेंसी है। वैसे आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा इमरजेंसी, लेकिन मैं फिर से इसको और मतलब करना बताना चाहता हूँ कि ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिए, और अगर यदि आपको CPR आता है तो शुरू कर दिए, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को पहले कॉल कर दिए, उसके बाद जो करना है वो करिए
1: जी।
0: और अगर आपके पास AED होता है जैसे कि तो है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हार्ट अटैक मतलब हमेशा बहुत तेज पेन होना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक मिथ है। सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं, पेन सिर्फ लेफ्ट साइड चेस्ट में होगा, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, वो आर्म, शोल्डर, बैक, नेक, जॉ, अपर एब्डोमेन कहीं पे भी हो सकते हैं। सांस फूलना भी हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चेस्ट पेन ही हो। महिलाओं में भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉमन है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं में नहीं होगा, लेकिन उनके साथ नौजिया मतलब कि उल्टी ऐसा फील होना या सांस फूलना, अनयूजुअल फटीग होना, है ना, ये दूसरे सिम्टम भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। पहले कुछ लोग सोचते हैं पहले मेडिसिन लेकर आधा घंटा देख लेते हैं, उसका समझेंगे आगे क्या हुआ, ये डेंजरस आइडिया है, इसको प्रमोट बिल्कुल मत करिए। पहले इमरजेंसी हेल्प को कॉल करिए या एम्बुलेंस को कॉल करिए, उसके बाद कोई दवाई अगर आपको डॉक्टर ने बता रखी है या बता रखा है कि आपको हार्ट अटैक कभी हो तो ये खा लीजिए, वो खा सकते हैं। हार्ट अटैक का रीजनेबल सस्पिशन हो है तो बिल्कुल भी डिले मत करिए, फैमिली हिस्ट्री है तो और भी ज्यादा डिले मत करिए। दोस्तों आज की बातचीत से बस एक इमेज अपने दिमाग से निकाल दीजिए
1: जी,
0: जो इस मतलब इस प्रोग्राम का मोटो है, प्राइम मोटो है, वो एक लाइन में खत्म हो सकता है, लेकिन मैं बार बार अलग अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा
1: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि आपके पास दिमाग में बैठ जाए किसी ना किसी तरीके से कि हार्ट अटैक मतलब ये नहीं है कि आदमी अचानक चेस्ट पकड़ के गिर गया, हार्ट अटैक मतलब ये नहीं है कि आदमी अचानक चेस्ट को पकड़ के लेट गया, गिर गया। असल जिंदगी हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती है। हार्ट अटैक में हो सकता है कि प्रेशर हो, प्रेशर फील हो हमको चेस्ट में, टाइटनेस फील हो, थोड़ी हैवीनेस फील हो रही है, स्क्वीजिंग फील हो रही है, बर्निंग फील हो रही है, आर्म या जॉ में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस फूल रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, हमारा दिमाग हल्का फील कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब जिसको हम डिजीनेस कहते हैं, नौजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं
1: जी,
0: है ना, तो ये अनयूजुअल फटीग के रूप में भी आपको प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए अगर सिम्टम नए हैं, नए मतलब पहली बार आपको हुए हैं, अनएक्सप्लेन है कि भाई आपने शाम को पार्टी तो करी नहीं थी, तो साला जर्नी क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है, तो कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है उसको तो और ज्यादा है, या आपके सिम्टम बार बार हो रहे हैं तो सिर्फ ये सोचकर एक दौड़ मत करिए शायद एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी वर्ड सुन के कभी कभी डर लग जाता है आजकल, शिक्षा हो रहा है। आखिर में तीन बातें याद रखिए, हार्ट अटैक हमेशा फिल्मी नहीं होता, टाइम इज मसल, और सबसे इंपॉर्टेंट, When in doubt, don't wait. Act fast. When in doubt, अगर आपको संदेह है तो इंतजार मत करिए, जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करिए, खुद ड्राइव मत करिए, एम्बुलेंस को कॉल करिए, घर पर मेडिसिन लेकर सिम्टम्स ठीक होने का इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्यों सही समय पर लिया गया एक डिसीजन आपकी और आपकी फैमिली की पूरी जीवन शैली बदल सकता है,
1: बदल सकता है,
0: आपकी अवेयरनेस किसी और की जान भी बचा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: आप अवेयर है तो हो सकता है किसी आदमी आप जान बचा लें। मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए, और अपने शरीर के वार्निंग सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
2: और अब जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चलते चलते एक बात याद आ गई, मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान थे बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आ, छोड़ता नहीं इधर आ, अपने दो रुपये अरे अपनी चिंदिया, अभी देखता क्या है, चल जल्दी कर पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा और सीधा निकल जा बाहर, ठहर जा, अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की, कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटेगा।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहाँ से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: फिल्में बनाई। उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेलिया।

फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा।

0: सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
1: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था
2: अच्छा?
1: मुझको।
2: तो ये शायर भी है?
3: शायर?
1: बड़ी
3: अरे तू देखती रही, उसकी कुछ 5-6 नज़मे उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
1: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया।
0: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।
4: यहां

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 107.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी पसंद लिख भेजी है हमारे सोशल मीडिया पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर, आकाशवाणी बरेली पर, और बहुत सारे नाम हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके नामों का सिलसिला। और ये पहला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए, आप हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा पारसमढ़ी, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बहेड़ी से अंजुम भाई खालदा बेगम, और आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इतरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलगण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र और बंटी बबली वर्मा, आप हैं हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, ये हमारे श्रोता शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लोबना और आलिया अंसारी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुवियानी वादक, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहा, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास और बंडू पोपलघट, ये हमारे श्रोता डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा, थाने के सामने नगर पंचायत अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर से, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से हमारे श्रोता आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी, पतली गली बनारस से मुश्ताक सुलेमानी और शाहिद सुलेमानी, ईदगाह जनूबी जिला भक्कड़ पंजाब से मोहम्मद हाफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान, आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गठे, संगीता, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल और पीवी कुलथे, पश्चिमी सिंह भूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता लिपि और दीपाली गोप, आप हैं बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग, शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियल, कायरव और गौरी गुप्ता, ईदगाह जनूबी जिला भक्कड़ पंजाब से रेहाना खान, गोंदुर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरोनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अल्जबा, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से

श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। आप हैं गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लवेश और मुनेश देवी प्रजापति। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार। दादा बाबू रोड गिरिडीह, झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पमार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पमार, अलमास बानो, मोइन छोटू पमार, शंकर लाल गंगराडे, बनीता गंगराडे और हसनैन पमार। ये हमारे श्रोता गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे और मारोतराव पांचाल। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। आप हैं जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह और शुभम विश्वकर्मा। आपके साथ अरुण विश्वकर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। ग्राम खेजरपुर, सिंथल, नवाबगंज, बरेली से गुलाब हुसैन, इमरान, रिजवान, शबाब और फरहान हुसैन। और आप हैं रेलवे रोड गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज और सजिता गौतम। आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म आशा का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गागला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आप हैं मारहरा।

दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन और अनम यशफ अब्बासी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। बाबूदीन कंकर खेड़ा मेरठ कैंट से हैं हमारे श्रोता है। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवा, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जिव्यम जैन। कस्बा उगैती जिला बदायूं से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद समद और सादिक सिद्दीकी। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक और मुरली क्षत्रिय। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत, मिथिला नाचानी, गोपाल तंबोली और तिलक तंबोली। नजमुल होदा एस एम जावेद गुमला झारखंड से। रेलवे रोड गंज डुंडवार से मोहम्मद कलीम, जख्मी भुवन प्रकाश गौतम, दबरीरुल हसन, शबरम नाजमा और सजिता गौतम। राजकोट से जैमिन जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन, साथ में राकेश जैन। ये हमारे श्रोता आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू और गुड्डू रंगीला। मावलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, पी एस नावकर, वसंतराव भोजने और मोहन करांगले। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। आप हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आवाद खान, जोहान सैफी और लीबा मलिक। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। उज्ज भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी। आप हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार और सनी भावसार। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैमन निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आवाद खान। कस्बा उगैती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, निर्भय और कार्तिक गुप्ता। आप हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूढ़त और चेतन हटा। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश कुमार, सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव और एसके पप्पी। कस्बा उगैती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, प्रिंस, पंकज। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। आप हैं मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। गांव बिठोड़ा बोयर तहसील मंगरोल पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती, मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद मस्के और आपके बहुत सारे साथी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, अल्तमश खत्री और शादाब खत्री। ये हमारे श्रोता अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लदावली से। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मुस्कान, जितेंद्र मालाकार। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपके परिवार के सभी सदस्य। रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। ये हमारे श्रोता सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। आप हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार, मालवीय दर्द और नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, राहुल और मनीष शर्मा। श्रोताओं आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप एक ही बार कमेंट किया करें, क्योंकि बार बार कमेंट करने से असुविधा होती है और हमारे अन्य जो श्रोता हैं उनके नाम पढ़ने से छूट जाते हैं। कृपया ध्यान रखिए।
आप सभी के लिए सुनवा।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमलपरी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, इस्लामुद्दीन मुन्ना भाई और आशिक हुसैन, घरौंडा जिला करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान। आप हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, आराध्या साहू। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, परिमहल कासगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और एम असलम सैफी, असलगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन ज्ञानेश्वर माठे और संतोष एस कालेजी, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावन जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, केशव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरश्री यादव, रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सोनू गौतम रामपुर उत्तर प्रदेश से, शेरकुट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, गांव अलगी डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल और फूलजी यादव। ये हमारे श्रोता हैं बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और प्राची तनु करमरकर, ग्रामबा पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम मिश्रा, और आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गर्जेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहोदरी और मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और चंद्रपाल मरावी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेगा और आशीष राजा, ग्राम

अनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। आप हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे, बरवट वकाल बुल्ढाणा से। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। ये हमारे श्रोता नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनबारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन और आपके सभी साथी। पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप हैं गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा, उमर अंसारी और समीरा अंसारी। ग्राम चतुपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गौसिया बी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला नावकर, सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मुनेकर। धनौजी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान बाबू। राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर भारती, रविंद्र यादव, प्रेमपाल दिवाकर, जुगेंद्र यादव, महेंद्र पाल, अनुज पाल और काजल पाल। आप हैं सनैया धन सिंह बरेली से। पोटिया काला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ तैमूर और कलीम अंसारी। गांव अरायन से जिला श्री गंगानगर राजस्थान से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया। आप हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत किशोर कुमार, मन्ना डे और इनके साथियों के स्वर में।

0: मेरे को छूते की कोच कर, छीत के तोरे मन मत कर, छीत के तोरे मन मत कर, सब चले गए छीता गुड़ छीतेंगे छीतू गुड़ कैसे कुछ खाए कैसे कुछ खाए कैसे कुछ खाए हाय हाय
1: जा रे खा रे कागा का क्यों शोर मचा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये हमारे श्रोता हैं मन की लोर में छत्तीसगढ़ से, नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे, मोहल्ला बारादरी, महमूद खां रामपुर से, रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, रशीद भाई, असद, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, भागलपुर उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती और सुनीता देवी। आप हैं बुलंदशहर से उमेश गौड़, रानी गौड़। ये हमारे श्रोता भुतक छार छत्तीसगढ़ से, दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। गांव लाहौड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी।

बुला सेक्टर नंबर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा। पंचकुला सेक्टर नंबर 11 से अतुल शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं गंज टंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनुखान, अदनान खान, फैजान खान। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। मोहल्ला थाना 3 रामपुर से इकराम अली प्रेमी, फैजान अली प्रेमी, एहसान अली प्रेमी, शहनाज, गुलनाज, उज्मा और रोहन साहब। चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार दुबे, कलावती अनुष्का और अश्विनी दुबे। पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया और बंटी थोरात। कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ हुसैन, मोहम्मद अजान अंसारी और अलमीर बशर अंसारी। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। सलका चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विवेक कुमार दुबे, विमांशु, अंकित, अंकिता शुक्ला और श्रुति शुक्ला। आप हैं कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाईकल्लू मिस्त्री। मालिया सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता, लक्ष्मी ध्रुव, वैदेही, हंसिका। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू जी। बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, गांव कुमार हैडा। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया। आप हैं अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावे राव। सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। नया पारा भिराई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से निशा ठाकुर। आप हैं रेखा बोली, ये हमारे श्रोता हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। आप हैं मोहम्मद कौसर नियाजी, फैजान नियाजी, रेहान नियाजी। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता, केशव सिंह और वेदा सिंह। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समा, हेना, रजिया सुल्ताना, सुराज अंसारी और आपका पूरा परिवार। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, रजा अंसारी, बिलाल, जुबैर और आलम अंसारी। चांदवाली मस्जिद मुरादाबाद से मेराज अंसारी और वसीम अंसारी। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, रजा, बिलाल, जुबैर और आलम अंसारी। टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा, रीमा और राहुल डोंगर दिवे। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। ये हमारे श्रोता हैं गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव और सोना यादव। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईशराज ठाकुर, नयापारा बिरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। और आप हैं ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर नटवर लाल का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

शा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल और आपका पूरा परिवार। आप हैं गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित वैभवपाल ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम सिधुवाला सूरतगढ़ राजस्थान से इंद्राज जियाणी, अंकुश जियाणी। आप हैं वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शमा, शिवी मधुवाला प्रजापति, चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से। जी हमारे श्रोता अद्भुत कुमार दीक्षित मणिनाथ बरेली सिटी से। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, ज्योति पाल, अंजना, हरिमोहन और बेबी लक्ष्य। मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से हमारे श्रोता। कटा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सुफियान, अनस। सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और मुस्तफा खान। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वासी, इमरान शेख, रेहान शेख। करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। आप हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे। सब्जी मंडी कस्बा उसामा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप। सिहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस और सोफिया खान। सालार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन। और आप हैं ग्राम नदायल जिला बदायूं से फिरोज खान, नूरी फिरोज, अरवाज खान, शहबाज खान। और ये हमारे श्रोता प्रथम सलूजा, संगीता सलूजा, C2 जनकपुरी नई दिल्ली से और प्रदीप सलूजा जी। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्भी और हिमाक्ष। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। अड़ार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी और राहुल वर्मा। गंज डनवार से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, उस्मान और यासीन हाशमी। अरेरिया बिहार से सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रेहाना, प्रवीण और माहिया अर्जू। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। ये हमारे श्रोता हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। कटरा चांद खां पुराने शहर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नू भाई। सफीदों सिटी से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली, रजत, लव, कुश और समस्त परिवार। आप हैं गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब से उर्मिला बगड़िया, बेबी गर्मा बगड़िया और क्रियांश बगड़िया। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर बदायूं से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा और हदिया खान। उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। और आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह। मुबारकपुर ऊंची तकिया
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म सच्चा झूठा।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल, उर्वशी परमार। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। आप हैं ग्राम राजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल।

0: ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं के इतना प्यार मिल रहा है आकाशवाणी बरेली, क्योंकि आपके इतने नाम हैं कि एक कार्यक्रम में समेटना थोड़ा मुश्किल है। और जिन श्रोताओं के नाम पढ़ने से रह गए हैं, कृपया वो निराश ना हो। ये कार्यक्रम रोज प्रसारित किया जाता है, कल फिर मिलेंगे आपसे। इसी के साथ कार्यक्रम से अब मुझे यानी शीशपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम

सबरंग। कार्यक्रम सबरंग में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, आइए अब आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम सबरंग में आइए, अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया का गाया ये गीत।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

भूपेंद्र सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम सबरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।

0: जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत। हमारे 11:32 हो रहे हैं और इस प्रोग्राम में इस वक्त किसकी शिरकत हो चुकी है आवाज, यानी कि फोन के जरिए आइए सुनते हैं उनकी आवाज। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम परसेंडी
1: बहराइच से। जी सत्यम जी, कितने दिनों के बाद आपका फोन लगा है?
2: मेरा फोन 21 जुलाई को लगा था।
1: अच्छा जी, बहुत दिनों के बाद आपने फोन किया। एफएम रेनबो सुन पाते हैं, समय मिलता है?
2: रेडियो में इसीलिए गूगल पर सुनते थे, लेकिन अभी कुछ समय से हमारे यहाँ इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है।
1: जी जी,
2: इसलिए इस वक्त नहीं सुन पाते।
1: अच्छा, नहीं सुन पाते, लेकिन फिलहाल आज आप सुन रहे हैं तो आपने फोन लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं लाइन हूँ मैम, पहले भी आप बात हो चुकी है मेरी कई बार।
1: जी जी, आपसे कई बार बात हो चुकी है। जी जी जी जी, और किन चीजों का शौक रखते हैं आप?
2: मुझे गाना अच्छा लगता है और गाने सुनना अच्छा लगता है।
1: अरे वाह, गाना आप जी, जी संगीत की तो कोई मतलब इतना गहरा है संगीत की, आप कभी भी कुछ भी सुने, संगीत अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तरोताजगी होती है ना?
2: बिल्कुल
1: जी। तो सत्यम जी, आपका यही संदेश बहुत अच्छा है कि संगीत से आप जुड़े हैं और संगीत सुनना आपको बहुत पसंद है, संगीत सुन के आप बहुत मस्त रहते हैं, ये हमें बहुत अच्छी बात लगी आपकी। और आप कुछ और कहना चाहेंगे?
2: जी कुछ नहीं, बस याद आ रही थी जो।
1: हाँ, बहुत अच्छा कि आपने फोन किया, आपका फोन लगा, इसकी हमें भी बहुत खुशी है। और इसी तरह से आप एफएम रेनबो सुनते रहिए जहां तक आपका नेटवर्क रीच करता है, और अपने आप को मस्त रखिए, व्यस्त रखिए जितना हो सके, ठीक है?
2: धन्यवाद
1: सत्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दोस्तों, वक्त आ गया है, हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में जुड़ते हैं।
3: एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और एलआईसी की गारंटी।
4: एलआईसी, हर पल आपके साथ।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

वेल, आप सबको बता दें 11:40 होने प्रोग्राम चला संदेश आपके गीत हमारे रत्ना शुक्ला है आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ क्योंकि उनके मेल भी आ गए, मेल के साथ साथ उनके फोन कॉल भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब किनका मेल हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम हम ले लेते हैं। ये हैं तौहीद राइन जी, लिखते हैं उलझने बड़ी अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें, हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक किस पर एतबार करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, अपने छोटी सी लाइनों में बहुत अच्छी बात लिख दी। और गुड मॉर्निंग आपको भी। और मलियाबाद से इन्होंने लिखा है, मुझे प्रॉब्लम बहुत

मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तौहीद राइन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेल भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपने बहुत सारे फ्लावर्स भी भेजे, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वारिस अली जी ने भी मेल किया है और ये क्या लिखते हैं कि आदाब आपको भी वारिस अली जी, और सुगंध माटी के प्रोग्राम बहुत सुंदर ढंग से पेश किया आप, सुबह से खूबसूरत नगमे चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और संदेश ये कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई बुरा नहीं करेगा। जुगनू के पीछे एक बाज पीछे पड़ गया। जुगनू ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाज बोला, सही है, मुझे तुम्हारी चमक चुभती है। याद रहे, कुछ लोगों को आपकी बुराई नहीं, आपकी अच्छाई भी चुभती है। अरे वाह, वो एडवोकेट वारिस अली खान जी, संजय नगर ऐशबाग से इन्होंने बात लिखी। और बिल्कुल इन्होंने एक उदाहरण के साथ ये कि एक अच्छा सा संदेश दिया, और ये वाकई में ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं लागू ज़रूर होता है, हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कभी कभी हम यकीन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता। बहुत अच्छे से मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब है नाजिम अली जी का मेल, नाजिम रेन जी का मेल है। बस इनका मेल है कि दिल्ली इंद्रलोक से सुन रहा हूँ, सुप्रभात। नाजिम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और तौहीद राय जी ने उसी को कई बार रिपीट किया। उसके बाद है मिसबा फातिमा जी का मेल। हम बहुत अच्छे, इन्होंने पूछा है, हम बहुत अच्छे हैं, आप भी उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारे यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए मेरा भाई आया है, और खुशी मैं सबको एक गाना सुनवाना भी चाहती हूँ, तो आप ज़रूर गाना सुनवाइएगा उनको जब फरमाइश का प्रोग्राम होगा, जब आप अपने गाने की रिक्वेस्ट करेंगे, अगर प्रोग्राम चल रहा होगा गाने का तो ज़रूर आप उनको गाना सुनवाइएगा। डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से मिसबा अंसारी जी का रामपुर कटरा से मेल है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। टुक टुक जी का भी मेल आ गया है, यानी कि दीबा अदीबा जी का। हेलो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दीबा जैनी जी की ओर से आप सभी को मोहब्बत से भरा सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम। मेरी सुपर से भी ऊपर दी, यानी रत्ना दी, आप बहुत प्यारा बोलती हैं। और हाँ रत्ना दी, आज मैं कॉलेज नहीं गई, वो इसलिए हमने पहले से ही मनसा बना ली थी कि आज कॉलेज नक्को यानी कि नहीं जाना है। और रत्ना दी, मैंने इतनी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ कह नहीं सकती, बस आप मेरे ईमेल से समझ गई हूँ कि मैं किस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कितनी खुश हूँ। जी खुश हैं ये तो जाहिर हो रहा है, क्योंकि किस लिए खुश है वो तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ खुश रहना और खुद दूसरों को खुशी पहुंचाना ये बहुत ज़िंदगी का एक अच्छा सा उसूल होना चाहिए। और बहुत अच्छे सॉन्ग आप प्ले कर रही हैं, मुझे डांस करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और लव यू, मैं बहुत खुश हूँ। आप इसी तरह से बहुत खुश रहिए और इसी तरह की खुशी को हमेशा आगे के लिए भी कायम करती रहिए। और सभी लिसनर्स को ईमेल आप शामिल करिए, साथ में मेरा भी शामिल कर लीजिएगा। टुक टुक जी, दीबा अदीबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और अब वक्त आ गया कि एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आपके बीच में भेज दें, उसके बाद फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, बात करते हैं, आपके संदेश और आपके फोन कॉल अटेंड करते हैं।

0: एलआईसी की अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। एलआईसी हर पल आपके साथ।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: रंग हमारे संग तुम्हारे, सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन 100.7 FM रेनबो
2: सुरों का लखनवी एहसास।

0: था, मैं मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ, ग्राम बड़ेहा पोस्ट बारौली गंगागढ़
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका मोहम्मद अमीन जी। बहुत दिनों के बाद आपने फोन मिलाया, क्या?
0: मैम फोन लगता नहीं, रखने की बहुत कोशिश करते हैं
1: जी जी
0: और हेलो करने की कोशिश करें, लेकिन आपसे बहुत अर्से बाद बात
1: जी अरसों के बाद आपसे बात हो रही है, और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं आ रही, बहुत धीमी भी आ रही है, तो कोशिश करिएगा आवाज़ साफ हो जाए। जोर से आए आपकी आवाज़।
0: हेलो आवाज रही है।
1: हाँ, आप कुछ गूंज रही है आपकी आवाज़, इसलिए। और मोहम्मद आमिर जी किस शहर से बोल रहे हैं ये समझ नहीं पाए।
0: रत्ना जी मैं गंगागंज लखनऊ के पास पड़ता है बड़ेहा गांव, वहीं से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, गंगागंज से बोल रहे हैं। जी,
0: जी
1: और
0: जी
1: बताइए आमिर जी, करते क्या हैं आप?
0: वैसे तो मैं जो है पेंटिंग करता हूँ मैम
1: अच्छा
0: जी,
1: जी
0: और थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत काम वगैरह ऐसे कुछ मिल जाता है, ठेके में काम वगैरह भी करवाना है, जैसे डिस्प्ले ड्यूटी का काम हो गया, कुछ करवाना हो गया, तब तक उसमें भी इन्वॉल्व है।
1: यानी कि आप व्यस्त रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन आप मोहम्मद अमीन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप एफएम रेनबो कब से सुन रहे हैं?
0: रत्ना जी मैं एफएम रेनबो जब से सुन रहा हूँ,
1: जी
0: जब से आप पहली बार काम करने आई, बिल्कुल
1: अच्छा। अरे
0: बिल्कुल
1: वाह वाह वाह, देखिए इतने अच्छे अच्छे नियमित श्रोता हैं और एफएम रेनबो से इतनी मोहब्बत जताते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि
0: रत्ना
1: आप।
0: जी, आप जब पहले आपका प्रोग्राम मतलब आप अपने आती ना, तब हमारे बहुत वरिष्ठ और भी एक्टर्स वगैरह थे, जैसे नावेद भाई, वंदना शुक्ला और आप, और प्रोग्राम से बिजुरी वाला प्रोग्राम साल रात में आता था,
1: जी, बिजुरिया,
0: तो
1: जी, एफएम
0: शाम
1: बैठ
0: आप
1: का,
0: प्रेजेंट करती ना, बहुत ही
1: जी
0: मजा आता था प्रोग्राम सुनते।
1: जी तो इसी तरह से आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन के साथ साथ आपका शुक्रिया कि आप इतने टाइम से एफएम रेनबो से जुड़े हैं और आज भी आप एफएम रेनबो सुनना पसंद करते हैं। आपने शिरकत की, फोन आपका लगा मोहम्मद अमीन जी।
0: जब मैं
1: बहुत
0: टाइम टाइम मिलता है तो अधिक से अधिक मैं एफएम ही सुनता हूँ,
1: नहीं नहीं
0: लेकिन मैं एक
1: बिल्कुल
0: बात कहना चाहता हूँ रत्ना जी,
1: जी, जल्दी से कहिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। ब्ली
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग रेगुलरली कॉल होल्ड करते हैं, कम से कम थोड़ा सा इंतजार करके फोन करें, है ना, जैसे कि 12 बंकी वालों का नाम देखते हैं अक्सर प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो कम से कम औरों लोगों को भी मौका देना, तो
1: जी
0: सुन के,
1: जी
0: है ना मैम।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। मोहम्मद आमिर जी हमारे साथ थे और इनका कहना है कि जो लोग रेगुलर फोन करते हैं वो कम से कम थोड़ा गैप देके फोन किया करें। और अब हम लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बस हमारे भी चलने का टाइम आ रहा है और नेक्स्ट कॉर्नर अभी आपको बता दें। बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए।

0: और एक बार फिर से बारी आ गई हेलो कहने की, यानी कि 11:50 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आपकी होस्ट हिंदोस रत्ना शुक्ला है आपके साथ, और हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, सुनते हैं उनकी आवाज हम तक पहुंच पाती है कि नहीं। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग,
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कौन सा बोल रहे हैं?
1: रत्ना जी, मैं आपका बहुत पुराना और

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
2: LIC हर पल आपके साथ।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

ये लीजिए भाई, गाना तो आ गया, लेकिन जिन लोगों ने मेल किया उनके नाम भी लेना तो बनता है ना। तो हमारे साथ जुनैर बतूल अंसारी जी ने भी मेल किया और उनका नाम हम सभी का ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा। और ए के दुबे जी ने भी मेल किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एम के राज लखीमपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टुक टुक जी, दीबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ जी, आपने भी मेल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका भी मेल हमें मिला, नवरात्रि की शुभकामनाएं भी आपकी मिली। और तौहीद रायन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आपका मेल शामिल हो गया है। और मिसबा फातिमा जी का भी मेल शामिल हो गया। आप लोगों ने एक नहीं कई कई मेल करे हैं। और जैसा कि आपने तौहीद जी ने लिखा था, है उलझने बड़ी, इसको आपने बहुत बार रिपीट कर दिया है, लेकिन आप

मोहब्बत इसी तरह से एफएम रेनबो से निभाते रहिए। और आपसे कहेंगे महीन दीपन जी का भी मेल आया, रॉयल अमी जी का भी मेल आया, और वारिस अली जी का भी मेल आया, नाजिब रेन जी का भी मेल आया, सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेगी आपकी दोस्त रत्ना शुक्ला। और आपसे ये बता दें कि अब अगले कुछ घंटे प्रियंका रहेंगी आपके साथ, धमाल मचाएंगे एफएम रेनबो पर, तो बस आपको उनसे जुड़े रहना है और वीकेंड के साथ प्रोग्राम को एंजॉय करते रहना है। फिलहाल आज के लिए आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला आपसे कहती है बने रहिए, सुनते रहिए और एफएम रेनबो को रात 12 बजे तक सुनते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 803 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 78 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि बलरामपुर की प्रत्येक आकांक्षा को अवसर और प्रत्येक संभावना को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली में आज सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम

आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। इस बीच एनसीआर और उसकी सीमा से लगे प्रदेश के जनपदों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नोएडा में एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने कहा कि जनपद में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुरादाबाद रेल मंडल में संचालित 21 ट्रेनें भी आज रद्द कर दी गई हैं। और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि आज चलने वाली देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ मेल लखनऊ नई दिल्ली सुपरफास्ट निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट और कासगंज नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें भी आज निरस्त रहेंगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अपडेट के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जाएंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: LIC की जीवन लाभ एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून आदाब, वेलकम ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की और रेडियो सेट के इस पार। मैं हूँ आपके साथ आपकी रॉकिंग हार्ट प्रियंका, और आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, क्योंकि वीकेंड, एक्चुअली संडे से पहले हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है। आज हम सैटरडे का जो दिन है ये थोड़ा हल्का फुल्का, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातें और ऐसी बातें शामिल करने वाले हैं जिसमें आपको किसी अपने की याद ना आए तो फिर आप ना

मेरा नाम मत बदलना यार, नाम तो याद रखना, नाम सेम रखना है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि वाकई फैमिली फन का आज का जो शत्रुपा का सेगमेंट था ये बिल्कुल वाव था रियली। क्योंकि आज फैमिली फन में हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन कई बार फैमिली से कम नहीं होता। जी हाँ, आज बात होगी दोस्ती की, उस एक दोस्त की जिसे हम समय खराब हो या दोस्ती में झगड़ा हो, किसी से बहस हो जाए, ऑफिस में दिन खराब चला जाए या बस बिना किसी खास वजह के दिल थोड़ा सा भारी हो जाए, उस दिन फोन उठाते हैं और जिस एक नाम पर उंगली जाकर रुकती है वो होता है हमारा दोस्त। जी हाँ, कॉल लगाते ही उधर से आवाज आती है, क्या हुआ? और मजेदार बात क्या होती है कि आपने अभी कुछ बताया भी नहीं और उसे समझ आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। यही तो होता है ना कुछ खास दोस्तों के साथ, हम कहते हैं कुछ नहीं और वो कहता है मुझे मत बता, मुझे पता है कुछ हुआ है, बोल। और फिर शुरू होती है हमारी पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज है 10th of October, यानी कि 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो आज फैमिली फोन में हम कोई भारी भरकम लेक्चर की बात नहीं करने वाले, आज हम उसी दोस्त की बात करने वाले हैं जो हमारे बुरे दिनों में, बैड डेज में सबसे पहले हमारा कॉल उठाता है किसी भी टाइम। जी हाँ, 24 घंटे, सातों दिन, किसी भी टाइम हमारी पूरी कहानी सुनता है, कभी एडवाइस करता है, कभी हंसाता है और कभी बस इतना कह देता है छोड़ना यार मैं हूं ना। तो आज आप अपने दिमाग में वो एक नाम सोचिए, वो एक दोस्त बताइए जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, 24/7 दिया है और आप उसे सबसे पहले कॉल करते हैं, चाहे कुछ भी हो, अच्छा बुरा, कुछ भी अप एंड डाउन, आप उसे याद करते हैं। अगर आपको नाम याद आ गया है तो बिल्कुल आज का फैमिली फन बस उसी के नाम। आपको करना क्या है, आपको हमें मेल करना है या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी आकाशवाणी की मेल आईडी आपको पता है, फिर भी बता दूं, fmakashwanilakhnow@gmail.com। और मैं हूं आपके साथ आपकी रॉकिंग आर प्रियंका। प्रोग्राम शुरू करें, कॉलर को लें इससे पहले एक प्यार सा ट्रैक दोस्ती के नाम। ये रहा

तो दोस्तों फोन में कॉन्टेक्ट्स बहुत होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ काम पड़ने पर कॉल करते हैं, कुछ को हम बर्थडे पर मैसेज करते हैं और कुछ से महीनों में एक बार बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर फोन खुद कहता है कि इससे बात कर लो, मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। होता है ना ऐसा? आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं तो हम हमेशा उसी इंसान को कॉल करना पसंद नहीं करते जो हमें सबसे अच्छी एडवाइस करता है। क्यों करते? हम बस उसको कॉल करते हैं जो ना हमको बिल्कुल हमारे जैसी एडवाइस दे, जो हमको कहे कि भाई तुम्हारा रोने का मन है ना, चलो रो लो। हमें गुस्सा है तो कहते हैं हाँ गुस्सा आ रहा है क्या, चलो ठीक है गुस्सा निकालो, शिकायत करनी है कर लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस क्या करना है, फोन करना है, बस बोलते जाना है और सामने वाला बीच बीच में सिर्फ इतना कहता रहेगा अच्छा ओ फिर क्या हुआ, अरे यार ये तो गलत था। और आखिर में जब आपकी पूरी भड़ास निकल जाती है तो आप खुद कहते हैं यार अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और फिर क्या होता है, आपको लगता है कि भाई अब ठीक है चलो खाना वाना खा लेते हैं, अब ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। सामने वाला भी कहता है चल ठीक है बात तो हो गई, अब टेंशन ना ले, खाना वाना खा ले और ज्यादा सोचना, क्योंकि ये वही दोस्त होते हैं जो हमारी जिंदगी के अनऑफिशियल सपोर्ट सिस्टम होते हैं। इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई डेजिग्नेशन नहीं मिलता है, फिर भी जब जरूरत होती है तो ये सबसे पहले अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी मेल्स आ चुकी हैं, बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं, पर एक प्यारा सा ट्रैक हम लेते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉल्स और आपकी मेल्स को ऐड करना। तो कहीं मत जाएगा, आप सुन रहे हैं आपके रॉकिंग हार्ट प्रियंका को और हम फैमिली फन में बात करें कि भाई वो कौन है जिसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन उठाते हैं और आपको याद आता है बस वही एक नाम।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके रॉकिंग हार्ट प्रियंका को और फैमिली फन में आज हम बात कर रहे हैं कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसे आप सबसे पहले डायल करते हैं, वो कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपकी बात सुनता है, आप अच्छा बुरा जो भी कहो उसका मन हो भाई सुनने का ना हो वो तब भी सुनता है ना, तो ऐसा कौन सा दोस्त है। तो हमारे पास मेल्स भी बहुत सारी आ गई, कॉल्स भी हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे साथ पहली कॉल किनकी कनेक्ट हुई है, उनसे हम बात करते हैं। तो अभी जो हमारे साथ कॉल कनेक्ट हुई है वो हमारे साथ हैं योगी अनुराग जी, जो एंटोलॉजिस्ट है, ओरिएंटल साइंटिस्ट, स्कॉलर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज और हिस्टोरियन भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिसर्च वर्क में ये शामिल हैं और बहुत सारे कार्यों में ये प्रोजेक्ट हेड भी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि भाई इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं। हेलो अनुराग जी।
1: हेलो,

0: नमस्कार प्रियंका जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के फैमिली फन में। शत्रुपा का विशेष सेगमेंट है आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए, और आज हम फ्रेंडशिप पर बात कर रहे हैं। अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं तो अब तक आपने
0: जी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इसमें शामिल किया, बहुत धन्यवाद
1: जी, थैंक यू। अनुराग जी, ये बताएं कि अभी तक आप जो शो हमारा सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि भाई फ्रेंडशिप जो है वो, वैसे भी आप खुद भी जानते होंगे कि फ्रेंडशिप बड़ी हमारे लिए जरूरी चीज होती है। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग मानसिक सुकून के लिए एक अच्छे दोस्त का साथ होना कितना जरूरी है।
0: ये बहुत जरूरी चीज है, और जैसा कि समाज में प्रचलित भी है ये बात कि दोस्ती ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम चुनते नहीं है
1: जी।
0: बाकी सारे रिश्ते ईश्वर हमारे लिए पहले से बनाकर नियत रखते हैं कि आपके माता पिता कौन होंगे
1: जी,
0: भाई बहन कौन होंगे, लेकिन जब आप थोड़ा बड़ा होते हैं
1: जी,
0: आप अपनी बुद्धि का विकास करते हैं तो आप स्वयं चुनते हैं कि आपका मित्र कौन हो सकता है
1: जी।
0: और समय के साथ साथ आपको अनुभव भी मिलता जाता है कि कौन सा मित्र आपका ज्यादा बेहतर है, कौन सा मित्र आपको यूज कर रहा है या जो मित्र होने लायक नहीं है। धीरे धीरे आपको सब अनुभव मिलते जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य में मित्र का जो योगदान है
1: जी,
0: वो योगदान किसी साइकेट्रिस्ट से कम नहीं है। वो आपको कूल कर सकता है
1: जी,
0: वो आपको हाइपर भी कर सकता है, वो आपके जो मेंटल गियर्स है उनको चेंज कर सकता है अपनी फीलिंग से, अपनी बातों से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक फ्रेंडशिप के रिश्ते में मिलती
1: है जी। वाकई बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि दोस्त किसी साइकियाट्रिस्ट से कम नहीं होता है। तो चलिए, आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में भी आपका काम रहा है, तो आप एक सवाल हमारा ये आता है कि भाई इतिहास और हमारी जो संस्कृति है इसमें दोस्ती को एक हमेशा खास जगह मिली है। हम कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लें या हिस्ट्री में हम अगर बात करें तो हर जगह एक अलग फ्रेंडशिप की कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमारे दिलों को छू लेती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आज की जेन जी जनरेशन हमारी, जिसको हम बुला रहे हैं भाई, तो उनको जो मानसिक तनाव है उस टाइम पर उन्हें किसी अपने से खुलकर बात करने की जरूरत है?
0: जी बिल्कुल जरूरत है, और इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है हमें मित्रता के रूप में
1: जी,
0: और बहुत प्रसिद्ध भी है, सब लोग जानते हैं उसे, बस उस नजरिए से देखने की जरूरत है उसको
1: जी।
0: आपको इतिहास में दो किरदार मिलते हैं, कर्ण और अर्जुन
1: जी।
0: उन दोनों ने मित्र के रूप में जिन लोगों का चुनाव किया उसके परिणाम देखकर आप जान सकते हैं कि मित्रता को कैसे चूज करना चाहिए
1: जी।
0: अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मित्र के रूप में चुना
1: जी,
0: अपनी सारी शंकाएं उनको बताई तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया अपने मित्र को
1: जी,
0: जो आज भी दुनिया की सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल आपको दे सकता है, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं
1: जी,
0: विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने भी नाम सुना होगा
1: जी जी जी।
0: तो वास्तव में बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं या जो उपदेशक हैं या जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने गीता को कहा है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात है, अर्जुन के मन में कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ गई थी जिनका समाधान एक अच्छे चिकित्सक की तरह कृष्ण ने किया, लेकिन कर्ण के साथ जो समस्याएं थी उनका समाधान दुर्योधन कभी नहीं कर सका। तो हम दोनों लोगों का परिणाम देख सकते हैं कि अर्जुन किस स्तर पर पहुंचे।
1: अनुराग जी, सवालों का ये दौर में आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आपने भी बड़ी अच्छी जो मित्रता की हम कहते हैं ना कि जो एग्जांपल जो आपने बताया वो वाकई सदियों तक आगे भी याद रखा जाएगा और उससे बहुत सारी सीख भी हमें मिलती है। तो क्या कोई ऐसी बात, कोई एक या दो बातें ऐसी आप बता सकते हैं कि मित्रता का चुनाव करते वक्त जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारी जनरेशन जो रख रही है वो रख रही है, अपकमिंग जनरेशन को जो रखना चाहिए, या अभी जो बहुत सारे इश्यूज फ्रेंडशिप में भी आते हैं वो कौन सी एक या दो बातें हैं जिनका ख्याल रखें हमें? अनुराग जी, सवालों का ये दौर में आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आपने अभी बड़ी अच्छी जो मित्रता की हम कहते हैं ना कि जो एग्जांपल जो आपने बताया वो वाकई सदियों तक आगे भी याद रखा जाएगा और उससे बहुत सारी सीख भी हमें मिलती है। तो क्या कोई ऐसी बात, कोई एक या दो बातें ऐसी आप बता सकते हैं कि मित्रता का चुनाव करते वक्त जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारी जनरेशन जो रख रही है वो रख रही है, अपकमिंग जनरेशन को जो रखना चाहिए, या अभी जो बहुत सारे इश्यूज फ्रेंडशिप में भी आते हैं वो कौन सी?
0: दुर्योधन का पक्ष चुना और बचपन से ही उसने चुना, अर्जुन को उसने हमेशा अपने प्रतिद्वंदी की तरह, शत्रु की तरह माना
1: जी,
0: क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि दुर्योधन ही आगे राजा बनेंगे और दुर्योधन राजा बनेंगे तो उसे भी राजसुख प्राप्त होगा, यानी कि अश्वत्थामा को
1: जी।
0: लेकिन आप देखिए उसका जीवन किस तरह

0: कैसे रहा, उसे राज्य दिलवाया अर्जुन ने
1: जी
0: गुरु को गुरुदक्षिणा देकर। तो ये बात द्रोणाचार्य भी महाभारत में कहते हैं, जब आप आदि पर्व में देखेंगे
1: जी
0: तो बताते हैं कि मैत्री कितने प्रकार की होती है
1: जी।
0: मित्रता के ऊपर भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा विमर्श हुआ है
1: जी जी।
0: तो वहाँ द्रोणाचार्य बताते हैं कि एक मैत्री वो होती है जहाँ दो मित्र मिलकर एक दूसरे के प्रगति के बारे में, एक दूसरे के लाभ के विषय में बात करते हैं
1: जी।
0: एक मैत्री वो होती है जहाँ दो मित्र मिलकर अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के बारे में बात करते हैं
1: जी।
0: एक मैत्री ऐसी होती है जहाँ कुछ मित्र मिलकर कलह करते हैं
1: जी।
0: एक मैत्री वैसी होती है जहाँ कुछ मित्र मिलकर कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि ये सब करते हैं
1: जी।
0: तो मैत्रियों के कई कई प्रकार हैं। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को उपदेश देते हुए कहते हैं
1: जी
0: कि बेटा आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो दुर्योधन के साथ मित्रता है
1: जी
0: वो किस स्तर की है, कौन से प्रकार की मित्रता है, आप दोनों इस मित्रता से क्या प्राप्त करना चाहते हैं
1: जी।
0: हालांकि वो उपदेश अश्वत्थामा ने नहीं माना
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: उसने नहीं माना कोई बात नहीं
1: जी।
0: आज की पीढ़ी यदि चाहे
1: जी
0: तो आगे देखे उस उपदेश को मानकर
1: जी
0: अपने जीवन में मित्रों का चुनाव बेहतर ढंग से कर सकती है और अपनी लाभ हानि और प्रगति उन्नति या अपनी अवनति आदि आदि को निश्चित कर सकती है
1: जी। वाकई बहुत ही बढ़िया सुझाव आपने दिया है। और सवालों का दौर अभी जारी है, कुछ और सवाल हमारे आपके साथ हैं। उससे पहले हम हमारे कुछ कमर्शियल्स हैं उस पर जाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद हम और भी बातें करेंगे और जो सवाल हैं वो कंटिन्यू करेंगे।
2: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
3: LIC हर पल आपके साथ।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी खिदमत में, आपकी रॉकिंग हार्ट प्रियंका। फैमिली फन में हम बात कर रहे थे अनुराग जी से, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं फिर फ्रेंडशिप के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जो वाकई अगर हम उन पे ध्यान देते हैं, या हमारी आज की जनरेशन, या हम जो जेंजी की बात करते हैं, अगर वो उस पर ध्यान देते हैं तो बहुत सारा हमारा, कहते हैं ना कि वक्त बच जाएगा खराब किसी रिश्ते पर अपना समय देने से। तो अनुराग जी, हमने जैसा कि बताया कि इंडोलॉजिस्ट हैं, ओरिएंटल साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज और हिस्टोरियन भी हैं, और साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में शामिल हैं। सवालों का दौर उनके साथ अभी जारी है, और भी बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस हैं जिन्हें लेंगे हम इनके बाद। तो अनुराग जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: जी। अनुराग जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार इंसान जो है ना, वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत परेशान होता है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो भावनात्मक रूप से किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसे हमारी जरूरत है?
5: जी, तो ये देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है
4: जी,
5: जरूरी नहीं है कि ये सब पर लागू हो, लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा और जितना मैंने साइकोलॉजिकल स्टडीज को किया है
4: जी,
5: उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति मिरर बिहेवियर शो करने लगे
4: जी,
5: तो आप समझिए कि ये अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है।
4: थोड़ा सा क्लियर करें मिरर बिहेवियर, जैसा कि हम और आप जानते हैं, लेकिन आप
5: बताते हैं जी कि जैसा व्यवहार आप उस पे कर रहे हैं वो वैसा ही व्यवहार आप पे करने लगे, अपने जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ दे
4: जी।
5: यानी कि आपने उसे एक बार कॉल किया तो वो आपको एक बार कॉल कर रहा है
4: जी,
5: आपने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वो आपसे एक बार मिलने आ रहा है
4: जी।
5: इस तरह से जब बिल्कुल ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे आपको लग रहा है कि आप किसी मित्र के सामने नहीं बल्कि किसी आईने के सामने खड़े हैं
4: जी,
5: तो ये एक मनोवैज्ञानिक विकार की शुरुआत होती है
4: जी।
5: यहाँ से आप जान सकते हैं कि आप

0: मित्र को अब आपकी आवश्यकता है।
1: क्या बात
0: है। यहाँ के बाद अगर आप चाहें तो अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं और जितना हो सके खुद भी मिरर बिहेवियर से बचें।
1: जी
0: ये बात ठीक है, बहुत सारी कोट्स आते हैं और जो अंकल आंटी टाइप के लोग होते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको गुड मॉर्निंग के साथ सुबह सुबह जो ज्ञान गंगा प्रवाहित कर देते हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं कि जो लोग आपसे मतलब नहीं रखते उनसे मतलब न रखें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन ये सारी बातें ठीक है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा मिरर बिहेवियर रखना भी आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी
1: जो हानिकारक हो सकता है,
0: एनालिसिस कर रहा है
1: जी,
0: उसके लिए ये ठीक नहीं है। अगर आप खुद भी मिरर बिहेवियर की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी जी,
0: तो आपको अपने मित्रों से आगे बढ़कर सहायता लेने की, उनसे वार्तालाप करने की, उनसे मिलने की आवश्यकता है, अपने ईगो को किनारे रख के, अन्यथा आप मनोवैज्ञानिक समस्याओं में घिरते चले जाएंगे। और आज ये स्थिति है भारत की कि मुझे लगता है कि 10-15 करोड़ लोग ही भारत में ऐसे होंगे जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त नहीं है,
1: अन्यथा
0: 100 करोड़ से ऊपर लोग मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त हैं, जिसे वो विविध प्रकार के आवरणों का नाम दे देते हैं, कोई उसे परंपरा कह देता है, कोई उसे प्रथा कह देता है, कोई कह देता है कि संस्कार है ये,
1: जी फॉलो करना पड़ेगा,
0: इस तरह के नाम नहीं देने चाहिए। मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत अच्छे स्तर पर चल रही हैं इस समय और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, ये आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर ये जो आंकड़े हैं वाकई हमें चौंकाने वाले तो हैं ये, और साथ ही साथ ये जो आपने एक बात देने की परंपरा प्रथा, इन सब के नाम पर एक जो मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं डेवलप किया जाता है, ये थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल होता है। उससे पहले लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है और अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या किसी भरोसेमंद दोस्त से बातचीत उसकी शुरुआत हो सकती है, क्या आपका क्या सजेशन है इस पे?
0: मुझे लगता है कि पहले समस्या को लिख लें
1: जी।
0: जब आप समस्या को लिख लेंगे तो आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी उसी समय।
1: अच्छा।
0: उसके बाद उसके पॉइंट्स बना लें। आजकल तो AI भी है, आप AI से परामर्श ले सकते हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आमतौर पे आदमी दूसरे आदमी से या किसी कोई स्त्री दूसरी स्त्री से या अपोजिट जेंडर में भी
1: जी।
0: लोग अपनी बात को इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा।
1: हाँ जी।
0: लेकिन जब आप एक मशीन से बात कर रहे हैं
1: जी।
0: उस समय आपको जज होने का कोई खतरा नहीं है, वो प्राइवेसी है आपकी, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है।
1: हाँ जी।
0: तो आप उससे ये ना कहें कि वो आपको उपाय बताए
1: जी।
0: आप उससे ये कहें कि भाई मेरी समस्या को लिस्ट आउट कर दीजिए आप
1: जी।
0: तो आप उसे अपनी समस्याएं बताएं, वो उसकी लिस्टिंग करेगा कि आपको क्या क्या समस्या है
1: जी।
0: उसके पश्चात जहां जहां स्कोप है, जैसे कि कहीं स्कोप है कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी है,
1: हाँ जी।
0: तो आप उसको अपनाएं। कहीं ऐसा स्कोप है कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, तो आप वहां उसे अप्लाई करें
1: जी।
0: कहीं लगता है कि आपको किसी मित्र के साथ समय बिताना है, तो उसे अप्लाई करें
1: जी।
0: एक आम धारणा यह भी है कि मित्र जो है वो कोई परिवार से अलग ही व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, ये भी संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक रिश्ते में जो आधारभूत है
1: जी।
0: वो मित्रता ही है। आपकी अपने पिता के साथ मित्रता हो सकती है
1: जी।
0: आपकी अपने भाई के साथ मित्रता हो सकती है, अपनी माता जी के साथ मित्रता हो सकती है, अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ मित्रता हो सकती है
1: जी।
0: इन सब मैत्री के बाहर जो मैत्री होती है वो भी आवश्यक है। तो आप जहां जहां जो जो स्कोप जिस जिसका है
1: जी,
0: वहाँ वहाँ उसको अगर एक उचित समय देंगे और स्वयं पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक विकारों से उतना परेशान नहीं होंगे जितना कि समाज आजकल हो रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी जो बातें हैं वो आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए जरूर सोचने का एक नया नजरिया देंगी। और वाकई ये सच बात है कि कभी कभी किसी को समाधान नहीं, बस एक ऐसा इंसान या जैसा कि अभी आपने सजेस्ट किया कि अब तो हमारे पास बहुत सारे मशीन ऑप्शंस भी हैं कि हमें जो जज नहीं करते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति से या ऐसे हम AI के थ्रू अपनी बातें कह सकते हैं ताकि वो हमें जज तो करेंगे नहीं और हमें सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें ढूंढने में आसानी मिलेगी। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं कॉल को वाइंड अप करूं, मैं आपका फेवरेट सॉन्ग पूछना चाहूंगी ताकि हम उसे आपके लिए प्ले कर सकें। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सारे श्रोताओं को बताई, हमें बताई, जो आई एम डैम श्योर कि हमारे आने वाली जिंदगी में जरूर बहुत काम आने वाली हैं।
0: मैं अपनी पसंद का गाना तो क्या, मेरी पसंद कुछ है नहीं गानों में, मैं सारे गाने वही सुनता हूँ जो मेरे पापा को पसंद थे।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: मेरे पापा का एक पसंदीदा गाना उन्होंने कैसेट में रिकॉर्ड करवा रखा था, वो बहुत सारी कैसेट थे उनकी मेरे पास
1: जी, अभी जी जी जी।
0: तो वो उसमें एक गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का जी। मैं तेरे प्यार में पागल।
1: क्या बात है, बड़ा खूबसूरत।
0: आप प्ले कर दीजिए तो बड़ा अच्छा लगे। मेरे पिताजी से मेरा एक बड़ा मैत्री

0: संबंध रहा है और वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे
1: जी।
0: तो ये गाना आप मुझे
1: जरूर जरूर, अगला गाना आपके पिताजी को ही डेडिकेटेड है और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ शो में कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: वेलकम बैक, आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम रेनबो, सुरों का लखने हुए एहसास और रेडियो सेट के इस पार। मैं हूं आपके साथ आपकी रॉकिंग आर प्रियंका, और आज शत्रुपा में फैमिली फन में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज, तो हम भारी भरकम लेक्चर नहीं, जी हां दोस्ती पर बात कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी भी एडवाइसेस हमारे पास आ रही हैं कि भाई क्या करना होता है आपको अच्छा फ्रेंड चुनते वक्त, और कैसे आप अपनी फ्रेंडशिप के जरिए अपना जितना भी स्ट्रेस है वो वेंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि भाई कौन हमारे साथ जुड़ा है, और अगर अब तक आपने हमें मेल नहीं किया है तो फटाफट से मेल करते हैं fmakashwani@gmail.com। जी हाँ, और आपको बताया ना कि क्या मैसेज करना है आपको, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं अगला नाम कौन है भाई हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय फैसलों पर अपनी राय देने वाले राहुल मिश्रा जी। वेलकम राहुल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जैसे बहुत सारे हमारे पास जवाब आ रहे हैं, अगर आप शो सुन रहे होंगे तो आपने सुना होगा दोस्ती पर बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पास एडवाइस है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों को वित्तीय फैसलों को लेकर सलाह देते हैं, लेकिन जब बात आपकी अपनी जिंदगी की हो और दिन थोड़ा सा हार्ड चल रहा हो, तो क्या कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप बिना सोचे समझे सबसे पहले फोन करते हैं?
4: अर्जुन जी, मैं उनको फोन करता हूँ, उनके साथ हर भी मजाक करता हूँ, और अपना जो भी टेंशन है उसको भुला करके नई ऊर्जा से भर जाता हूँ।
3: क्या कभी ऐसा

0: है कि आपके बिना कहे, जैसा कि अभी हम अपने शो में बात भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो हमारे बिना कुछ कहे हमारी बातें समझ जाते हैं, तो क्या आपके दोस्त आपके बिना कुछ कहे आपके दिल का हाल जान लेते हैं?
1: और दोस्ती का यही मतलब है जी, कि हम लोग एक दूसरे की दिल का हाल जान जाए बगैर कहे। ऐसे हमारे मित्र हैं जो मेरे बगैर कहीं वो चीज कर देते हैं जो मैं सोचता हूँ करने की,
0: जी
1: वो लोग कर देते हैं।
0: जी जी और चलिए, तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि हम अक्सर पैसों की प्लानिंग तो कर लेते हैं कि हमें कहाँ कैसे बजट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट है, कैसे सेविंग है हमारी, लेकिन रिश्तों की और दोस्ती की नहीं कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल फ्रेंडशिप, जो पेश कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो कौन सी होती है? और ऐसी कौन सी मतलब फ्रेंडशिप है जिसे हम किसी भी कीमत पर हमें खोना ही नहीं चाहिए?

0: और ऐसी कौन सी मतलब फ्रेंडशिप है जिसे हम किसी भी कीमत पर हमें खोना ही नहीं चाहिए?
1: मैम दोस्ती कई किस्म की होती है, लेकिन जो दुख में आपके साथ खड़ा हो, सुख में भले ही ना हो
0: जी,
1: लेकिन अगर दुख में साथ खड़ा होता तो ऐसी दोस्ती को कभी खोना नहीं, क्योंकि वो लोग वही हैं जो आपके हर समय काम आएंगे
0: जी।
1: सुख में खड़े होने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है
0: जी,
1: वही अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं जो आपको गलत सलाह कभी ना दे, हमेशा सही सलाह दे
0: जी,
1: ये करने से आप सही
0: जी,
1: वो दोस्ती कभी नहीं छोड़ते।
0: अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे कई बार होता है ना, अभी हम बात भी कर रहे थे कि हम जो सुनना चाहते हैं जिससे हम उससे वही बात करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए अच्छे दोस्त हो सकते हैं कि वो वही बोल रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, या फिर हमें कुछ और मित्रता का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए?
1: नहीं मैम, वो दोस्त ठीक होते हैं, जो मैं सुनना चाहता हूँ वही कहें।
0: अच्छा,
1: जो आपकी कमियों को उजागर करे,
0: जी जी,
1: उजागर करे, वही सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि हर समय पढ़ाई करने से दोस्ती नहीं चलती। हमारी जो कमियां है वो अगर जब तक हमको पता नहीं चलेंगी दूसरे के थ्रू, तब तक हम उनके काम कैसे करेंगे, कैसे उनको ठीक करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वाकई बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे वो लाइनें आ गई, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ी थी, आई एम श्योर आपको भी याद होगी, कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो हमारे दोस्त अगर ऐसे हैं तो हम अपनी खामियों को भी खूबियों में बदल सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो में आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि भाई आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, क्योंकि हम भी आपके साथ अपनी, हमारा जो रेनबो है वो भी अपनी फ्रेंडशिप निभाएगा आपका फेवरेट सॉन्ग आपको डेडिकेट करके।
1: मैं सुनना चाहूंगा शोले फिल्म का गाना
0: जी,
1: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
0: ओके,
1: और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
0: ओके,
1: सुनने में
0: जी,
1: तो मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट भी करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो में
0: जी, थैंक यू सर हमसे कनेक्ट करने के लिए। और ये रहा अगला ट्रैक आपके पसंद का, आपके दोस्तों को जो आपने डेडिकेट किया है। थैंक यू, थैंक यू।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से, मैं हूँ आपके साथ आपके रॉकिंग आर प्रियंका, और हम बात करें फैमिली फन में आज फ्रेंडशिप की। जी हाँ, बहुत सारी बातें हो चुकी, बहुत सारे सवाल भी जवाब भी हो चुके हैं, और हम जब जेंजीज की बात करते हैं तो कैसे मिस कर सकते हैं। अगली जो हमारी कॉल है वो जेंजी की है, तो हम बात करते हैं भाई कौन है हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडेंट हैं भाई ये प्रणव जी, और देखिए प्रणव जी क्या बातें करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। आइए इनसे भी सवाल जवाब करते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम जल्दी जल्दी इनसे सवाल जवाब करेंगे और फिर आगे हमारा शो चलता रहेगा। आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि मैं 4 बजे तक आपके साथ हूँ। तो चलिए लेते हैं प्रणव जी की कॉल। बहुत बहुत स्वागत प्रणव, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्रणव ये बताएं कि भाई शो सुन रहे हैं आप?
1: जी मैम सुन रहे हैं।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा शो है मैम आपका।
0: क्या बात है, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ाई या एग्जाम या करियर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं जैसा कि आपने बताया था, तो क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप सबसे पहले कॉल या फिर मैसेज करते हैं?
1: हाँ मैम, मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं कॉल वॉल कर लेता हूँ, थोड़ी देर उनसे बात करता हूँ, तो मतलब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती नहीं है,
0: जी जी जी,
1: उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है ऐसे।
0: अच्छा तो मुझे ये बताइए जरा कि आपके अकॉर्डिंग कॉलेज की जो फ्रेंडशिप है उसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि वो आपके अच्छे मोमेंट्स में हो या नहीं हो, लेकिन आपका जो स्ट्रेसफुल टाइम होता है वो उसमें आपके साथ होते हैं या नहीं होते हैं?
1: मैम बिल्कुल, जो ये कहते हैं अच्छे दोस्त होते हैं वो उस टाइम पे भी साथ देते हैं जब ये कहते हैं स्ट्रेस हो या रिजल्ट उतना अच्छा ना आए। अच्छा रिजल्ट में वो लोग पार्टीज ही मांगते हैं। अच्छा खराब रिजल्ट आता है तो वो लोग साथ भी देते हैं हम लोग का।
0: गुड, वेरी गुड। तो अच्छा ये बताइए कि आपकी जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि भाई आज के फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे हैं, या कि आपको लगता है आपकी आपके पेरेंट्स के जमाने के दोस्त ज्यादा अच्छे हैं? अक्सर होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा ऐसा, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ?
1: मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पेरेंट्स के जमाने में दोस्त ज्यादा अच्छे होते थे,
0: क्या
1: अच्छे दोस्त नहीं है।
0: क्या बात है, बताइए आप इतनी छोटी उम्र में आपने ये जो बात कही वाकई काफी बड़ी बात है, पर कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा?
1: मैम पहले के टाइम पे ज्यादा अच्छी दोस्तियां होती थी, आज की डेट में उतना प्रॉपर वो नहीं है।
0: अच्छा
1: दोस्तों के साथ
0: अच्छा उतना टेंशन। अच्छा ये बताएं आपको क्या लगता है कि अपनी बातें दोस्तों से ही करें, एआई से करें, या जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं आज के, क्योंकि आपने कहा ना कि
1: पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे दोस्त कोई है ही नहीं मैम, दोस्त

0: उसका आजकल अपने मतलब के लिए भी होते हैं कि वो उनका जो कोई फायदा होगा तो वो आपको उस तरह से बट पेरेंट्स को तो मतलब वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, दोस्तों का कोई भरोसा नहीं कब है कब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त साथ नहीं देते बट पेरेंट्स ज्यादा अच्छे दोस्त हैं अगर ऐसे कंपैरेटिव बोला जाए तो।
1: क्या बात है, तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है फ्रेंडशिप को लेकर। अब जल्दी जल्दी क्योंकि हमारा टाइम जो है घड़ी का आगे बढ़ता जा रहा है, 12:57 हो चुके हैं। प्रणव ये बताएं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
0: मैम डू यू वांट अ पार्टनर।
1: ओके तो चलिए, अच्छा तो हम ये प्ले करते हैं आपके लिए, ये डेडिकेटेड है आपको और थैंक यू आप हमारे साथ आपने कनेक्ट किया और आपने इतनी अच्छी बातें कही और आपने ये बताया कि हाँ भाई पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ हम सारी बातें बिना किसी जजमेंट के ना कि भाई कोई क्या सोचेगा, मम्मा क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है, मोरम बस कह देते हैं दिल की बात। तो थैंक यू प्रणव हमसे कनेक्ट करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को चांस दिया आने का।
1: यू आर वेलकम।

प्यारे से सॉन्ग के साथ हम आपको बस इतना कहेंगे कि आप भी आप सुन रहे थे फैमिली फोन और 107 FM रेनबो शुरू का लखनवी एहसास। अपने लोगों के साथ रहिए, उनसे बातें करिए, हंसते रहिए और हाँ अपने उस खास दोस्त को आज के दिन जरूर याद कीजिए जिसे आप शायद रोज नहीं कहते हैं लेकिन दिल से जानते हैं कि तू है तो मैं अकेला नहीं हूँ। मैं मिलती हूँ फिर आपसे अगले सेगमेंट में, लेकिन ध्यान रखिएगा आज के दिन आपके उस भूले बिस्तरे फ्रेंड को जरूर कॉल करनी है कि जिसके साथ लगता है कि तू है तो पूरी दुनिया मेरे साथ है।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम अनुरोध की।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त शीशपाल। आप सभी के बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्र हम तक पहुंच चुके हैं और आपको सुनवाएंगे आपके पसंद के गीत। ये पहला पत्र हमें मिला है बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई और विक्की भारद्वाज का। ये हमारे श्रोता हैं रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता और विनोद। आप हैं छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये हमारे श्रोता हैं मसरूर खान, सरफराज खान, हर्ष भारद्वाज, अनुज यादव, काजल शर्मा। आप हैं ककराला बदायूं से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। आप हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर।

नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम गागला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। छत्रपति संभाजी नगर से इस गीत को सुनना चाहते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। ये पत्र हम तक पहुंचा दुर्गाई सेलू से, चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सिया कुलकर्णी का। गोला बाजार बक्सर से हमारे श्रोता श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल मजरूह के हैं और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म घर से, जिसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल गुलजार के हैं और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू और साजदा रानी, साथ में हिना कौसर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। लेवाखेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण भाऊ, बिठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। बरेली कैंट रेलवे पश्चिम केबिन के पास से विनेश कुमार, रागनेश श्रीवास्तव और मुस्कान। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। आइए आप सभी के अनुरोध पर सुनवाते हैं आप सभी को फिल्म घर का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर, आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान। ये पत्र हम तक पहुंचा कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता का। इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सिलसिला का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत निर्देशन शिवहरी का।

इतनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तानी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। और ये हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया से तुर्काराम साहू, अजय कुमार और जयकिशन साहू, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से प्रवीण डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा बेलदार। आप हैं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश, कार्तिक, संजना परी, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत, जिसको अपनी आवाज देती हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा मुस्तवा, आफिया राउफ और शहीद भाई ने। पंचकूला सेक्टर नंबर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढींगरा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्लू अकरम, नूरजहां, वली अकरम, उल्ला अकरम, नूरजहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिवा तिवारी। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता शर्मा और जगमोहन प्रजापति। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म चित्तचोर का ये गीत।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का विषय रहेगा, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। और इस विषय पर आप अपने विचार फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं 2 बजे से। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 4 बजे से। इसके अलावा इस कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर भी इस पोस्ट में दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिस गीत को सुनने का अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतेक और मीका विरक। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री और केशव यादव। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म नदिया के पार का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं जसपाल सिंह और हेमलता ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, आप हैं गंज डोंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरारत हुसैन, मुनवर लल्ला, पप्पू, शमा परवीन, अलकमर, अफसाना, मिर्जा नसरीन बेगम और रहान शेख, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं फूल बाग किला छावनी बरेली से विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त, गंगादत्त, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, मुन्नी देवी, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्री राम राठौर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अनाड़ी का ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश ने, गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

आई श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर ये गीत। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, ये हमारे श्रोता हैं। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लिलू और रितु सिंह। धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा और रवि आरती सिंह। आप हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, अर्जुनी से सरोजनी साहू, उमेश और पूर्वी साहू। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, टिवानसी, शालिनी, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक। और ये पत्र हम तक पहुंचे मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कमांडकर राही, सरिता कमांडकर, सिद्धांत कमांडकर और प्रिंस एकांश कमांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश कमांडकर, वैशाली, श्वेता, सुमित कमांडकर, कुमारी धोनी कमांडकर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म छलिया का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल कमर जलालाबादी के हैं। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर गाए फिल्म चलिया केसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जनमंच।
1: श्रोताओं नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और जैसा कि आपको पता है आकाशवाणी बरेली समर्पित है अपने श्रोताओं के लिए, और नित नए प्रोग्रामों की श्रृंखलाएं हम आपके लिए आपके समक्ष लेकर आते हैं। इसी कड़ी में जो हमारे नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक प्रोग्राम है जनमंच, और जनमंच में हम लेकर आते हैं आपके मन की बात, एक ऐसे विषय पर परिचर्चा जो विषय इतना प्रासंगिक है और हमारे समाज के बीच का है। ऐसे में जो हमारे मेहमान होते हैं वो हमारे समाज के बीच के ही हैं, यानी आप और हम। तो आज का जो विषय है वो विषय के साथ हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद हैं आज हमारे मेहमान। विषय है आज का, आज के परिवेश में पारिवारिक सामंजस्य में पति व पत्नी की भूमिका। और इस विषय के साथ हमारे स्टूडियोज में आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमती किरण कुमारी जी और अर्जुन सैनी जी। आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच पे
1: जी
2: स्थान देने के लिए।
3: आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पे स्थान दिया।
1: थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। तो श्रोताओं, परिवार की जो गाड़ी है उसके पहिए पति व पत्नी स्वरूप माने गए हैं। तो जिस प्रकार गाड़ी का एक भी पहिया इम्बैलेंस हो जाए या उस वो डगमगा जाए या वो पटरी से उतर जाए, उस प्रकार वो गाड़ी डिरेल हो जाती है, उस गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आधुनिक परिवेश में क्या हमेशा के लिए जो परिवार है इसमें पति व पत्नी स्वरूप जो पहिए हैं अगर इनके बीच सामंजस्य नहीं है और अगर एक भी डिरेल हो जाए तो परिवार रूपी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। और पारिवारिक खुशहाली के लिए ये बहुत जरूरी है कि पति व पत्नी

0: के बीच सामंजस्य हो और वो समान रूप से चलें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो इस विषय के साथ मैं आता हूं किरण जी आपके पास कि हम देखते हैं कि आजकल यानी आज की डेट में खास तौर से हम देख रहे हैं कि पारिवारिक विघटन बहुत ज्यादा, विघटन मतलब परिवार अब एकल होते जा रहे हैं और सबको ये लगता है कि मेरा छोटा परिवार हो और मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे या मैं मेरा पति मेरा बच्चा, वो एकल की अवधारणा अब ज्यादा हो रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए बीइंग अ वाइफ, क्योंकि आप भी अपने परिवार में है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य हो कि वो सबको लेकर साथ चले।
1: पत्नी जब ससुराल में आती है
0: जी,
1: तो उसको ढालने के लिए
0: जी
1: सास ससुर का भी सहयोग जरूरी है
0: जी,
1: उनके पहनावे को लेके
0: जी, जी,
1: उनके खान पीने को लेके
0: जी, जी।
1: लड़कियों को आजकल ये चाहिए होता है कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ केवल घूमने जाना है
0: जी, जी, जी।
1: मुझे जीन्स पहन के जाना
0: हाँ।
1: है, तो वो इसलिए उन्हें सहयोग इसलिए करना होता है पति पत्नी
0: जी, मतलब
1: एक साथ
0: एक दूसरे की
1: भावनाओं को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें
0: जी।
1: माता पिता को अपने माता पिता ही समझे, अगर वो लड़की आती है इस घर में तो अपने अपने माता पिता ही समझे उन्हें
0: जी। नहीं, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि भाई हम लोग जब ससुराल आते हैं मायके से तो एक लड़की के लिए ये थोड़ा सा क्या है, वहां उसकी आजादी है कुछ भी पहनने की, कुछ भी जैसे आपने पहनावे ओढ़ावे की बात की, और अचानक से जब आप ससुराल आते हैं तो खासतौर से हमारे भारतीय परंपरा में परिधान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम लोग साड़ी पे स्विच करना पड़ता है और आप या जिस भी माहौल में आप रह रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है, बदलते परिवेश में लगभग लगभग सभी परिवार इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें पहनावे ओढ़ावे को बहुत ज्यादा उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी अपना भी कुछ दायित्व होता है कि हम लोग उस पर उनके अनुरूप थोड़ा सा ढले, है ना। तो अर्जुन जी आपको क्या लगता है कि इस विषय को लेकर, खास तौर से पहनावे ओढ़ावे को लेकर?
2: हाँ, मुझे लगता है जैसे किरण जी ने बताया था
0: जी,
2: कि आज के समय में महिलाओं के लिए ये बंदिशें लगाई जा रही हैं कि आप परिवार में ये नहीं पहनोगे, आप यहाँ नहीं जाओगे, तो मुझे लगता है कि जैसे बहुओं को लड़की को अपनी लड़की मानते, तो वैसे बहू को भी अपनी बेटी समझना चाहिए। जितना ही उन्हें फ्रीडम फ्री रखेंगे वो आपकी सेवा के लिए, आपके काम करने के लिए, वो कभी पीछे नहीं हटती है।
0: अच्छा, एक प्रश्न देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें अपनी जो हम बहू अपने परिवार में लेकर आए हैं हमें उसको अपनी बेटी की तरह ही रखना है। तो एक प्रश्न यहाँ आता है किरण जी कि जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं परिवार में, और क्या बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जीवन में, आजीविका, अपने आप को धन कमाने की चुनौतियां, परिवार में लेकर बीमारी, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उसके बाद भी परिवार को एकदम सुगम और सरल तरीके से आगे लेके चलें, थोड़ी बड़ी खटपट हर परिवार में होती है, तो कैसे पारिवारिक शांति बनाए रखें?
1: पारिवारिक शांति बनाने के लिए केवल औरत का ही कर्तव्य नहीं होता कि घर में काम करे, एक पति का भी कर्तव्य होता है कि उसके घर के कामों में हाथ बटाए, और बीवी का भी फर्ज होता है कि वो उनके प्रति, मतलब उनकी जो भी उन्हें सुविधाएं हैं उन्हें आप दे। तो दोनों को एक दूसरों का सम्मान और एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, इससे भेदभाव नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई दोनों लोग समान। तो अर्जुन जी इस विषय में, क्योंकि भाई बिल्कुल सही कहा किरण जी ने कि परिवार में शांति बनाए रखने या फिर सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं, क्या लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि जैसा किरण जी ने बताया कि परिवार में संयुक्त परिवार ना हो के अब एकल परिवार होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मनमुटाव परिवार को लेके, उठने बैठने को लेके, आने जाने में ये जो चीज चली आ रही है
0: जी,
2: और ये बहुत ही बेकार चीज है। जैसा कि मैं मानता हूँ कि मैं जगह पे हूँ तो वाइफ के साथ हाथ बटाइए, वाइफ का फर्ज होता है कि अपने सास ससुर देवर उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, और उनका भी फर्ज बनता है बहू के प्रति कि वो उनकी हेल्प करें, कि अपनी बच्ची की तरह समझे उसे, तो बहुत अच्छे से परिवार चलेगा, मेरा तो ये कहना होगा।
0: एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है आप दोनों लोग इससे एग्री करेंगे, करना चाहिए कि नहीं ये तो आप लोग ही निर्धारित करेंगे। कारण है कि हम ये देखते हैं कि जब शादी होके महिला इधर आई लड़के के परिवार में, तो हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातें या बहुत सारी बातें, आजकल ये जो फोन है इससे मतलब लगातार लगे रहना अपने अपने परिवार में, बहुत सारी मतलब देर तक बातें करना, तो थोड़ा कम समय परिवार को मिलेगा, इधर के परिवारों को कैसे हम और प्रगाढ़ संबंध बना पाएंगे अपने सास ससुर, भाई अब इधर के ही साहब। तो अर्जुन जी मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्या है नहीं ऐसा कि बहुत सारी बातें होती हैं, हम जरा जरा सी बात कहते हैं, आज ये बना वो बना, तो अर्जुन जी क्या लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि जो आजकल ये चल रहा है, ये फैशन बना रखा है कि फोन पे घंटों घंटों बातें होना, ये सब

0: सही ही ज्यादा आज के समाज में बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है
1: जी
0: कि देख रहे हैं, संयुक्त परिवार था पहले,
1: जी
0: ऐसी इस तरह की फोन वगैरह नहीं थे, तो उसमें ज्वाइंट फैमिली रहती थी, संयुक्त परिवार मिलजुल के रहता
1: जी
0: था,
1: जी
0: बहू थी या
1: जी
0: कितनी बहू होती, बेटे होते थे, सासू, सब संयुक्त
1: जी
0: परिवार
1: जी
0: में खुशहाल रहते थे।
1: जी
0: आज विखंडन होने का मतलब यही है कि यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो फोन है, वो कहीं ना
1: जी
0: कहीं गलत भी है कि
1: जी
0: घंटों घंटों तक बातें
1: जी
0: कंटिन्यू लगे रहना उनपे, और छोटी छोटी बातें
1: जी
0: अपने मायके पहुंचाना,
1: जी
0: मायके से ससुराल पहुंचाना, ये सबसे ही ज्यादा बेकार की बात है।
1: तो किरण जी, जैसे हम लोगों ने ये देखा है प्रायः कि अगर कोई आकस्मिकता है तो निश्चित रूप से, जैसे ये आपका परिवार हो गया शादी के बाद, वो भी आपका परिवार है, तो क्या ये मतलब सही है कि बहुत देर तक बात करना, अगर खाली समय है हमारा, मी टाइम है, तो इट इज ओके, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इधर की, मतलब कहा जाता है कि कई बार हम लोग ये देख रहे हैं, बहुत नजदीक से हमने इस चीज को महसूस किया है कि विखंडित होते परिवार में एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि छोटी छोटी बातों का इधर से उधर उधर बर्दाश्त करने की क्षमता अब थोड़ी सी कम हो गई है, और थोड़ी सी भी बात हुई तो, मतलब क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा है?
2: ये छोटी जो बातें हो जाती हैं ससुराल में, वो मायके में कहना तो ये बेवकूफी होती
1: है
2: है कि
1: ना?
2: मतलब छोटी सी बात हो गई कि आज हमारे ससुर ने ये कह
1: जी
2: दिया,
1: जी
2: हमारी
1: जी
2: सास ने ये कह दिया,
1: जी जी
2: तो ये तो एकदम से बेकार बातें हो गई हैं। अगर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है,
1: जी
2: पहली बात तो कि आपके पति हैं,
1: जी
2: आपको कोई बात कहनी है तो आप उनसे कहिए,
1: जी जी
2: अपने माता पिता से वो
1: बिल्कुल
2: बात करेंगे
1: बिल्कुल
2: कि मतलब ऐसी उन्हें नहीं अच्छी लगती तो ऐसी बातें मत करो,
1: जी जी
2: है, या हमारी कोई बात बुरी लगी है
1: जी
2: तो माता पिता इनसे कहेंगे।
1: जी
2: तो फोन पे बात करना, तो ऊपर से वो उधर से भी थोड़ा प्रेशर रहता है, इधर से भी नहीं, तुम अपने सास ससुर से ऐसा कहो,
1: जी
2: तुम अपने सास ससुर से वैसा कहो, तो ये
1: हाँ
2: तो फोन पे बात करना या अपनी मायके की बातें
1: जी
2: ससुराल
1: जी
2: में बताना, ससुराल की बातें मायके में
1: जी
2: बताना, ये तो एकदम बेवकूफी वाली
1: अच्छा
2: बात
1: किरण
2: है।
1: जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाह रहा था, दरअसल न सिर्फ शिकायतों की बात की मैंने, बल्कि शिकायत की बात अगर ना करें तो नॉर्मल बात भी, अब और क्या हो रहा है, मतलब दुनिया भर की बातें जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सीमित समय में अगर हम अपना बात करें, लेकिन उससे ज्यादा समय अगर अपने इस परिवार को दे, तो क्या ये भी पारिवारिक सुख शांति का आधार नहीं है?
2: बहुत ज्यादा पारिवारिक सुख शांति का वो है, क्योंकि हमें वहां इतना क्या करना, हाल चाल पूछ लेना
1: हाँ
2: है बस,
1: हाँ
2: बाकी टाइम अगर हम बैठ के जो बातें हम वहां करते हैं वो अपनी सास ससुर से भी बैठ के बातें कर
1: क्या
2: सकते
1: बात
2: हैं।
1: है। तो देखिए अर्जुन जी, हम बात को बहुत अच्छे मोड़ पे लेकर आए हैं किरण जी, कि हम अपने सास ससुर, मतलब एक बेटी जब आती है अपने ससुराल में, तो उसकी माँ, चूंकि हमारे भारतीय परंपरा में ये है, कहा जाता है विदाई के साथ कि बेटा आज तक आपका परिवार ये था, लेकिन अब आप एक नए परिवार में जा रही हो, तो अब आपका परिवार वो है प्राथमिक दृष्टि से, बाकी ऐसा नहीं है हम लोग का छूट गया है परिवार, तो हम लोग की ये भारतीय परंपरा में है, विदाई के वक्त ये कहा जाता है, तो क्या ये आज भी प्रासंगिक है, ऐसा है?
0: बिल्कुल है, ये जो चीज चली आ रही है और जो हो रही है बहुत ही ज्यादा बेकार है। देखा जा रहा है कि पहले के परिवार में रिश्ते टूटते थे नहीं थे, और आज के टाइम पे तलाक, कहीं किसी का मर्डर, ये सारी चीजें कुरीतियों को जन्म देना, ये मोबाइल है,
1: जी
0: मैं जितना समझ रहा हूँ, जो
1: जी
0: आज के
1: जी
0: समाज में मैं देख रहा हूँ
1: जी
0: कि आज न्यूज़पेपर में देखो, रेडियो चैनल पे देखो, तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं ये चीज जो दिखाई दी जा रही है वो मोबाइल का बहुत ही ज्यादा ही यूज
1: यो
0: है।
1: बात तो आपने सही कही। देखिए मोबाइल, कई बार कहा जाए ना कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से पहलू को एडॉप्ट करते हैं। तो किरण जी, जैसा मोबाइल की बात की, अब मोबाइल पर हम ये देख रहे हैं, मोबाइल का अगर सकारात्मक पहलू की बात करें, तो महिलाएं इस पर पाक कला यानी खाना बनाने की अपनी, मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल बना के लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और नए नए व्यंजन सीख सकते हैं अगर इसको सही दिशा में ली जाए, क्यों, आपको क्या लगता है?
2: जी, मैंने तो कई व्यंजन मोबाइल से बना के मैंने खुद ही बनाया है, मोबाइल
1: अच्छा
2: से, यूट्यूब से बनाती हूँ मैं,
1: जी
2: देख के जो चीजें हमें नहीं बनानी आती हैं,
1: जी जी
2: तो मोबाइल बहुत तरीके से सही भी है।
1: जी जी तो अब आप YouTube से देख के हमें ये पता चला है कि आप बना लेती हैं, तो आप किसी दिन खाने पर भी हम लोगों को आमंत्रित
2: जी
1: कीजिए, तो हम
2: जरूर जरूर
1: पूरी टीम के साथ आएंगे आपके जरूर आपका। खैर, तो देखिए सकारात्मक यूज यह है कि अब जैसे कि हमारे बीच जीता जागता, देखिए यहाँ पर हमारी जो पैनलिस्ट हैं, कि उन्होंने व्यंजन बनाने की विधि सी, तो अर्जुन जी आप इस यूज को और कहां तक बढ़ा सकती हैं घर की महिलाएं?
0: उन्हें अपने सिलाई कढ़ाई में,
1: जी
0: अपनी पढ़ाई में, जो आज का सबसे बस है, मैं समझता हूँ विषय रहेगा महिलाओं को कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, तो
1: जी
0: उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ाई के लिए सीखना चाहिए, कढ़ाई बनाई, और जो जहां तक इन्होंने बताया
1: जी
0: कि व्यंजन बनाने, खाना बनाई, जहां तक कि मेरी वाइफ है वो कोई ना कोई नया व्यंजन बनाना होता है तो मोबाइल से ही देख के बनाते हैं।
1: अच्छा अच्छा चलिए, तो आपका भी नंबर लग ही गया।
0: बिल्कुल
1: हम जरूर कभी आप हमें निमंत्रित कीजिए तो हम
0: बिल्कुल
1: उनकी भी इसी पाक कला का परीक्षण एक बार जो है अपने स्वाद से किया जाए।
0: बहुत स्वादिष्ट बनाती है, जब भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट।
1: तो खैर हंसी मजाक की बात है, तो देखिए

0: विघटित होते परिवार, देख हम सब इस बात से इनकार नहीं करेंगे, इससे विघटित पारिवारिक शांति से बच्चों के मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है,
1: बच्चों पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है
0: जी।
1: बच्चे स्कूल में जाते वही सोचते रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा की कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है
0: जी।
1: या उन्हें घर में जो माहौल मिलता है लड़ाई झगड़े वाला
0: जी।
1: तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चे, और उनपे ये बचपन में ही नहीं, वो बड़े हो जाते हैं तब भी उन पर वही रहता है प्रभाव कि मैंने तो इस माहौल में बड़ी हुई हूँ, तो वो भी वही सीखते हैं फिर
0: जी। वो चीज
1: बच्चे भी वही सीखते हैं आगे बढ़ के।
0: तो बात आई इम्पोर्टेंट देखिए कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो अर्जुन जी बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है ये नकारात्मक, इसे कैसे बचाया जाए, इसे कैसे दूर करें?
2: इस चीज को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट होता है
0: जी
2: हस्बैंड वाइफ में
0: जी,
2: तो उन बच्चों को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, उन्हें एक अच्छा माहौल देना चाहिए जिससे वो हमारी नकारात्मक चीजें ना सीखें
0: जी।
2: क्योंकि कहा गया है कि जो बच्चा सीखेगा वही करेगा
0: जी जी।
2: आज के टाइम पे वही चल रहा है, जो माँ बाप करेंगे उनके परिवार में जो करेगा वही। पहले पुराने के टाइम में ये होता था कि संयुक्त परिवार जो होता था अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे तो वही बच्चे सीखते थे, पढ़ाई लिखाई सिखा उठना बैठना सिखाते थे। तो आज का माहौल ये होगा कि संयुक्त परिवार ना होकर एकल परिवार हुआ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है कि माँ बाप फोन चला रहे हैं या घर में परिवार फोन चला रहे, तो वो कहते हैं अगर उन्हें फोन के लिए मना करा जाए तो कहते हैं कि पापा भी तो देख रहे थे, मम्मी भी तो देख रही थी, तो उन्हें वही सीख रहे हैं, तो लड़ाई भी झगड़ा होता है तो बच्चे वही करते हैं,
0: वही चीज उसको अडॉप्ट करते हैं। तो किरण जी अब चूंकि आप अपने ससुराल आई जो वर्षों से है, कुछ मान लेते हैं अगर कुरीति ही है, कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये परिवर्तित होनी चाहिए, तो बीइंग अ डॉटर मतलब आप न सिर्फ बहू होके बल्कि एक बेटी होके अपने सास ससुर से इंसिस्ट करें कि पापा जी अगर हम इसको ऐसा कर लें या माता जी इसको ऐसा कर लिया जाए, तो ऐसे करके भी हम उनको क्या अपने साइड में नहीं, यानी ज्यादा प्रेम से उनको अपनी तरफ नहीं किया जा सकता
1: जी? बहुत, अगर हम उनसे कहेंगे कि पापा हमें साड़ी नहीं पहननी, हमें सूट पहनना है, साड़ी में हम पे काम ही नहीं हो रहा है
0: जी जी,
1: तो अगर हम कहेंगे हम पे काम नहीं हो रहा, हम पे चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाने जा रहा है और हम पे बर्तन नहीं धुलने हैं साड़ी में, हम पे साड़ी संभल नहीं रही है, तो वो अपने आप ही कह देंगे कि सूट पहनो, अगर सूट पहनने में आपको काम हो रहा है तो सूट पहन लो।
0: हाँ, यानी प्रेम से,
1: प्रेम से कह दोगे तो मान जाएंगे,
0: है ना, पहनावे पे। तो अर्जुन जी कहा भी जाता है, कबीर दास जी ने भी कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यानी कि कहा जाता है कि प्रेम में स्नेह में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े मसले को बहुत शांति से हल कर लिया जाता है। तो जो बात अभी यहां से निकल कर आई कि प्रेम से आपने ससुर जी से इंसिस्ट किया कि हमसे काम नहीं होता है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सूट में भी पहने। उसी प्रकार से एक बतौर हस्बैंड एक पुरुष होकर आपको क्या लगता है किस तरीके की चुनौतियां आपको आपके परिवार में फेस करनी पड़ती हैं?
2: जहां तक कि मैं देखता हूं कि उन्हें मेरी वाइफ को या किसी की वाइफ
0: की
2: बेटी है, जन सामान्य में ये देखा जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं आप साड़ी नहीं पहनेंगे
0: जी,
2: क्योंकि साड़ी हर जगह तो नहीं पहन सकती लेडीज
0: जी, जी।
2: क्योंकि उसे कहीं घर में बैठी है
0: जी, जी।
2: काम कर रही, तो उसमें मुझे लगता है काम नहीं कर सकती
0: जी जी, बिल्कुल
2: दिक्कत है। हाँ, अगर उसे बर्तन भी साफ करने हैं
0: जी,
2: खाना बनाना है, उठना बैठना भी
0: तो
2: है, तो उसे कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है।
0: मैं एक बात, एक आपसे ये प्रश्न बनता है कि बीइंग अ हस्बैंड कितना मुश्किल होता है अपने परिवार यानी माता पिता के साइड और वाइफ के साथ बैलेंस बनाने में, क्या एक जन सामान्य बात?
2: हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ तक की चुनौतियाँ तो आती है और मैं और हर परिवार में आती है कहीं ना कहीं, और जहाँ तक की देखा है कि मैंने बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखा है, और मेरे पेरेंट्स मेरे माता पिता हैं बहुत अच्छे से, मेरी वाइफ को पत्नी बहुत अच्छे से रखते हैं, मुझे रखते हैं, और मेरी वाइफ मेरे माँ बाप को भी रखती है। रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने आपस में बहुत अच्छे से तालमेल बना के रखा है, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं उन्हें बहू ना समझ के एक बेटी की तरह भी समझते, और जहाँ बहू समझने का वहाँ बहू समझते।
0: हाँ, तो कहीं एक ये वाली कश्मकश नहीं होती है कि अगर माँ की बात कोई मानता है तो लगता है कि इधर वाइफ थोड़ा सा नाराज हुई, और इधर कहीं लगता है कि वाइफ ने अगर कोई बात आपने मान ली तो माँ नाराज हुई, तो ये वाली कश्मकश
2: बिल्कुल
0: फिलहाल आपके साथ तो नहीं, आपने उनको बैलेंस
2: कहीं ना कहीं हुई थी तो मैंने।
0: अब इस चीज को बीइंग अ वाइफ एक परिवार में बच्चे को तैयार कराने से लेकर खाना बनाने से क्या लगता है आपको इस विषय में?
1: इसमें अगर वाइफ को, तो वाइफ को सुबह से उठ के, सुबह 5 बजे से उठ के बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को टिफिन देना, बच्चे को टिफिन देना, फिर उन्हें ऑफिस जाना, फिर घर का सारा काम करना
0: जी,
1: तो वो साफ, फिर बच्चों को लाना, ट्यूशन ले जाना, ये सारा बीवी को भी बहुत काम, वाइफ को बहुत ज्यादा हो जाता है,
0: बहुत काम
1: हो जाता है, फुल टाइम जॉब है।
0: तो
1: अगर वो चाहे तो फुल टाइम जॉब है।
0: क्या लगता है अर्जुन जी आपको?
2: जहाँ तक कि मैं देखता हूँ, जैसे किरण जी ने बताया था कि फुल टाइम आके

0: किसी ने कहावत में ये भी कहा गया है कि औरत के लेडीज के 12 हाथ होते हैं।
1: जी
0: ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे वाइफ आ मेरी जो पत्नी है वो स्वास्थ्य विभाग में
1: जी
0: ऐसे पोस्टेड है,
1: जी
0: तो वो मॉर्निंग में 5 बजे उठती है, 4:30-5 बजे, तो जाके
1: जी
0: कहीं फिर मेरे लिए लंच मतलब तैयार रखना, फिर उसके बाद में मेरा लंच मतलब खाना बना के पूरा रखना, फिर उसके बाद में खुद रखना, फिर जाके ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आके फिर अपनी ड्यूटी को निभाना,
1: जी
0: फिर मेरी ड्यूटी निभाना, फिर बच्ची की भी ड्यूटी, फिर परिवार की भी ड्यूटी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है ये सब
1: वाकई में
0: करके।
1: अगर
0: हाँ
1: वर्किंग के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग है ये, और इन सबके बीच में पारिवारिक शांति बनाए रखना है ना अपने आप में। कई बार होता है ना आदमी बहुत इरिटेट हो जाता है बहुत सारी किसी एक बात से, तो झुंझला के कोई बात कह दी जाती है, तो उसमें सामने वाले पार्टनर को यानी अपने साथी को, ये चाहे वो कोई हो, अगर वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ, तो उस समय एक को शांत हो जाते हैं
0: जी, एक को
1: है
0: शांत होना पड़ेगा। अगर एक
1: ना
0: शांत नहीं होगा तो फिर कहानी ही गड़बड़
1: है
0: है।
1: ना। अच्छा कई बार हम ये देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया किरण जी आपकी बात से, कि हम छोटी छोटी बात को अपने ईगो का प्रश्न बना लेते हैं। ईगो मतलब मैंने अगर कुछ कह दिया तो बिना ये सोचे कि सामने वाला आदमी, चाहे वो हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, कि वो उस चीज को, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, बिना सोचे समझे उस चीज को, वो अच्छा है या बुरा है, उस मतलब क्या उसकी प्रासंगिकता है, या कोई बात ही कह दी तो वो पूरी हो जाए, या जो बात कह दी उसका मान रख लिया जाए अगर रखने लायक। कई बार नहीं रख पाता आदमी, उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है, तो कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजों को अपने ईगो जीवन में, अपने वैवाहिक
0: जी
1: जीवन
0: जी
1: में अपने ईगो का प्रश्न नहीं बना ले रहे हैं।
0: वो तो बहुत गलत होता है। हम समझेंगे कि हमारे हस्बैंड ये बात मान सकते हैं, मानने वाली बात है या नहीं है, तभी हम वो बात कहेंगे।
1: कहेंगे
0: अगर अभी बात मानने वाली नहीं है तो हम कहेंगे ही नहीं। अगर हमने कह दी, हम समझ ही नहीं रहे, फिर तो फायदा ही क्या है वाइफ का।
1: अच्छा कभी ये थोड़ा निजी प्रश्न है लेकिन जरूर मैं, मुझे लगता है कोई ऐसा, कि आपने मान लीजिए अपने हस्बैंड से कुछ कहा कि आज यहां चलते हैं या फिर कुछ लेके आना, कुछ भी ऐसी कोई बात घटना, और वो नहीं हुआ, उस पर आपको गुस्सा आया हो, आपने मान लीजिए कुछ कहा ही हो और आपके हस्बैंड ने आपको समझाया हो, तो ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट हमारे श्रोताओं के लिए।
0: जी
1: जी
0: हुआ है,
1: जी
0: कई बार होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं आज चलना है वहां पे,
1: जी
0: तो बाई चांस लेट हो जाते हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कभी
1: जी
0: काम में या कभी फ्रेंडों के
1: जी
0: साथ
1: जी
0: हो जाते हैं लेट, तो
1: क्या
0: घर पे आके थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो समझा देते हैं तो हमें भी समझ में आ जाता है। कोई
1: बात,
0: नहीं,
1: क्या बात है।
0: बाहर रहते हैं पूरे दिन दोस्तों के साथ, अगर बैठ भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो अर्जुन जी आपके साथ मतलब ऐसा होता है कि कई बार मतलब
0: हाँ
1: ईगो, छोटे छोटे आत्मसम्मान पर बात नहीं लेनी चाहिए
0: नहीं
1: छोटे।
0: नहीं ये तो बहुत ही गलत है कि कोई बात कही और कहना नहीं कि आपने मानी नहीं, कि
1: जी
0: मेरी सुनी नहीं,
1: जी जी
0: तो वो चीज गलत है,
1: नहीं,
0: क्योंकि इन चीजों को बैलेंस रखने का मतलब ये
1: बतौर
0: जरूरी
1: बतौर अर्जुन जी के जीवन में आपने उदाहरण के तौर पे अपने, मान लीजिए कोई वाइफ से आपने ही कहा हो कि कुछ ऐसा कुछ है और वो ना पूरा हुआ हो या ना हुई हो वो बात, तो ऐसा कुछ किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ, जिससे कि प्रेरणा मिल सके हमारे श्रोताओं को भी, कि वो कई बार होता है कि आग बबूला दोनों पक्ष हो जाएगा तो एक नई ही बात शांत होगी ना।
0: हाँ बिल्कुल। ये एक बार मेरे साथ हुआ था
1: जी
0: जिसमें मैंने उनसे किसी काम के लिए बोला गया था, और
1: जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ, मैं
1: जी
0: थोड़ा थक गई हूँ।
1: जी जी
0: तो मैंने कहा मैं भी तो ड्यूटी से आया हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं
1: जी
0: नहीं यार मैं भी था। तो मैंने उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे समझा,
1: हाँ
0: तो क्योंकि मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी ये
1: मतलब
0: सब करके।
1: अपने अपना जो विवेक है वो हम लोगों को नहीं, देखिए क्या कहते हैं कि क्रोध, एक बड़ी अच्छी एक लाइन कही गई है क्रोध के बारे में, कि क्रोध जो है वो जिस पल आता है वो उस पल सिर्फ हम पे आता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, परिणाम है, वो आगे के सारी चीजें तहस नहस करके चला जाता है, और उस क्रोध के समय हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, हमारे द्वारा कही गई बातें, वो हमारे भविष्य के लिए घातक है। कहा भी जाता है कि बड़ी अच्छी एक लाइन है कि क्रोध के समय आप किसी से कुछ ना कहें, और प्रेम के समय जब आप बहुत खुश हो तो किसी से कोई वादा ना कर दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये बड़ी अच्छी, कई बार हम लोग अति खुश हैं और हाँ जा तुझे ये मतलब किसी
0: हाँ
1: को ये
0: वचन
1: कह
0: दे दी।
1: वचन दे दी, तो बाद में आपकी वैल्यू थोड़ा सा, आपकी जबान की वैल्यू कम होती है, तो ये कुछ कही कही कहावतें हैं, तो ये इनको हमारे जीवन में जो है हूबहू उतारने में प्रासंगिकता इसकी काफी बनी ही रहती। तो किरण जी एक बात अब यहां आती है कि हम देखते हैं कि पारिवारिक जो सुख शांति है ये कहीं ना कहीं परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत होने का भी आधार है, अगर सुख शांति रहेगी तो परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, क्या लगता है आपको?
2: जी, अगर अगर हस्बैंड खुश है या बीवी खुश है, अगर वो खुश हैं तो वो अपना काम आराम से करेगी, और हस्बैंड खुश हैं तो ऑफिस में जाके वो अपना काम बेफिक्र होके फ्री माइंड होके करेंगे
1: जी।

0: तो इससे उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, ऊपर से आर्थिक स्थिति भी सही
1: सही।
0: रहेगी।
1: अच्छा, अब हम बात करें तनाव की। हमने ये देखा है कि इन दिनों बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं तनाव की वजह से। आदमी अनावश्यक रूप से तनाव ले रहा है किसी भी चीज का। वो तनाव हो सकता है कि देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक परिवार में एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनके घर का सिलेंडर अचानक से खत्म हो गया और हस्बैंड निकल गया है अपने ड्यूटी की तरफ। अब सारा काम हो चुका है, लेकिन अब वाइफ को ये चिंता थी कि भाई शाम को खाना कैसे क्या होगा। तो ये दो घटनाएं हैं एक साथ, दोनों मान लीजिए दोनों जगह दो परिवार हैं, दोनों जगह ये सेम परिस्थिति आई है। एक परिवार की महिला ने कहा कि चलिए शाम को देखेंगे, अभी हस्बैंड वाइफ वहां से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं तो देखते हैं। और दूसरे परिवार की महिला ने, अभी वो हस्बैंड अभी रास्ते में ही था, अपने ऑफिस पहुंचा ही नहीं तब तक फोन कर दिया कि भाई घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, खाना ये वो। अब दोनों को हम ये उदाहरण की तरफ से बता रहे हैं। एक जिसने जिसको नहीं पता कि उसके घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, उसकी वाइफ ने नहीं बताया, वो जब शाम को छुट्टी हुई तो वो आराम से खुशी खुशी बढ़िया अपने घर से ना शाम को निकला तो बोले बच्चों के लिए नाश्ता ले लें, परिवार के मस्त एकदम अपना सारा नाश्ता वास्ता लेके पहुंचा घर, बोले आज खाना बाहर से ही पैक करा, बिना कुछ कहे या कुछ अच्छा है भी ना। और जिसकी वाइफ ने उसको बता दिया कि घर का सिलेंडर खत्म या फिर चिंता, वो आदमी दिन भर तनाव में रहा कि सिलेंडर खत्म कैसे क्या, अब घर जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, और उसके वो काम की एफिशिएंसी नहीं रही, उसको बॉस से भी डांट पड़ी कि भाई ये काम समय पे नहीं, वो काम समय पे नहीं। और जिसकी वाइफ ने स्मार्टली काम करते हुए सिलेंडर के बारे में एक ये केवल इसको एक बतौर सतही एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो स्मार्टली काम करने का ये भी तरीका है कि हमारे को कौन सी बात कहनी है और तुरंत कहनी है और कौन सी बात तरीके से कहनी है, थोड़े टाइम बाद कहनी है, क्या इन चीजों का भी हम लोग ध्यान रखते हैं?
2: हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से हस्बैंड आया
1: जी
2: कि रास्ते में क्या इंसिडेंट हो रहे
1: जी
2: हैं, क्या मॉर्निंग वहाँ से आ रहे हैं तो क्या क्या ऐसी चीज घटनाएं हुई हैं। तो हस्बैंड को जब आता है घर पे
1: जी
2: पति, तो वाइफ का फर्ज ये बनता है कि बहुत ही स्वभाव से ही उससे
1: जी
2: बात की जाए,
1: जी जी
2: क्योंकि पत्नी को नहीं पता कि उसके साथ क्या ऐसी घटनाएं
1: और
2: हुई हैं।
1: सेम वाइफ के साथ भी लागू है
2: हाँ
1: कि अगर आप वाइफ के
2: बिल्कुल
1: साथ
2: बिल्कुल, कि घर में ऐसा क्या माहौल रहा होगा, कि उसके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई होंगी, क्या हुआ
1: तो
2: है
1: क्या
2: क्या नहीं।
1: किरण जी, इस विषय पे हम बात करते हैं तो जैसे सिलेंडर की ही अब मैंने दो एग्जांपल बताया, क्या लगता है आपको दोनों में?
0: दोनों में हमें लगता है परिस्थितियां जो होती हैं, लेडीज को जो सिलेंडर खत्म हुआ उन्हें ये फिक्र रहती है कि हस्बैंड पता नहीं लेट आएंगे ड्यूटी से या जल्दी आएंगे, लेट आएंगे तो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा, एक उन्हें ये भी तो फिक्र रहती है।
1: हाँ
0: तो बस तुरंत ही फोन ना करके
1: हाँ
0: 2-4 घंटे में पूछें क्या कर, फोन करें
1: हाँ
0: कि क्या कर रहे हो,
1: जी
0: फ्री हो और नहीं हो, कैसा माइंड है, उस हिसाब से बता दें। मतलब ये नहीं कि तुरंत फोन किया कि सिलेंडर खत्म हो गया। अब वाइफ को ये चिंता है कि अगर लेट हो गए, सिलेंडर नहीं मिला तो शाम को सब भूखे रह जाएंगे।
1: क्या बात है, देखिए स्मार्टली इतना अच्छा आपने आंसर दिया। एक तरीके से प्रश्न ही समझिए कि उदाहरण देने का कारण ही यही था कि एक तो ये हुआ कि चट से फोन कर दिया, दूसरा स्मार्टली क्या कर रहे हो, कैसा स्थिति है, क्या सोच रहे हो, फिर शाम में धीरे से अपनी बात कह दी कि भाई ऐसा ऐसा, उसको भी कहा चलो ठीक है अभी का हो गया ना शाम को मैं अपने। तो किसी प्रॉब्लम को टैकल करना, मिल बांट के टैकल करना, ये भी अपने आप में एक कला है। ये अब हम लोग अपने प्रोग्राम में अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अर्जुन जी, आपको क्या लगता है पारिवारिक सुख शांति के लिए क्या पॉइंट्स, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं हमारे परिवार को सामंजस्य बना के रखने की?
2: सामंजस्य बिठाने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो मुझे लगता है आज के टाइम पे कि दोनों को अगर जॉब में हो कमाना भी चाहिए, परिवार को मिलजुल के रखना भी चाहिए। हस्बैंड वाइफ को भी परिवार के प्रति, माँ बाप का, बहू का, सास ससुर के प्रति और सास ससुर का, देवर का, अनन का, बहू के प्रति फर्ज करना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए
1: जी
2: उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए।
1: किरण जी, एक पारिवारिक सुख शांति सामंजस्य के लिए बतौर पत्नी आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें जरूरी हैं और हम सबको जो है उसका पालन करना चाहिए?
0: जी उसके लिए तो मेन हमें लगता है कि पति और पत्नी का जो बीच का प्रेम और सम्मान, और सम्मान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से इज्जत, अगर अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं और अगर पति की वो इज्जत करती है वाइफ, तो आप सास ससुर की तो करेंगी करेंगे और इसलिए करेंगे,
1: और सबको सम्मान,
0: सबको सम्मान ही मिलेगा।
1: तो खैर, आपने बड़े अच्छे से अपनी बातें कही, आपने हमारे साथ अपनी जो है व्यवहार साझा किए। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पारिवारिक सामंजस्य पे, पति और पत्नी की भूमिका के बारे में। तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि सम्मान, सहयोग, आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, कहा जाता है कि बड़ा

0: अंदर एक वसीम साहब का शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, और कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि सहयोग, सम्मान, समर्पण एक दूसरे का, चाहे पति हो तो पत्नी का और आप पत्नी हो तो पति का, न सिर्फ उनका बल्कि एक दूसरे के परिवारों का हमें सम्मान करना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो परिवार नाम की संस्था है, ये हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, और इस संस्था को बनाए रखने के लिए, इसमें विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि परिवार सफल हो और सफलता से आगे बढ़े। क्योंकि आज के दौर में हम ये देख रहे हैं एकल परिवार की अवधारणाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, और लोगों का अब विवाह के प्रति भी रुझान जो है वो काफी कम हो रहा है, और जो लोग विवाहित हैं उनके बीच में मतभेद काफी हो रहे हैं। तो इसको मिटाने का जो पीड़ा हमारे समाज ने उठाया है, जो आकाशवाणी बरेली ने उठाया है, वो उसमें हम सबको सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का सहयोग, सम्मान करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, और अगर कोई हीट पॉइंट आता भी है, कोई ऐसा क्रोध का विषय आता भी है, वहां 1 मिनट ठहरे, सोचे, सुने, और क्रोध के समय कोई निर्णय ना ले। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम परिवार को सफल रूप से आगे ले जा सकते हैं। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अपने हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। हमारा पता तो आपको पता ही है, और आप हमें पत्र भी लिखिएगा हमारे पते पर। कार्यक्रम से मुझे, ब्रजेश को, और आज के हमारे हम पैनलिस्ट, आज की परिचर्चा में हमारे साथ प्रतिभाग किए हुए हैं जो प्रतिभागी हैं, अर्चुत सैनी जी आपका और किरण कुमारी जी आपका, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था कैफी कैफे भोपाली का लिखा गाना, संगीतकार गुलाम मोहम्मद और फिल्म थी पाकीज़ा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब आई

0: आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या हुआ।
1: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ।

0: मैं बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रीतेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ, ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण, पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना ना ना ना ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामू

0: मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त में से शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों के खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेराफेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री H.P. शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गईं। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ। ऐसी भी क्या उतारी आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तबीयत ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
3: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना। बताते क्यों नहीं, आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी। बताइए ना क्या हुआ है?
3: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा, ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
3: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
3: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
3: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
3: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
2: मिली। भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
3: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय।

0: कैसा दुर्भाग्य है हमारा। आए राम आए, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
0: आगरा। आए राम।
2: आए हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन? पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन था बहन?
2: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
0: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए, हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
2: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
0: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
3: बहन फिर हुआ क्या?
0: अरे किस्मत फूट गई हमारी, तो किस्मत।
2: भाई साहब की नौकरी?
0: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
2: अनर्थ?
0: अनर्थ। आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
3: हाय राम।
2: करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती हौसला रखो।
0: तुझे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
3: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
3: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन।
2: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाए दे।
0: नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
2: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
3: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
2: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
1: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
2: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
1: न जाने कौन है।
2: किस कंबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
1: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
2: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
1: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप?
1: कृष्ण तुम
5: इस वक्त यहाँ?
1: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
0: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
1: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
1: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
1: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक
5: है। ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
1: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
1: रजा, रजा।
5: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध

0: से मक्खी की तरफ निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
1: शट अप बदतमीज।
2: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
0: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
2: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है।
0: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
2: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
0: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं भी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
2: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
3: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
2: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
3: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
0: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
2: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
3: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
2: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
0: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
3: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
2: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
0: कल से स्ट्राइक?
2: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
4: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
2: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
4: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही,
5: मामी, मामी,
3: पिताजी, आप बाप रे?
2: कौन?
3: मैं कोई नहीं।
2: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
3: उषा? हाँ, नहीं।
2: तो कौन घुसा है अभी घर में?
3: उषा।
2: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
3: ओहो, किसे कोस रहे हैं?
2: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
3: ओहो, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
2: बुलाओ उसे।
3: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
2: हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौटाया कॉलेज से?
3: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
2: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
3: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
2: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा।

0: विनय,
1: जी पिताजी,
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
1: इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
1: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
0: विनय,
1: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
1: आज ऑर्डर आए

0: खबर आज ही आई है।
1: आज ऑर्डर आए हैं। आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
2: तुम्हारा मतलब क्या है?
1: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
2: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है।
1: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
2: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
1: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी। बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागलखाने में जा रहे हैं।
2: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
1: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बता देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
2: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
1: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
2: तुम्हारा सोशल सर्कल?
1: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहां हॉस्टल में रह लूंगा।
2: क्या तू यहां हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
1: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
2: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूं?
1: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
2: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
1: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां पर बात करते रहेंगे पिताजी?
2: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, भले मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर हो जा मेरी नजरों से।
3: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
1: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
2: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहां से, जहां तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहां रह सकता है रह ले।
3: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? हाय राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
1: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
2: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
1: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
2: हाँ, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है?
6: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए? चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
6: चलो।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती है।
6: चलो।
8: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर, आओ आओ भाई आओ।
9: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
9: नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
8: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
10: कितने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
10: और पैसे?
9: ये ले, मैं देता हूँ।
6: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता। बड़े
9: ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
7: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
9: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
7: हाँ बिल्कुल,
9: मगर वो क्या कर सकता है?
0: बड़े बाबूजी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट

0: सर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा, क्यों भाइयों?
1: सही बात,
0: सही है,
2: सही बात, सही बात।
3: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
1: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
3: हाँ सो तो है,
1: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर, क्यों भाई?
2: बिल्कुल
4: सही बात,
3: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल।
1: आज ही मिल लीजिए,
3: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत?
5: अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास, क्यों भाई?
4: बिल्कुल ठीक बात है।
3: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
6: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
7: मे आई कम इन सर?
8: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
3: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
8: हाँ हाँ बोलो।
3: सर वो बात ये थी कि
9: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब,
10: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
8: हाँ याद है।
10: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
8: याद है बरोबर।
10: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
8: बरोबर।
10: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
8: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
10: आपको सब कुछ याद है?
8: Of course.
10: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
8: बोलो बोलो क्या काम है?
10: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
8: मालूम जरूर है पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
10: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
8: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
10: बेशक सर बेशक, आप रुकवा सकते हैं।
8: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
10: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर मैं
8: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
10: सर मैं आपके पांव पकड़ता हूँ।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
10: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
8: क्यों,
10: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
8: ओ आई सी।
10: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
8: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है, अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
10: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
8: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड।
8: अच्छा, कभी देखा नहीं।
10: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
8: ओ आई सी।
10: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
8: कहाँ?
10: वो घर के आंगन में सर।
8: लोधी रोड के क्वार्टर में?
10: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
8: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
10: यस सर।
8: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
10: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
8: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
10: सर है तो दिल्ली ना।
8: यस यू आर राइट।
10: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
8: हम रुकवा सकते हैं?
10: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
8: ओके हम रुकवा देंगे।
10: थैंक यू सर।
8: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
10: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
8: ओके
10: थैंक यू सर, थैंक यू।
8: मिस्टर शर्मा।
10: यस सर।
8: आपने ये तो बताया ही

0: नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा?
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए कि ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
0: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
0: ओके, हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा बट लिसन।
1: यस सर।
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा,
1: ये सर
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो, नालगड़ी मेंशन कर दे।
1: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर।
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीना नाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। समय हुआ है शाम के 4 और ये समय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। और आज का हमारा विषय है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कुछ रिश्ते इस जहां में खास होते हैं, हवा के साथ जिनके एहसास होते हैं, ये दिल की कशिश नहीं तो और क्या है कि आप लोग दूर, बहुत दूर होकर भी हमारे दिल के बहुत पास होते हैं। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस मनपसंद प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। श्रोताओं कहते हैं कि रिश्ते एहसास से बनते हैं और एहसास हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज का हमारा कुछ टॉपिक भी ऐसा ही है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के पास है। श्रोताओं देखते हैं कि हमारे आज के पहले खुश नसीब कॉलर कौन हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है। देखते हैं श्रोताओं के हमारे आज के ये पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
4: हेलो
3: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
4: जी मैं नाज रेडियो क्लब ग्राम करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
3: बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। काफी दिनों के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है।
4: जी हाँ सर, काफी अरसे के बाद मेरी और मेरे जिससे बात हो रही है, परवेश सर जी से काफी अरसे के बाद बात हो रही है सर।
3: चलिए ऐसे ही खुश रहिए और साथ साथ हमारे प्रोग्रामों को भी सुनते रहिए। आज का हमारा जो विषय है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है।
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विषय है आज का, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे दिल के बहुत करीब हमेशा रहते हैं, चाहे वो हमसे कितने भी दूर क्यों ना हो जाए सर, पर रिश्ता अक्सर उनका ख्याल हमारे दिल में आता रहता है और हम उनको दिल से याद करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि रिश्ता, अगर हम कोई भी रिश्ता हो, उसको हमें दिल से ही निभाना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए। पर रिश्ता जो भी होना चाहिए उससे दिल से होना चाहिए। दिखावे का रिश्ता हम लोगों को किसी से नहीं रखना चाहिए, जिससे भी मिले दिल से मिले और बिल्कुल अपनी जज्बात उसको शेयर करें, जिससे भी हम दिल से रिश्ता निभाते हैं। और जो अक्सर हमसे दूर चले जाते हैं, और आज भी हम मुझसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे दूर चले गए, उनको मैं अभी भी महसूस करता हूँ और उनका ख्याल मेरे दिल में हमेशा आता है। और मैं जब भी अपनी निगाहों से अपने दिल को देखता हूँ तो उनका चेहरा मुझे नजर आता है सर।
3: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात निसार अंसारी जी आपने कही। और वाकई में रिश्ते होते हैं जिंदगी बिताने के लिए। कहते हैं ना कि हम अपनी हस्ती मिटा दें उसको निभाने के लिए, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, या फिर आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी या फिर कोई भी हो सकता है वो रिश्ता,
5: है ना।

0: दूर रहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर रहते हैं, है ना, बहुत
1: जी
0: करीब
1: बिल्कुल
0: रहते हैं।
1: सर
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत आज आपको सुनवा दें?
1: जी मेरी आज सर आपसे काफी अरसे के बाद बात हो रही है, तो मैं सुनना चाहूंगा कि आज आप अपनी पसंद का मुझे कोई भी गीत सुना दीजिए सर।
0: जी बहुत शुक्रिया आपका, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: शुद्ध 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कॉल्स के साथ साथ हमारे बहुत सारे लिसनर ऐसे भी हैं जो फेसबुक के माध्यम से हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक कहते हैं। तिलकराज अरोड़ा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि सा प्रेम नमस्ते जी, आपको भी हमारा नमस्कार। जी हाँ, हमारे जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब हैं वो रिश्ता है दर्द का रिश्ता। जी हाँ, आज वो हमसे बहुत दूर है मगर आज भी हमारे दिल में उनके प्रति बहुत ही प्यार है। वो भूल चुके हैं, हम नहीं भूले हैं। हमने इस रिश्ते का नाम दिया है दर्द का रिश्ता। क्या बात है। कहते हैं ना कि कशिश उसकी हर चीज़ भुला देती है, बंद आँखों में भी सपने सजा देती है। और ज़िंदगी में सपनों की दुनिया ज़रूर रखना यारो, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है। देखते हैं कि हमारे अब कि दूसरे कॉलर कौन है। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी सर, मैं बसंत सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत सार तहसील बीसरपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत।
0: बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज से पहले भी आपकी कभी कॉल लगी है हमारे प्रोग्राम में?
1: जी सर, कभी हमारी कॉल नहीं लगी। लगाते प्रयास बराबर करते हैं, लगती नहीं सर।
0: चलिए, आज जो है वो आपका प्रयास सफल हो गया।
1: हाँ, सुनते प्रतिदिन, हर रोज हम सुनते हैं 4 बजे।
0: कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छे लगते हैं आपके सारे कार्यक्रम जो है, हर रोज गीत है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, किसान वाणी है, युवा वाणी है, नारी संसार है,
1: जी जी जी जी,
0: अंकुर कार्यक्रम है, नमस्ते
1: जी,
0: बरेली
1: सारे
0: है,
1: सारे कार्यक्रम सुनते हैं। जबकि लगभग लगभग हमको 30-32 साल हो गए सुनते हुए बराबर।
0: अच्छा
1: जी हाँ, हमारे पास आज भी रेडियो रखा हुआ है, एक नहीं दो दो रेडियो।
0: तो आप अपने खत वगैरह भेजिए हमारे केंद्र पर
1: जी। और खत भी मैंने पहले डाले थे।
0: अच्छा
1: जी, पहले रत्नाकर भारती और ये पल्लवी सिंह ये उद्घोषक रूप थे, हम बराबर डालते रहते थे
0: जी। कार्यक्रम अधिशासी थे रत्नाकर भारती जी। बहुत पुरानी बात है ये, सन 2005 या 6 की बात रही होगी ये, है ना?
1: जी जी।
0: चलिए, आज का जो हमारा विषय है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है? तो कोई है ऐसा रिश्ता आपका?
1: जी
0: जी, व्यक्त कीजिए अपने विचार।
1: जी, जैसे हमारी बहन खत्म हो गई थी, बहन खत्म होने के बाद में हमारा रिश्ता जो है वो टूट ही गया
0: जी।
1: फिर उनके बच्चे होने के बाद, जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए, उनका हमारा और आना जाना बिल्कुल पहले की ही तरह बराबर।
0: अच्छा, तो जो बहन खत्म हो गई थी, कोई ना कोई मनमुटाव रहा होगा जिसकी वजह से उस रिश्ते में दरार आई, लेकिन दूर होकर भी वो आपके पास ही थे, है ना?
1: हाँ हाँ जी जी जी, बहुत हमारे करीब में।
0: हाँ, कहते हैं खून के रिश्ते जो हैं वो ऐसे नहीं मिटाए जाते, वो कहीं ना कहीं कितनी भी दूरियां आ जाएं लेकिन फिर भी कभी ना कभी इतने जरूर हैं। सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत शुक्रिया आपका।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ये कमेंट हमारे पास आया बक्सी नंदा तकन बदायूं से, बिमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्या, सोना, रीना और नीरज का। आप कहते हैं दिल का रिश्ता

0: सबसे बड़ा होता है, पर सभी लोग एक तरह का एक दिन किसी वजह से दूर हो जाते हैं, एक तरह से किसी वजह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मजबूरियां सबके लिए कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। तो कितना भी कोई दूर क्यों ना हो, पर दिल के हमेशा वो पास रहता है, और आज के दौर में हम सभी को उसे याद ज़रूर करना चाहिए, चाहे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि वो सब अगर आपको भूल भी गए हैं, पर आपकी और हमारी तो राय यही बनती है कि आप उसको एक बार ज़रूर याद दिलाएं कि यहाँ हम आज भी आपको याद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुराना दौर अलग था, लेकिन आज बहुत सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया के माध्यम हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट्स है, और बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से फ़ोन कॉल्स हैं, जिनके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठे हुए हैं तो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो हम दूर चाहे कितने भी हों, लेकिन हम हमेशा नज़दीकी पाएंगे अपने आप को अगर हम एक दूसरे के संपर्क में हैं तब। और देखते हैं कि अब ये हमारे कॉलर कौन है।
1: हेलो,
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: उमेरा खान बोल रहे हैं, जिला बरेली टिसुआ से।
0: उमेरा खान, जिला बरेली टिसुआ से। जी, क्या करती हो आप उमेरा?
2: हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं।
0: कौन से क्लास में बेटा?
2: नाइन्थ में।
0: अच्छा, नाइन्थ क्लास में हो आप, है? तो रेडियो सुनती हो, रेडियो अच्छा लगता है?
2: हाँ, हमारे पापा भी सुनते हैं, हमारा पूरा परिवार सुनता है दिमाग से।
0: चलिए अच्छी बात है कि आप रेडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है आपको?
2: जी हाँ।
0: क्या ज्ञान?
2: जानकारी मिलती है।
0: अच्छा, मनोरंजन के साथ साथ जानकारियाँ भी मिलती हैं। युवाओं का कार्यक्रम आता है, उसको सुना कीजिए आप, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ होती हैं, है ना?
2: हमारे पापा तो पूरे दिन सुनते हैं, सुबह से रात तक।
0: आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के करीब है, तो है कोई ऐसा रिश्ता?
2: एक हमारी फ्रेंड है स्कूल की।
0: अच्छा।
2: जो यहाँ से फरीदपुर में रहती है।
0: अच्छा।
2: तो हमारी बहुत पक्की दोस्त है, केयर हमारे बीच।
0: जी जी
2: जी, मतलब वो हमारी केयर करती है, साथ देती है हमेशा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो हमें बहुत अच्छी लगती है वो। है तो दूर, पर फिर भी हमारे दिल तो बहुत करीब है।
0: अच्छा, टिसुआ से कितनी दूर है फरीदपुर आपका?
2: फरीदपुर टिसुआ से 10 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, 10 किलोमीटर दूर है। वो आपकी सहेली है?
2: हाँ।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनोगे बेटा आज?
2: हाँ, 90 के दशक का सुना दीजिए कोई सा गीत।
0: सुनवाते हैं हम आपको ये गीत। बहुत शुक्रिया आपका।

अनोखे लाल जी ने ये कमेंट हमें भेजा है मौर्य मंदिर कटा चांदखा पुराना शहर बरेली से। आप कहते हैं कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं आगे कि रिश्ता चाहे दूर का हो या पास का, रिश्ता तो रिश्ता होता है। और फिर हमारा रिश्ता तो आकाशवाणी बरेली से बहुत प्यारा रिश्ता है। दूर होने के बाद भी आकाशवाणी हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम आकाश

0: ज्वाली का प्रत्येक कार्यक्रम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनते हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं हर समय, वही हमारा सबसे अच्छा साथी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। इसी तरह आप 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से जुड़ी रहिए, क्योंकि ये जो आपका रिश्ता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और फिर कहते हैं ना कि सिर्फ रिश्तों के बंधन को विश्वास नहीं कहते, हर आंख से निकले आंसू को जज्बात नहीं कहते, किस्मत से मिलते हैं दोस्त ऐसे जिंदगी में, इसलिए दोस्ती को इत्तेफाक नहीं कहते।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हनी बोल रहा हूँ, जबलपुर से।
0: हनी, क्या करते हैं हनी जी?
1: जी, मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ।
0: अच्छा, काय में करते हैं प्राइवेट सर्विस?
1: जी, आर्किटेक्ट के सहयोग में सर्विस करता हूँ।
0: अच्छा, पहली बार आपका कॉल लगा है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी,
0: हमारा आज का टॉपिक है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है?
1: सर, अब से करीब 10 साल पहले मेरे फोन पर एक साहब से बात हुई थी, रॉन्ग नंबर था, थोड़ा सा परेशान हुआ
0: जी।
1: और वो एक टीचर थे, बहुत दूर रहते हैं
0: जी।
1: लेकिन उस वक्त हमारा रिश्ता ऐसा हो गया था जैसे कोई फैमिली का सदस्य हो। फिर कुछ समय के बाद वो नंबर जो है लगता नहीं है।
0: अच्छा।
1: और हमारा उनका रिश्ता जो है दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम माने तो जिस तरीके से हम जुड़े थे वो टूट गया। इसलिए उनकी याद आती है
0: जी।
1: तो बहुत दूर कहीं इलाहाबाद के साइड पे कहीं रहते हैं, ये करीब 10-12 साल पुरानी बात है।
0: अच्छा,
1: तो मुझे याद आती है। और उनका नाम था भोलेनाथ वर्मा जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत याद आते हैं मेरे उनसे। गुरु जैसा, गुरु का पुरुषा दर्जा मैंने उन्हें दिया था, क्योंकि वो एक शिक्षक थे। शिक्षक ही होता है जो हमें सही मार्ग दिखाता है
0: जी।
1: हमें कलम का सही कैसा प्रयोग करना है वो सिखाता है। इसलिए
0: जी, जी।
1: हमारे वो गुरु थे, हमें याद आती है उनकी। और यही कामना करते हैं किसी रोज कहते एक बार फिर से हम लोगों की बात हो।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जो आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया है, किसी न किसी कारणवश आपका जो संपर्क नहीं हो पा रहा है वो संपर्क आपसे हो जाए, और फिर से जो आपका फोन के माध्यम से जो रिश्ता था वो पुनः जुड़ जाए, ऐसी हमारी दुआ है। बहुत अच्छा लगा हनी जी आपसे बात करके। कौन सा गीत आज आप इस प्रोग्राम में सुनना चाहेंगे?
1: दिलवाले का सातों जन्म न तुझे।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत धन्यवाद आपका।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ये कमेंट हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद परेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी। आप कहते हैं कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार आदाब। आपको भी हमारा नमस्कार आदाब। आगे ये लिखते हैं कि हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। आज जिस विषय पर बात हो रही है वो बहुत खास है। जो रिश्ते खास होते हैं वो पास नहीं होते। ऐसे कई रिश्ते हमारे जीवन में हैं जो खास तो हैं मगर पास नहीं है। उनकी अहमियत जीवन भर में इतनी है कि दिन निकलते ही सबसे पहले उनका ही ख्याल मन में आता है। रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते जिनसे दिल पहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिए। रिश्ते जन्म जन्म के नहीं बल्कि सातों जन्म के होते हैं। सिर्फ निभाने का जज्बा होना चाहिए। वाकई में लाल मोहम्मद अंसारी जी, बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी कि रिश्ते सिर्फ एक दो दिन के नहीं बल्कि ज़िंदगी भर तक साथ निभाने के लिए होते हैं। बस ज़रूरत है उसमें आपसी प्रेम मोहब्बत की। और ऐसे ही प्रेम मोहब्बत बनाए रखिए और अपने रिश्तों को कायम रखिए। आप हैं हमारे श्रोता प्रदीप कुमार किला छावनी से। आप कहते हैं कि

0: हम तो हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं, और हम आपको बताएं कि हमने रेडियो के चक्कर में अपने जीवन साथी को भी खो दिया, और हमारा बेटा भी हमसे बहुत दूरियां बन गई थी। रेडियो के माध्यम से हमारा बेटा आज हमसे फिर जुड़ गया है। अब हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम बिना जीवन साथी के जीवन बिता रहे हैं। रेडियो हमारा सच्चा साथी है, ये हमें कभी धोखा नहीं देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिख करके भेजी। प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो से अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलती हैं, और साथ साथ आपका मनोरंजन होता है, और आपके खाली वक्त का बहुत अच्छा साथी है रेडियो। ये सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप FM बरेली से जुड़े रहिए और हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिए।
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: साहब, मैं टारगेट से बोल रहा हूँ जी। मैं अपनी बहन के घर से बोल रहा हूँ, मेरे बहन भी क्या कर रही है
0: जी। नाम बताइए आप अपना।
1: मेरे बहदत खान।
0: बहदत खान
1: जी, पहले वाला आशीर्वाद से मैं रामपुर का हूँ, ये बहन का घर है, आया हूँ, इलाज चल रहा है मेरे आप।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात, क्या बात है।
1: चिचीचापुर आए हॉस्पिटल, लेकिन मुझे आप इतनी खुशी है, आप मुबारकबाद दे रहे हो, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, मैंने बहुत ही अच्छा कर रहा
0: जी। आप
1: नहीं करता हूँ, बिल्कुल पहली बार जिंदगी में फोन जाइए।
0: चलिए, आपने पहली बार फोन किया है और आपका फोन लग भी गया, और आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, ये आपकी जर्रा नवाजी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है, क्या है आपके?
1: मैं आपको एक शेर कहता हूँ, सारी बात आ जाएंगी।
0: जी जी बिल्कुल कहिए।
1: दिल की क्या बिसाती शबे विशाल में, दिल की क्या बिसाती शबे विशाल में, एक आए न थक टूट गया जेब का।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: गाना इसके ऊपर बस उसको सारी बात आ जाएगी, मतलब मुझे का टूटे हुए ख्वाबों में दिल नहीं सिखाया।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत, बहुत शुक्रिया आपका।
1: आप बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपसे लोग इतने कन्विंस है, इतने आपकी बोली इतनी अच्छी है की लोग आप बहुत ही अटैच हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे आदमी जो कभी निकट।
0: चलिए चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।

0: ये हमारे बहुत ही प्रिय लिसनर हैं, ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारून नूर अंसारी। आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में आकाशवाणी बरेली की एक खास जगह है। आकाशवाणी बरेली का केंद्र भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे लिए रेडियो महज एक जरिया इत्तला नहीं, बल्कि मोहब्बत, अपनायत और सुकून का एक खूबसूरत एहसास है। जब रेडियो पर उद्घोषकों की मीठी आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हमसे गुफ्तगू कर रहा हो। आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम सुनकर दिल को खुशी मिलती है और अपनेपन का एहसास होता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी अपने ख्यालात और जज्बात आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाऊं। आज इंटरनेट के दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है, क्योंकि रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत रिश्ता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि फासले चाहे कितने भी हों, मोहब्बत कभी दूर नहीं होती। आकाशवाणी बरेली मुझसे दूर होकर भी मेरे दिल के बेहद करीब है। वाकई में शारून नूर अंसारी जी, आपने बहुत ही प्यारी बात, हमसे जो जुड़ाव है, हमसे जो रिश्ता है, आकाशवाणी से जो आपकी मोहब्बत है, उसको जाहिर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, फिर न सिमटेगी अगर मोहब्बत बिखर जाएगी, फिर न सिमटेगी अगर मोहब्बत बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं कि फिर से सबर जाएगी, जो खुशी दे तुमको थाम लो दामन उसका, जिंदगी रो के नहीं हंस के गुजर जाएगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम माहिरा बोल रहे हैं, डोरा टांडा से।
0: माहिरा जी, क्या करती हैं आप?
1: घर पर रहते हैं, गली का काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं।
0: अच्छा, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुन पाती हैं आप?
1: बिल्कुल सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं।
0: किसी एक प्रोग्राम का नाम बता दीजिए। आप महिला हैं, महिला संबंधित कोई कार्यक्रम बता दीजिए आपको जो अच्छा लगा हो।
1: आज संसार भी सुनते हैं, अंकुर भी सुनते हैं, आपका पति मिला सुनते हैं।
0: अच्छा, खत भेजती हैं आप अपने? खत भेजती हैं आप अपने? चलिए, खत और खिताबत कीजिए ताकि आपका रिश्ता और अच्छा बन जाए आकाशवाणी बरेली के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कोई रिश्ता आपके जीवन में जो बहुत दूर है आपके, लेकिन फिर भी दिल के बहुत करीब है, कुछ ऐसी मेमोरी आपके जीवन में?
1: जी, हमारे सिस्टर हैं, हमसे बड़े, वो हमारे दिल के बहुत करीब।
0: कहाँ रहती हैं वो?
1: उनके शादी हो गई है।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन हमसे भी दूर हो गई ना, हमारे लिए तो बहुत दूर हो गई, हमारे साथ रहती थी ना, इसलिए हमें लगता है कि बहुत दूर हो गई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। माहिरा जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज आप इस प्रोग्राम में?
1: आप अपने सुना देंगे?
0: ठीक है, सुनवाते हैं।

0: ये कमेंट हमें भेजा है नाज रेडियो क्लब करेली से निज़ार अहमद अंसारी ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बचाते बचाते इंसान खुद से ही दूर हो जाता है और सामने वाला उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहता है। रिश्ता कोई भी हो उसे दिल से निभाना चाहिए, दिखावे का रिश्ता किसी से नहीं निभाना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे हुए हैं जो हमारे दिल में आज भी हैं मगर वो हमारी नज़रों से दूर हैं। हम उन रिश्तों को अपने से दूर कभी नहीं कर सकते और उनको हमेशा महसूस करते रहते हैं। ये मोहब्बत का रिश्ता जज्बात का रिश्ता होता है और मैं ये महसूस करता हूँ जिस दिल से रिश्ता होता है उसे कभी हम अपने दिल से जुदा नहीं कर सकते। चाहे हम उसको देखें या ना देखें पर हमारा दिल, हमारी निगाहें हमारे दिल में उसकी तस्वीर अक्सर देखा करती है। तो मेरा मानना है जिसे भी हम रिश्ता निभाएं तो दिल से निभाएं, दिखावे का रिश्ता किसी से न करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने कटर चंद खां पुराने शहर बरेली से जमुना बरसात मौर्य किरण मौर्य, आप कहते हैं कि आज का विषय बहुत बढ़िया है, रिश्ते सब दिल से निभाने के होते हैं। दूर हो या पास हो फिलहाल हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमें अजीब लगता हो। हम सब हमारे दिल के नज़दीक, जैसे अब ये बात कि आकाशवाणी बरेली से भी रिश्ता एक हमारा बन गया है दिल का। बताइए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनाते हैं आप अपनी, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम दिल से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्यारी बातें लिखने के लिए। और देखते हैं कि हमारे कॉलर कौन है,
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम सर भगुआ बाजार से बोल रहे हैं, बाबू भाई, जिला बरेली, तहसील नवाबगंज लगता है हमारा।
1: अच्छा अच्छा बाबू भाई, क्या करते हो आप?
2: हम सर करते तो कुछ नहीं है और अब हम वृद्धावस्था में आ गए इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी बाबू भाई?
2: हमारी उम्र करीब 70 के करीब आ चुकी है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है।
2: और रेडियो को हम 1972 से ही सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, मतलब
2: और हम बहुत दीवाने हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है साहब, स्मार्ट फोन वालों की तो आपके यहाँ ज्यादा कदर है मगर छोटी मोबाइल वालों को अभी कोई टाइम दिया जाए सर। हमारे पास छोटा ही मोबाइल है।
1: देखिए आपके लिए टाइम ये है कि आपके लिए रेडियो है, ठीक है, आपके लिए अनुरोध गीत कार्यक्रम है खतों का, आप खत भेजिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़िए और आप बराबर आपका नाम आता रहेगा और इसी बहाने आप हमसे जुड़े भी रहेंगे, है ना?
2: धन्यवाद।
1: अब जैसे बाबू भाई हम ये जानना चाहेंगे कि 70 साल की आपकी उम्र हो गई है तो कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में जो दूर भी है लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
2: ये ऐसा है सर, इससे दूर रह के और बहुत दिल के करीब है।
1: जी जी,
2: ये सर सबसे ज्यादा अपना परिवार ही ज्यादा होता है क्योंकि दूर वाले तो ऐसा है, वो आज का दौर ऐसा हो गया है कि सिर्फ मतलब ही हो गया है।
1: बात सही,
2: भाई बंद और सब ये खास जो रिश्ता है वो परिवारिया ही है। दिल के करीब।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम कहीं किसी शहर में गए, वहाँ पर हमारी किसी से जान पहचान हुई और फिर हम अपने शहर आ गए लेकिन उनसे हमारा तारतम बन गया, रिश्ता बन गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से फोन के द्वारा या चिट्ठी पत्रियों के द्वारा हम उनसे जुड़े हुए हैं लेकिन वो हमसे दूर हैं लेकिन दिल के पास हैं। तो ऐसी कभी आपके संग स्मृति रही है आपके जीवन में?
2: ऐसा रहा। हमारा ऐसा एक करगैना के सराज है, मोटर मैकेनिक।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो बस उनसे है।
1: अच्छा, गीत बता दो। अच्छा बाबू भाई, कौन सा सुनोगे आप?
2: हम सनम वेफा का कोई सा गाना सुनवा दे जो अच्छा समझे, उसके सब अच्छे गाने हैं।
1: चलिए ठीक है, हम सुनवाते हैं ये गीत।

0: ये लास्ट कमेंट हमारे पास आया है प्रवीण चौहान का, लेकिन अक्सर आप अपना पता नहीं लिखते। आप कहते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम महीनों बात नहीं करते पर जब भी करते हैं ऐसा लगता है जैसे कल ही मिले थे। सच्ची दोस्ती में दूरियाँ मायने नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण चौहान जी। और देखते हैं कि हमारे आज के ये लास्ट कॉलर कौन है।
1: हेलो
0: जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम टॉपिक बेस्ड रहता है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है? तो डॉक्टर साहब, हम जाएंगे कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ऐसा कोई रिश्ता जो आपके जहन में है, आपके दिल में है, लेकिन आपसे दूर है, तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए।
1: पिताजी का ही है कि जो कि वो इंस्पायर कर गए हैं, आज भी जो है उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा बराबर बनी रहती हैं।
0: जी जी और जैसा कि अभी आपके वो चल रहे हैं जी जी जी जी तो फादर जो है वो आपके जहन में रहते हैं आज भी हैं?
1: हमेशा है, यादों में रहते हैं।
0: माँ बाप तो देखिए हमारा जीवन है, वो चाहे रहे या न रहे, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, तो उनका तो हम कर्ज उतार ही नहीं सकते कभी जीवन में। और डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छी बात आपने कही। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो भी आपको इस वक्त सुन रहे हों तो वो भी इससे मुतासिर होंगे। कौन सा गीत आज आपको हम इस प्रोग्राम में सुनवा दें डॉक्टर साहब?
1: पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 102.4 FM पर। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। तो हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर स्थिति, इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार। शाम 7:00 ग्राम जगत में आप सुनेंगे कृषि पाठशाला। प्रायोजक होंगे IVRI इज्जत नगर बरेली। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। आज की बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड और साथ ही आकाशवाणी गांव में किसान के साथ। साथ ही बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल, नसीहत और लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे पूनम बहन और सुरेंद्र भैया के साथ। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। शाम 6:00 युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इसमें कुछ खास है आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। साथ ही जानकारी दी जाएगी नेशनल पोस्ट डे की। OBV आपको सुनवाएंगे साथियों का डांस बरेली डांस। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे वैभव मिश्रा के साथ। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली शीशपाल के साथ। भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे अब से कुछ ही देर में 5:05 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम अंकुर नाजमा के साथ। इसमें ज्ञान की बात होगी, बच्चों का बचत बैंक, कुल्लक, 7 महाद्वीपों की यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और साथ में हमारे आज के संगीतकार निदा फाजली। बच्चों के मुख से क्या आप जानते हैं, अमेजन के घने जंगल, बालगीत, सवाल हमारे, जवाब आपके। कल प्रातः 9:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आपका पत्र मिला, जहां श्रोताओं आप सुन सकेंगे कल सुबह 11:00। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र यादव का। आपकी पसंद आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:00। साथ ही सबरंग आप सुन सकेंगे कल सुबह

11 बजे गजल कव्वाली लोकगीत का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे अपराह्न 2 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:15 पर, दोपहर में 2:30 पर और रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एफएम रेनबो को आप सुनेंगे कल आप दोपहर में 12 बजे। कल शाम 4 बजे आप सुनेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कल शाम 5:45 पर एक मुलाकात श्री राजेश कुमार शर्मा से बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जनमंच, विषय रहेगा समाज में संस्कारों का मूल, प्रतिभागी होंगे राजकुमार और अनुष्का। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कानूनी सलाह, विषय रहेगा बैनामा कराते समय ध्यान रखने योग बातें, जानकारी देंगे श्री यशेंद्र सिंह। युवाणी का समय रहेगा कल शाम 6 बजे, आप सुनेंगे कुछ खास है आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, साथी होगी ओबी और फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, इसमें चर्चा रहेगी उर्दू शिक्षा आधुनिकीकरण, साथी होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोक मंजरी। मनभावन का समय रहेगा कल शाम 5:30 पर, 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या और रात्रि 8 बजे का समय रहेगा लखनऊ के प्रसारण का। तो श्रोताओं ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारी आज की सभा के शेषो कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब आनंद लेते हैं भजन संध्या का, ये भजन अनुप जलोटा के स्वर में।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, ये भजन है कैलाश अनुज के स्वर में।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: शुदा 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए सुनते हैं अनुप जलोटा के स्वर में ये प्यारा सा भजन।

0: पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये भजन कैलाश अनुज के स्वर में।

0: जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या 104 FM पर। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104 FM पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली शीशपाल के साथ।
1: कार्यक्रम हेलो बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त शीशपाल, और कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो बरेली।
2: हाँ भैया नमस्कार।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: योगेश जांगड़े जी, कार्यक्रम हेलो बरेली में आपका बहुत स्वागत है और बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं?
2: हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है भैया।
1: तो अभी खेती में क्या लगाया है?
2: धान लगाए हैं और अभी धान निकलने शुरू हुए हैं, अभी तो लगभग 1.5 महीने लगेगा कटाई में।
1: अच्छा, तो धान कैसे हुए इस बार?
2: फसल तो अच्छा है भैया, लेकिन बारिश की काफी कमी हो गई है इस बार हमारे यहाँ बेमेतरा में।
1: अच्छा
2: जी,
1: इधर तो बारिश बहुत हुई, उधर कम हुई होगी आपकी तरफ।
2: जी।
1: तो योगेश जांगड़े जी बताइए फिर, आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको, कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है भैया, आपका जो टॉपिक वाला जो प्रोग्राम आता है शाम को 4 बजे, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है
1: जी।
2: उसमें नए नए विषयों पर बातें करना, मतलब अपने आप का भी थोड़ा सा आत्मविश्वास उसमें बढ़ता है।
1: बिल्कुल। तो योगेश जांगड़े जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत।
2: अब नवरात्रि शुरू हो गया भैया, तो फिल्म करण अर्जुन से सुनवा देंगे, जय माँ काली।
1: जी जरूर, ठीक है योगेश जांगड़े जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम शुंडे शिर शंखम संदधतिं करैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषा भृतां

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, नाम
1: सर।
0: बताइए।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: वकार फरीदी जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ और परिवार में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं आकाशवाणी परिवार में।
1: मुझे
0: और
1: रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
0: क्या बात है वकार फरीदी जी, बहुत
1: वो है
0: सुंदर।
1: आकाशवाणी बरेली।
0: बहुत सुंदर। और वकार फरीदी जी बताइए, क्या चल रहा है आजकल?
1: बस सर अच्छे हैं, सुनते रहते हैं आपके प्रोग्राम।
0: कौन सा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है?
1: सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर हमें तो।
0: अच्छा, वकार फरीदी जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, नियमित आपके
1: जी सर,
0: पत्र भी हम
1: शुक्रिया।
0: तक पहुंचते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सर।
0: और आपसे बात करके बहुत दिनों बाद बात हुई आपसे, बहुत
1: हाँ
0: अच्छा
1: सर,
0: लगा
1: मेरे भी
0: बात करके
1: काफी
0: आपसे।
1: लंबे समय से आपसे
0: जी
1: बात नहीं हो पा रही थी, आज बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। शेषपाल
0: जी
1: जी बात कर रहे हैं।
0: जी तो अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत।
1: सर फिल्म का नाम है गदर टू,
0: जी
1: ये एक नई मूवी आई थी अभी
0: जी
1: और इसका
0: जी
1: गीत है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।
0: जी बहुत सुंदर गीत आपने चयन किया है, और
1: शुक्रिया सर।
0: आइए सुनते हैं आपके साथ ये गीत।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ शकील अहमद इदरीसी, हाफिजगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश।
0: जी शकील अहमद इदरीसी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं?
1: जी मैं देहरादून में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आकाशवाणी बरेली के साथ भी जुड़े रहते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, जो भी टाइम मिलता है आपके प्रोग्राम।
0: तो काम के बीच में कैसे समय निकालते हैं कार्यक्रम सुनने का?
1: जी हाँ, काम के बीच में जो है किसी तरकीब से एयरबड लगा के एयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, काम चलता।
0: अच्छा, क्या बात है, आप मतलब रेडियो भी सुनते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं।
1: जी जी जी,
0: बहुत सुंदर। और शकील अहमद इदरीसी जी, अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत कौन सा सुनवाया जाए?
1: हाँ मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है दामिनी
0: जी।
1: वो गाने के बोलो सच्चा आशिक है तू, लौट के तू आएगा, घर मेरा प्यार नशा है तू उतर जाएगा।
0: ठीक है शकील अहमद इदरीसी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो बरेली।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप बताइए, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ।
1: हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: हमको भी, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत दूर दूर से हमें कॉल करते हैं, उनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगता है ना?
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: ऐसे
1: क्योंकि आपको पता है मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने लगे हैं ना,
0: जी
1: तो हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं और साथ में स्पष्ट प्रसारण भी आता है।
0: जी जी जी तो प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, कब से सुन रहे हैं आप रेडियो?
1: रेडियो तो मैं 2000 से सुन रहा हूँ, बट 2019 तक सुना था मैंने रेडियो पर, और फिर कोरोना टाइम के बाद में फिर कुछ समय के लिए बंद हो गया था, और अभी 2026 में फिर से मोबाइल ऐप पर जुड़ा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आकाशवाणी बरेली को कब से सुन रहे हैं?
1: आकाशवाणी बरेली को 2026 से ही सुनने लगा हूँ।
0: अच्छा, तो हमारे नए श्रोता हैं आप।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए, आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है?
1: प्रोग्राम तो जैसे कि बात आपकी गीत हुए, और ये आपकी बात आकाशवाणी के साथ ऐसे कार्यक्रम होते हैं फोन इन प्रोग्राम,
0: जी जी जी
1: इनमें काफी अच्छा होता है, और सभी श्रोता की बातें भी सुनने को मिलती है और रोचक जानकारियां भी मिलती है।
0: तो इससे पहले कभी हेलो बरेली में फोन लगा आपका?
1: हाँ लगा है
0: अच्छा, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि हमारे नए नए श्रोता भी हमको, हमसे जुड़े हुए हैं और फोन भी कर रहे हैं हमको।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: अब बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है अवतार, और गाने के बोले चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है, और
1: जी
0: आइए सुनते हैं आपके साथ।

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं अनोखे लाल मौर्य बोल रहा हूँ, खट्टा चांद का पुराना सर बरेली सर।
0: अनोखे लाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे सर।
0: बस बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है अनोखे लाल जी आजकल?
1: अभी तो नारियल चल रहा है सर,
0: अच्छा, तो
1: नवरात्र चल रहे हैं साहब,
0: इसके बाद क्या करेंगे फिर?
1: इसके बाद गुड़ चलेगा सर,
0: तो गुड़ कब से चलाएंगे?
1: गुड़ परसों से चलाएंगे,
0: परसों से।
1: 12 तारीख से।
0: अच्छा, तो ऐसे कोई विशेष बात कि मतलब 12 तारीख से?
1: ऐसा है, ये नवरात्रि हो जाते हैं तो हम नया काम तो नवरात्रों में करते हैं ना।
0: अच्छा, नया काम आप नवरात्रों से शुरू करते हैं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम अहलो बरेली शीशपाल के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी वैभव के साथ। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की।

श्रोताओं, कहते हैं चेहरे पर मुस्कान हो ये जरूरी तो नहीं कि दिल में कोई गम ना हो। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, जरूरी नहीं कि हर दर्द का कोई लफ्ज हो। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त वैभव। देखा जाए तो हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, हम अपने मोबाइल की बैटरी कितनी है इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, गाड़ी की सर्विस कब करानी है ये भी याद रखते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी हम हर दिन वक्त निकालते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने मन की, अपने भावनाओं की, तो अक्सर हम खुद को ही सबसे आखिर में रखते हैं। कभी किसी से कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि अंदर ही अंदर ना जाने कितनी बातें चल रही होती हैं। कभी काम का दबाव होता है तो कभी भविष्य की चिंता होती है, कभी रिश्तों की उलझन होती है तो कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के मन का उदास हो जाना होता है, और फिर हम खुद से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सब ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ठीक होने के लिए हमें खुद को थोड़ा वक्त देना पड़ता है, किसी अपने से बात करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांगनी पड़ती है। तो आइए आज की इस बातचीत की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। आखिरी बार आपने किसी से पूछा था कि आप कैसे हैं, ये तो आपको याद होगा, लेकिन आखिरी बार आपने खुद से कब ये पूछा था कि आप कैसे हैं या फिर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, सोचिएगा जरूर। श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं कि आज है 10 अक्टूबर और आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। श्रोताओं, अक्सर हम अपने शरीर के हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, हम अपने दिल की चिंता करते हैं, हम अपनी लीवर की चिंता करते हैं, हम अपनी किडनी की चिंता करते हैं और शायद हम अपनी आंखों की, हमारे कान हो गए, हमारे चेहरे की चिंता करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इन सबको चलाने वाला जो हमारा दिमाग है, क्या उसकी कभी हमने चिंता शायद इतने ध्यान से करी? हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने शायद कहा होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हम चिंता तो करते हैं, लेकिन श्रोताओं, जितना और अंगों को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उतने हमारे जो दिमाग है उसकी भी जरूरत होती है। वैसे अगर देखा जाए तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर इसका अभिप्राय है वो कुछ और निकाल लिया जाता है, कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं जाता है कि मेंटल हेल्थ कैसी है। अक्सर कोई हमारे पास आकर ये कहता भी है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग में कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, तो शायद हम ये कहकर टाल देते हैं कि अरे तुम्हारा ऐसा ही कुछ मन हो रहा होगा, कुछ इधर उधर घूम लो, कुछ ऐसे कर लो। लेकिन श्रोताओं, ये दिवस हमें बताता है कि ये कितनी गंभीर बात है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लोगों को मानसिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये समझाना है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। जरा सोचिए, अगर हमें बुखार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर शरीर में दर्द हो तो उसका इलाज कराते हैं, लेकिन जब मन परेशान हो, लगातार बेचैनी महसूस हो, नींद ना आए या हर छोटी बात बोझ लगने लगे तो हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार तो हम दूसरों की परेशानी सुनकर कह भी देते हैं, अरे इतना मत सोचो, सबके साथ होता है। लेकिन दोस्तों,

हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो बात एक व्यक्ति के लिए छोटी हो सकती है, वही दूसरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए किसी की परेशानी को छोटा समझने के बजाय उसकी बात सुनना ज्यादा जरूरी होता है। और याद रखिए, परेशान होना कमजोरी नहीं होती और मदद मांगना हार भी नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। समय पर सहयोग, सही जानकारी और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना भी बहुत अच्छा कदम होता है। अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा श्रोता ये सोचेंगे कि अरे हमारे को कोई टेंशन भी है डिप्रेशन में तो कौन मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा। मैंने फिर बोला ना, अक्सर लोग मानसिक रोग को हमेशा से ही कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वो समझते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर संतुलन खराब हो गया है तभी उसको वहां जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है श्रोताओं। हम कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, तो इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हो सकती है। देखो, दिन भर की व्यस्तता के बीच थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। सबसे बड़ी बात है श्रोताओं, पर्याप्त नींद लीजिए। हाँ, आपको अक्सर लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नींद को त्यागो, तो आप इस बात को समझिए, नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन सोना है, और शायद पूरे दिन सोना संभव भी नहीं है। आप ऐसा तो बड़ा मुश्किल ही है कि पूरे दिन कोई सो पाए, लेकिन जो आपके शरीर के अनुसार जो पर्याप्त नींद है, चाहे वो 6 घंटा हो या 8 घंटा हो, उसे जरूर लीजिए। नियमित शारीरिक गतिविधि जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों से जुड़कर रहिए। अगर मन में कोई बात है तो उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा कीजिए। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम मत आंकिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दोस्त ने गाड़ी खरीद ली, दोस्त ने बंगला बना लिया, घर ले लिया, इसको देखकर ही हम टेंशन में आ जाते हैं। श्रोताओं, आप अपनी जिंदगी में शायद कुछ ऐसा आपके पास भी हो जो उसके पास नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमें अक्सर लोगों की खुशियां ही दिखाई देती हैं, उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन उनके संघर्ष नहीं दिखाई देते। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने की बजाय अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानिए। और अगर आप लगातार उदासी, घबराहट, बेचैनी या रोजमर्रा के कामों में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच मत कीजिए। दोस्तों, एक बात और, हम सब चाहते हैं कि जब हम परेशान हों तो कोई हमें समझे, कोई बिना टोके हमारी बात सुने, कोई हमें ये महसूस कराए कि हम अकेले नहीं हैं। तो क्यों ना हम भी किसी के लिए वही इंसान बने। हो सकता है आपके पास कुछ मिनट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखते हो, तो काफी समय से वो अपनी बात आपके कहने के लिए आपको तलाश रहो, लेकिन शायद उसे मौका ना मिल रहा हो। तो कभी कभी किसी को सलाह देने से ज्यादा जरूरी है उसकी बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि आजकल लोग देखा जाए तो सलाह देने में तो दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन सामने वाली बात को ध्यान से सुनना भी नहीं चाहते। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, हम अपने मन की सेहत का ध्यान रखेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी समस्याओं को शर्म या मजाक का विषय नहीं बनाएंगे। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कहते हैं ना, हर दिन मजबूत दिखना जरूरी नहीं है, कभी थक जाना भी इंसानी है। अपने मन को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी भी जिंदगी की कहानी है। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, अपनों से जुड़े रहिए और मन की आवाज को सुनते रहिए। और सबसे बड़े बात है, कभी भी दुख हो, कभी भी परेशानी हो, टेंशन लगे, तो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए। तो चलिए, मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा रहा हूँ, फिर मिलते हैं इस गीत के बाद कार्यक्रम युवाणी में। कहीं मत जाइएगा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार किसी को अपने हाथों से चिट्ठी कब लिखी थी? शायद हमारे जेनजी साथियों ने या फिर जो जेन अल्फा जनरेशन है, शायद उनने तो देखा भी नहीं होगा। जो हमसे पहले जनरेशन है, शायद उन्होंने चिट्ठी शायद लिखी हो, और वो चिट्ठी जिसमें सिर्फ शब्द नहीं होते थे बल्कि भावनाएं होती थी, किसी का इंतजार होता था और दिल की वो बातें होती थी जिन्हें शायद फोन पर कह पाना भी आसान नहीं होता था। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉल है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसानों से हम कुछ ही सेकंड में बात कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर की कल्पना कीजिए जब किसी अपने की खबर पाने के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। घर के दरवाजे पर डाकिये की साइकिल घंटी सुनाई देती थी तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, मन में बस

एक ही सवाल उठता था, आज किसका खत आया होगा। और दोस्तों, इसी खत, इसी संदेश और इसी भरोसे की दुनिया से जुड़ा है आज का हमारा खास दिन। 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। यह दिन भारतीय डाक सेवा के योगदान को याद करने का अवसर है। भारतीय डाक व्यवस्था देश के दूर दराज के इलाकों तक लोगों को जोड़ने, पत्रों और पार्सलों को पहुंचाने तथा कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा का इतिहास भी बेहद ही दिलचस्प है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, इसकी पहुंच। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ कहीं ऊंचे पहाड़ हो, कहीं रेगिस्तान हो, कहीं जंगल हो या कहीं छोटे छोटे गाँव हो, वहां भी डाक सेवा लोगों को जोड़ने का काम करती है। डाकघर केवल चिट्ठियां भेजने की जगह नहीं होती, बल्कि कई क्षेत्रों में बचत योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का भी महत्वपूर्ण साधन है। अब जरा सोचिए, एक डाकिया रोज कितने लोगों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चलता है। किसी के लिए नौकरी का नियुक्ति पत्र, किसी के लिए परीक्षा से जुड़ा दस्तावेज, किसी के लिए अपनों की चिट्ठी और किसी के लिए दूर बैठे परिवार से आया कोई जरूरी संदेश। हर लिफाफे के भीतर एक अलग कहानी होती है और उन कहानियों को सही जगह पहुंचाने में डाक विभाग के कर्मचारी की अहम भूमिका होती है। बदलते समय में भले ही चिट्ठियां लिखने का चलन कम हो गया हो, लेकिन डाक सेवा की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर जरूरी दस्तावेजों और पार्सल की डिलीवरी तक डाक व्यवस्था आधुनिक भारत की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, आज राष्ट्रीय डाक दिवस के मौके पर उन सभी डाक कर्मचारियों को सलाम है जो मौसम की परवाह किए बिना लंबी दूरियां तय कर कर भी लोगों तक उनके संदेश और जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। और हाँ, आज एक काम जरूर कीजिएगा, अपने किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार और ऐसे इंसान को फोन जरूर कीजिएगा जिससे लंबे समय से बात न हुई, और अगर मन करे तो उसे एक चिट्ठी भी लिखिए। यकीन मानिए, आज लिखे हुए कुछ शब्द किसी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान ला सकते हैं जिसकी कीमत किसी डिजिटल मैसेज में नहीं आती। और कहते ना, तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया, मगर खतों ने भावनाओं को शब्द दिया। डाकिया आज भी संदेशों का साथी है, हर चिट्ठी में किसी अपने की कहानी है।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में, और युवाणी कार्यक्रम में हर दिन आपको एक युवा से रूबरू कराते हैं। तो आज के भी इस कार्यक्रम में हम एक युवा के पास पहुंचे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे परिचय जानते हैं। तो अपने नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
5: मेरा नाम अंजलि सिंह है।
4: जी जी।
5: और मैं अभी जॉब कर रही हूँ।
4: अच्छा,
5: प्राइवेट सेक्टर में एज HR रिक्रूटर।
4: अच्छा, एज HR आप जॉब कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा जानकर अंजलि जी। जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो HR होती है उनका काम क्या रहता है। अगर बहुत से लोग ये समझते हैं कि HR का सिर्फ काम होता है इंटरव्यू लेना, लेकिन एज HR क्या क्या काम रहते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे।
5: एज HR कैंडिडेट को ग्रूम करना रहता है उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी रिज्यूम के अकॉर्डिंग, और उनको प्रिपेयर कराना रहता है कि इंटरव्यू में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बोलना है, कैजुअल बिहेव नहीं रखना है। तो उनको क्वेश्चंस प्रिपेयर कराने पड़ते हैं कि आपसे क्या पूछे जाएंगे।
4: जी जी जी।
5: क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस चीज पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं।
4: तो जैसे
5: कैसे आंसर करना है।
4: हाँ अंजलि जी, लेकिन एक चीज है, जैसे बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाते हैं पर फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का रहता है कि पढ़ने में तो बहुत तेज था लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं किया कंपनी ने। तो अब एज HR हैं, देखते हैं किस तरीके से हायरिंग होती है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इसमें।
5: कुछ लोगों में जो सिलेक्ट हो जाता है वो कई बार ना कम्युनिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं होते हैं। वो सिलेक्ट होते हैं कि उन्होंने किस तरह से आंसर्स किए होते हैं, क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है कि कोई भी उनकी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको ज्वाइन करे। तो

0: वही सारी चीजें होती है कि कंपनी उनका स्टेबिलिटी देखते हैं, तो अगर कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है बट अगर वो कैंडिडेट स्टेबल है लॉन्ग टर्म
1: जी
0: बेसिस पे
1: जी
0: आंसर कर रहा है कि ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उस केसेस में वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सारी चीजों को साइड में रखे। अगर बात करें कि कम्युनिकेशन अच्छे है कि वो एलिजिबल भी है बट फिर भी रिजेक्ट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी को उसके साथ में स्टेबिलिटी कंसर्न आता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ज्वाइन करके फिर उसको छोड़ देगा।
1: यानी कि क्या विजन है, क्या कंपनी के लिए कर सकते हैं वो, ये सब चीज
0: हाँ
1: भी मायने रखती हैं।
0: हाँ मेन उनका स्टेबिलिटी रहता है कि आप इस कंपनी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, अगर उनको लगता है कि वो कुछ ही टाइम में लीव कर देंगे कंपनी को, 2 या 3 महीने वर्क करते, तो कंपनी ऐसे लोगों को हायर नहीं करते हैं।
1: अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स की आपने बात करी, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पिछड़े आते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो जो युवा इस समय सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मेन जो होता है आजकल जितना महत्व हम हिंदी को देते हैं, मतलब इंग्लिश को देते हैं उतना हिंदी को भी देते हैं, पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं उसमें मेन जो रहता है वो इंग्लिश का ही रहता है, तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो किसी भी कंपनी में या फिर बीपीओ की बात ले लें वहां पर आप आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो
1: अच्छा।
0: अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले से कम्युनिकेट करना आना चाहिए।
1: हाँ, कम्युनिकेट करना तो आना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो अपना रिज्यूम है बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो मतलब बहुत चीज़ें लिख लेते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिज्यूम बहुत अच्छा बनाने से जल्दी सिलेक्शन हो जाता है क्या? मतलब लोगों को लगता है कि रंग बिरंगा बना लो, वो सब कर लो, तो
0: नहीं,
1: रिज्यूम की क्या भूमिका है, आप थोड़ा सा बताइए।
0: रंग बिरंगा रिज्यूम बनाने से नहीं होता है। रिज्यूम में बेसिकली हमारे जो भी स्किल्स है, हमने
1: जी
0: ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन में क्या क्या, हमने कहीं पे वर्क किया है, तो वो
1: हाँ
0: सारी चीजें, तो कई बार ऐसा होता है कि रिज्यूम बना लाते हैं लेकिन उनका ना जो एचआर होते हैं वो मेन देखते हैं कि ग्रामर, क्योंकि कई बार रिज्यूम में भी ना बहुत ज्यादा ग्राम का मिस्टेक्स होते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है, तो अगर आपने ठीक से नहीं बनाया है, ग्रामर मिस्टेक है, तो कंपनी उस टाइम पे भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक
1: अच्छा,
0: है। रंग
1: जी
0: बिरंगा
1: जी
0: रिज्यूम बनाने से नहीं होता है, मतलब
1: हाँ
0: उसमें सही डिटेल्स आपको फिल करना बहुत जरूरी है, अगर फ्रेशर कैंडिडेट
1: हाँ
0: भी है अपना रिज्यूम बना रहा है तो उसको अपने स्किल्स प्रॉपर अच्छे से हाईलाइट करनी होती है,
1: जी
0: एंड मेन जो होता है कि रिज्यूम में भी ग्रामर नहीं होनी चाहिए।
1: मतलब वही तो है, बहुत से लोग रिज्यूम पे तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं उनका रह जाता है। तो चलिए, बहुत सारी
0: हाँ
1: बात हो गई, एक चलते चलते हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे। बहुत से लोग एचआर भी बनना चाहते हैं, खासतौर से महिलाओं में हमने देखा इस चीज़ का बहुत क्रेज होता है, वो एचआर एमबीए भी करती
0: हाँ
1: हैं तो एचआर में करती हैं। आपको क्या लगता है, आप एक एचआर हो, हम बिल्कुल आपसे सच्चाई जानना चाहेंगे, क्या एचआर के फील्ड में स्कोप है, क्या अच्छी सैलरी कमाई जा सकती है, मतलब आपको क्या लगता है, या सिर्फ मतलब सुकून के लिए लोग कर लेते हैं अक्सर कि एचआर है ज़्यादा, लेकिन काम तो उसमें भी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं?
0: नहीं, एचआर में बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत बड़े लेवल पे भी स्कोप है, पर उसके लिए आपको अच्छी जगह से एमबीए करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फीमेल्स के लिए एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, मतलब एचआर रिक्रूटर ले लो या फिर एग्जीक्यूटिव ले लो, अगर
1: जी
0: उनको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो वो उसके लिए
1: जी
0: अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वर्क
1: जी
0: फ्रॉम होम की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, एंड बहुत
1: हाँ
0: सारी फील्ड है, यूके हो गया, आईटी रिक्रूटर हो गया,
1: हाँ
0: एंड नॉर्मल हो गया, तो बहुत सारी
1: हाँ
0: फील्ड है, तो फीमेल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है अगर
1: अरे
0: उनको
1: वाह,
0: वर्क फ्रॉम होम
1: अरे
0: चाहिए तो।
1: वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगे आप, आज आपको लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग।
0: बस मतलब जो भी फीमेल्स हैं वो अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दें
1: जी
0: और ज्यादा मतलब कोशिश करें कि खुद के ऊपर इंडिपेंडेंस रहे, मतलब किसी और के ऊपर इंडिपेंडेंस होने से अच्छा है खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहे फाइनेंशियली।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे कही है, क्योंकि महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि हम इंडिपेंडेंट होके क्या ही कर लेंगे, और कहीं ना कहीं शादी हो जाए, उनको ये दिमाग में रहता ना कि शादी हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, लेकिन एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, जो चीज़ आपने कही है ना जी। तो आपने समय दिया अंजलि सिंह लोधी जी, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: जी दोस्तों।

करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो भी आपको जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे यानी कि वैभव को अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नयाब लाने के वादे के साथ दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी वैभव के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी। पूनम बहन और सुरेंद्र पाल के साथ प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज कल जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: गाँव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र
5: और आपकी बहन पूनम की
4: राम राम।
5: और कैसे हालचाल है भैया आपके?
4: पूनम बहन देखो, हमारे हालचाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम सुनाओ तुम्हारे का हालचाल है?
5: भैया हमारे हालचाल भी बिल्कुल सही है, धान उन हमारे कट के घरे आ चुके हैं, तो अब हमारे खेत कतई खाली हो चुके हैं।
4: पूनम बहन देखो, तुम्हारे धान तो कट गए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ किसान भैया बहनन के धान जो अभी हमने देखे पानी है।
5: हाँ भैया, बहुत सी जगह पे तो पानी हो कि वो अभी तक लेकर ना पाओ
4: पानी, लेकर वो नंबर आओ तो पूनम महन देख रही हूँ, कल परसों फिर बरसात होगी।
5: हाँ, फिर बरसात होगी भी,
4: तो धीरे धीरे जो बरसात हो रही है ना, अभी धान की फसल में नुकसान ज्यादा दे रही है।
5: हाँ भैया, हम तो अपने भैया बहनों से जय कहेंगे कि जैसे किनों के खेत में अगर पानी है तो वे कोशिश करें कि किसी भी तरीका से अपने धान जल्दी से जल्दी निकाल।
4: बहुत अच्छी बात कही आपने, कैसे करे कोशिश करके धान जल्दी से।
5: हाँ भैया,
4: निकाल पूरा मैंने देखो, बातचीत अपने भैया बहन से करेंगे, लेकिन जो हम देख रहे हैं थैला में का धरो हुआ तुम्हारे?
5: अरे भैया जहाँ में बहुत चीजें धरी हुई हैं, बहुत सी जानकारी रखी हुई है,
4: तो एक जानकारी निकाल ले, जो घर के कार्यक्रम की शुरू में परंपरा रहती है ना।
5: हाँ।
4: सवाल पूछने की।
5: हाँ, हाँ,
4: हमारे ये किसान भैया बहन है उनके दिमाग के मंथन के लिए, तो बताओ पूरा महन कहा है तुम्हारे थैला में?
5: भैया बहनों, आज को सवाल है, चने की बुवाई का उचित समय क्या है? हमें उम्मीद है कि आप भी जा सवाल को जवाब ढूंढ के रखोगे, लेकिन हम भी मिलान करावेंगे कार्यक्रम के आखिर में।
4: तो जब तक भैया आप हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो और सवाल पर मंथन करो। पूनम बहन अब बातचीत करते अपने किसान भैया बहन से किसान क्रेडिट कार्ड की, पता पूनम बहन का है जो?
5: जो भैया हमने जा सुनी है कि हमारे भैया बहनों को जहाँ पे थोड़ा बहुत रुपया मिल जाता है, अगर जो बनो वो हो तो वो उनको,
4: जो हमारे किसान भैया बहन खेती बाड़ी कर रहे हैं।
5: हाँ।
4: जिनके पास खेती की जमीन है वे अपने बैंक में जाएं, खेती बाड़ी की लागत के लिए सरकार ने जो सुविधा दे दी है कि वे अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और वह पैसा से अपनी खेती बाड़ी

0: में लगाए सकते।
1: हाँ भैया, और जहाँ में ब्याज कम जातु हो गया।
0: हाँ ब्याज बहन बहुत कम हो जाओ, मतलब जय है कि सरकार ने जो हमारे किसान भैया बहन पहले जो खेती करते, पैसा ना आए तो भराई ना है रही है, पैसा ना आए तो बुबाई ना है रही है, पैसा ना आए तो खाद ना आ रही है, पैसा ना आए तो जुताई ना हो रही है, महाजन से पैसा लेने पड़ते ब्याज पर, वो महीना के पूर्व बहन। अब तो साल को बहुत कम ब्याज जाता है। हमारे किसान भैया बहन जो उनकी नजदीक में जो बैंक है उन बैंक में जाए और उन बैंक में जाकर अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा ले तो जैसे जरूर न लाभ मिले और उनकी खेती बाड़ी जो है अच्छी हुई।
1: हाँ भैया,
0: और पूनम बहन देखो आज दिन है शनिवार।
1: हाँ भैया, वो तो है शनिवार को दिन, लेकिन क्या सोच रहे हो तुम शनिवार बाद दिन कहाँ जान की सोच रहे हो?
0: तो हम तो जा कह रहे हैं चलो हमारे किसान भैया बहन की जो बातचीत है खेती कैसे कर रहे हैं कैसे ना कर रहे हैं उनकी गांव से जानकारी लाएंगे अपने और भैया सुनवा दे रहा।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलो चलते पूनम बहन गाँव की ओर।

0: किसान साथियों नमस्कार। आज छह संकेत कार्यक्रम के अंतर्गत किसान वाड़ी कार्यक्रम लेकर गांव में किसानों के साथ आकाशवाणी बरेली से निकलकर लाल फाटक पुल पार करते हुए सिटी स्टेशन के रास्ते पहुंचे हैं झुमका चौराहा। और झुमका चौराहे से लगभग 5 किलोमीटर लखनऊ रोड पर चलकर लखनऊ रोड से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं गांव मोहम्मदपुर ठाकुरान, जो ब्लॉक भोजीपुरा तहसील व जिला बरेली को गांव है। जैसे ही हमने गांव में प्रवेश करो तो भैया साफ सफाई अच्छी है, गांव में बिजली की व्यवस्था भी है, स्कूल भी है और खरंजा भी है और सीसी भी है, मकानात काफी अच्छी है। हम देख रहे हैं इन चौपार में कुछ किसान भैया बन बैठे हैं, अब इनसे जानेंगे इनकी खेती बाड़ी के हाल, किस तरीके से गांव में भैया रह रहे हैं और का का काम करते हैं गांव में रह के, कैसे पशुपालन करते हैं, किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। तो अब चलते हैं चौपार की ओर। किसान भाइयों राम राम।
1: सच्चा आपको क्या नाम है?
2: हमारा नाम परमेश्वरी दयाल।
1: आप जय गांव में रहते हो?
2: हाँ, जय गांव में।
1: उम्र कितनी हुई आपकी?
2: हमारी उम्र होगी करीब 72 साल है।
1: स्वास्थ्य तो आपको अच्छा लग रहा है,
2: हाँ।
1: क्या कारण है आपको?
2: अरे हम तो रात साइकिल फाइकिल चलाते रहते हैं, थोड़े बहुत चल फिरते रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य है।
1: खानो पानो कुछ कारण है?
2: हाँ, खानो पान में हमको शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, बिल्कुल
1: शुद्ध शाकाहारी लोग। पहले का खाओ जाओ तो आज का खाओ जाता का अंतर है?
2: पहले तो मोटे अनाज खाए जाते और जे साग सब्जी ज्यादा खाई जाती।
1: मोटो अनाज ना ही पाए?
2: मोटो अनाज तो मिली ना पारो, सब ना
1: करो। गेहूं और धान?
2: गेहूं धान और चावल बस गन्ना।
1: बात करें 1960 की, 1960 में खेती बाड़ी कैसी होती?
2: 1960 में साहब सब पूरी खेती बैलन पे आधारित थी।
1: खूब चलाए?
2: खूब चलाए हम तो, खूब हाथ से सी भरते गेहूं की
1: सी,
2: हाथ से भरते।
1: अच्छा रेट चलाओ ना आपने?
2: हाँ रेट चलो, हमारे गाँव में रेट कम है, हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था ही।
1: अच्छा नहर ही?
2: हाँ नहर ही हमारे यहाँ।
1: सिंचाई की इंजन वगैरह तो होंगे ना?
2: हाँ बहुत कम है, और ट्यूबवेल भी ना है हमारे गांव में,
1: केवल वही नहर की
2: व्यवस्था ही। और क्या कहते हैं जो बरसात के पानी से डगला वगैरह भेड़ी इनसे खेती करते हैं।
1: डगला और भेड़ी का चीज होती है?
2: जो पानी गहरे में जो उठा के दो आदमी उठाते है, उसमें एक वो डगला हो तो बागो बनू वो बांस को, उसमें रस्सी बांध ली, एक जन उधर से गहर तो एक उधर से नीचे में उठा के ऊपर से उससे सिंचाई करते।
1: अच्छा बारिश से सिंचाई करते और कोई साधन ना हो?
2: और कोई साधन?
1: कौन कौन सी फसलें होती है उस समय?
2: उस समय तो सब फसलें होती है, यहाँ पर बाजरा मक्का ज्यादा होती,
1: अर्रा होती,
2: अर्रा उरद
1: होती,
2: अर्रा खूब होती,
1: क्योंकि हम छोटे छोटे तो हम देखते हैं
2: अर्रा। उसमें क्या कहते हैं ये ज्वार और अर्रा उस समय देते, तो ज्वार कट जाती तो अर्रा बाद में पकती सबसे, उसमें पहले शुरू में मक्का डाल देते थोड़ी बहुत, तो तीन तीन फसलें उसमें हो जाती है, उर्दू हो जाते फिर बाद में अर्रे में उर्द पौड़ जाते तो बाहू में उर्दू हो जाते।
1: यानी कि पहले वो आदमी की बात करें तो एक संग तीन तीन चार चार फसलें उगा लेते, मेहनत बहुत ही,
2: मेहनत तो ज्यादा
1: ही, क्योंकि पहले का जुताई करना,
2: मक्का की दो दो नराई लगाने पड़ती है, एक खुदाई भी लगाते तब मक्का हो पाती।
1: अब कौन कौन सी फसलें हैं?
2: अब तो धान और गेहूं और गन्ना, बस तीन मुख्य फसलें रहेगी,
1: तीन मुख्य फसलें रहेगी। तो अभी जो बरसात हुई है?
2: हाँ इस बरसात में तो हमारे यहाँ तो काफी नुकसान हुआ,
1: काफी नुकसान,
2: हाँ गन्ना गिर गए और जो धान तैयार फसल ही बहुत गिर गई, क्या कहते हैं उसमें पानी में अभी कटियो ना पा रहे हैं बहुत से खेत, तो
1: धान अभी कटियो ना पा रहे
2: हैं, ना कट पा रहे हैं पानी की वजह से, पानी भर हुआ।

0: सूखा है वो तही घटेंगे,
1: तही घटेंगे और साहब जो रह जाए वो भाई मिल पावे, ना तो बाजी बाजी जो पानी ना सूखे तो सड़ भी जाएंगे वहाँ में।
0: तो अब जैसे जो धान कट गए हैं जिनके, वहाँ में अब कौन सी फसल की तैयारी करी जाएगी?
1: अब फसल में या तो गन्ना बोएंगे जो अक्टूबर वालों गन्ना, अगर जब तक ऊंट आ जाती है तो, और उसके सह फसल में उसके साथ ये लाई या लाटा वगैरह,
0: यानी सह फसलें भी जाते
1: हैं। हाँ, सह फसल करते हैं हम लोग,
0: तो गन्ना और
1: लाटा। हाँ,
0: तो जो सह फसली की तैयारी करी जाएगी वह कैसे करी जाएगी?
1: सह फसले की अब उठ आवेगी तो जमीन जुतवा के उसके ताई तैयार करेंगे और गन्ना काट के उसमें गन्ना बोएंगे और क्या कहते हैं लाई बोएंगे, और थोड़ी जो रासायनिक खाद एनपीके वगैरह उसमें जरूर लगाने पड़ेगी।
0: तो देसी खाद पड़ती है ना पड़ती है?
1: देसी खाद साहब बहुत कम पड़ती है क्योंकि जानवर ही बहुत कम हुए गए, पालिए ना रहे लोग बाग।
0: प्रदेश की और देश की सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजना है,
1: योजना तो चला रही है।
0: योजना को लाभ मिल लो, आप
1: लाभ तो मिल लो है,
0: योजना को लाभ मिल लो।
1: अब ये कह दे क्या कहते हैं लोन दे रही है सरकार जानवर पालन के लिए, अब जो कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं तो वे तो पाल रहे हैं, और कुछ मेहनत ना करना चाह रहे हैं आज के लोग बच्चा लोग तो नाइयों पाल रहे हैं। हमारे गांव में तो जानवर बहुत ही ज्यादा संख्या में कम है।
0: किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको ना?
1: हाँ, मिल रही
0: है। 2000 रुपए खाते में आ जाता है, 3 महीना बाद तो 4 महीना,
1: 4 महीना बाद,
0: 4 महीना में 2000 रुपए खाते में आ जाता है। क्या करते हो पैसा को?
1: बाबू जो दवा ववा ले लेते हैं और अपने कहीं आन जान के उसमें खर्च कर लेते हैं, और फसल पे जब आते हैं तो बीज और थोड़ी बहुत रासायनिक खाद,
0: यानी कि वो पैसा जो आता है वो खेती बाड़ी में,
1: खेती में कामयाब जाता है, टाइम पे मिल जाते हैं तो उससे सहूलियत हो गई है,
0: बहुत सहूलियत है,
1: बहुत सहूलियत।
0: आज रेडियो पर आपको और हमें बहुत से किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए?
1: उनको यही कहने चाहेंगे सरकार के जो योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, उनसे जागरूक होकर और खेती में जो रासायनिक खाद हैं इनके प्रयोग कम करने के बाद में उसके साथ साथ मतलब हरी कंपोस्ट खाद वगैरह जानवर पालें और सन ढेचा की हरी खाद तैयार,
0: मतलब सरकार की योजना को लाभ लें और खेती बाड़ी में रासायनिक खाद कम लगा।
1: हाँ,
0: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया नाम कहा है आपको?
2: हमारा नाम है रामेश्वर दयाल गंगवार।
0: भैया बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र कितनी हुई?
2: उम्र भैया हमारी 47 साल है।
0: 47 साल की उम्र है। अब आपका काम करते हैं?
2: बंद गोभी की सब्जी और फूल गोभी की सब्जी करते हैं हम ज्यादातर।
0: फूल गोभी जो आपकी लगी हुई है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं?
2: खेत की तैयारी की बात करें तो भैया खेत की तैयारी में लग जाते टाइम, इसकी जुताई करी, फिर भैया डाली हमने इसमें देसी खाद, जो जानवर को गोबर जो होता है हम लोग इकट्ठो करते रहते हैं घूरन में, और फिर वो सड़ता रहता है 1 साल तक, और घर के भी झाड़ू पोछा जो करते हैं उसकी गंदगी वगैरह होती है तो सब उसी में डालते रहते हैं, तो वो 2 साल में खाद बन जाती है देसी खाद, फिर भैया जुताई के बाद वो देसी खाद इसमें डालते हैं, फिर जुताई करवाते हैं खेत की, जिससे वो खाद जो है मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी हो जाए, और उसके बाद फिर भैया क्यारी वगैरह बनाते हैं और पौध की देखभाल करनी पड़ती है, पौध डालते हैं, पंतनगर से जो है इसका बीज ले आते हैं, फूल गोभी और बंद गोभी का
0: बीज पंतनगर से लाए?
2: हाँ भैया, पंतनगर से बीज लेके आते हैं।
0: पहले पौध कैसे डाली आपने?
2: पौध भैया बीज को पहले हमने सूती कपड़ा में बीज रख के उसको पानी में भिगो दिया, उसके बाद उसको हमने 24 घंटे तक उसी पोटली में बंधे रहने दिया, उसके बाद छोटी सी क्यारी बना के और उसको मिट्टी में दबा दिया, उसके बाद उसको ढक दिया इससे ऊपर ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड ना लगे, 6-6 इंच की अगर हो जाए उसके बाद जो है रोपाई करनी शुरू कर देते हैं खेत में।
0: जब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई को खेती बाड़ी में कुछ फायदा है ना?
2: हाँ भैया पूरा फायदा है, अगर हमें पढ़ाई लिखाई ना किए होते तो कैसे रोपाई कर पाते, कैसे पौध लाते, कहाँ से बीज लेके आते, किस तरीके से पौध बनाते, किस तरीके से क्यारी बनानी होती है, फिर कितने समय बाद पानी लगाना होता है, फिर भैया इनमें दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है, अगर हम शिक्षित ना होते तो दवाइयों का छिड़काव भी नहीं करते।
0: जैसे दुकान पर गए, दुकान वाले ने अपनी पसंद से दवाई उठा के दे दी, अगर पढ़े लिखे ना हो?
2: ना भैया उतने बता देते हैं कि हमारे जो है बंद गोभी में पत्ते में कौन से कलर की बीमारी लग रही है, कौन सा कीड़ा है, तो वो उसे बताना पड़ता है, तब फिर वो देता है दवाई,
0: तब देता है।
2: अगर हम अशिक्षित होते तो वो अपने मन से दे देता।
0: कभी कभार ऐसा होता है ना वो एक्सपायर दवाई भी दे देता।
2: ना भैया तो वो एक्सपायरी हम देख के लेते हैं, एक्सपायरी भी देखते हैं और बाकी 2-4 लोगों से भी ट्राई करके तभी दवाइयाँ खरीदते हैं।
0: अच्छा, फूल गोभी के अलावा और कौन कौन सी सब्जी की खेती करते हो?
2: भैया फूल गोभी और बंद गोभी की सब्जी इस खेत में उगाते हैं, तो देख रहे हैं आप, देखो कितनी बड़ी बड़ी मेड़े हमने डाल रखी हैं, पानी लगाने के लिए नरुआ बना रखा हुआ है, तो ये मेड़ जो मोटी मोटी बनाई है मेड़ खाली रहती है भैया, तो इन मेड़ पर हमने प्याज लगा दी है,
0: हरी प्याज,
2: हरी प्याज, प्याज लगा दी है, और कुछ खेत में आप देख रहे हैं दूर साइड में उसमें लहसुन भी लगा दिया है हमने मेड़ पे, तो इसके संग संग जो है लहसुन भी हो जाता है और प्याज भी हो जाती है।
0: तो लहसुन कैसे करके लगाओ?
2: लहसुन भैया साबुत लहसुन लेते हैं और उसकी जो गंठी होती है उसकी एक एक कली को अलग अलग कर लेते हैं, फिर एक लहसुन की पुती 1-1 फीट की दूरी पे लगा देते हैं।

0: प्याज की पौध लगती है कैसे?
1: प्याज की भैया पौध लगती है।
0: जब बात करें फूल गोभी या बंद गोभी में सिंचाई की और निराई गुड़ाई की, तो जामा कैसे कैसे का काम होगा
1: भैया? सिंचाई के लिए तो देखो इंजन रखो है, बोरिंग है, जब देख ले मतलब फूल गोभी या बंद गोभी मुरझा रही है तो तुरंत उसमें सिंचाई कर देते हैं, और सिंचाई करने के बाद देखते हैं अगर कोई बीमारी लग रही है तो उसके लिए पेस्टिसाइड मेडिसिन का छिड़काव कर देते हैं।
0: अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो झामो बंद हो या हम बांस के डंडन के ऊपर आपने झाड़ू पूर दोगे, और जो बेले भी लारी तुरैया की है, करेला की, काय की नजर आ रही है
1: भैया, जब हमारी बंद गोभी और फूल गोभी जब बिक जाएगी, खेत खाली हो जाएगा, लहसुन प्याज भी खोद लेंगे, जो भैया हमारा देखो परमानेंट काम है, जब बंद गोभी और फूल गोभी खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमने जो परमानेंट बांस गाड़ के और जाल बना दो इसे ही में जो है हमारी
0: तुरैया लगा देंगे।
1: हाँ हाँ हाँ भैया, बंद गोभी जैसी हटेगी तुरंत हमारी लौकी तैयार ही जाएगी,
0: तो अलग ऊपर चढ़ जाएगी।
1: हाँ हाँ, जगह जगह भैया देखो खीरो लगाए थे हमने,
0: तो झामा के ऊपर सब
1: जो है इसकी डाल जो है उस पर पौड़ रहेगी, और फल जैसे करेला है या लौकी है या कारी तुरई है, तो ये सब नीचे लटकते रहेंगे, तो ये मिट्टी में नहीं रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे।
0: बंद गोभी की फसल आप कटाई तो आपको जो है तो जो फसल आप
1: हाँ हाँ भैया
0: तैयार
1: हो भैया, बड़ा सोच समझ के रखने पड़ते, महंगाई बहुत है आज के दौर में, तो जो है थोड़ो पैसा बच जाता है सिंचाई उचाई को, अब जैसे ही फूल गोभी बंद गोभी हटेगी तो हमारी करेला और खीरा तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ भैया, ये तैयार ही और ये तैयार हमारी हो जाएंगी 2 महीने बाद।
0: बहुत अच्छी तरीका से आप सब्जी खेती करते हो, पढ़ाई लिखाई को पूरा फायदा ले रहे हो, आपकी हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, आप उन सबका कहना चाहो?
1: किसान भाई से ये कहना चाह रहे हैं भैया, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पहले शिक्षित बनो और अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, इससे बढ़िया है प्राइवेट नौकरी करो, उससे बढ़िया है अपनो बिजनेस करो, आपके पास खेतीबाड़ी है तो खेतीबाड़ी करो, शहर में रह रहे हो तो अपना दुकान वकान चलाओ, और भैया किसान आदमी है, खेती हमारे पास भरपूर है, जिन भैया के पास जमीन है तो वे अपना ये खेती किसानी करें, बहुत आमदनी होती है इसमें। अब देखो हमारे जरा से खेत में बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर के पौधे भी हैं, और आगे आने वाले समय भैया थोड़ा बैंगन भी पौध हमारी तैयार हो रही है, तो मेड़ों पर भैया बैंगन के पेड़ भी लगा देंगे और टमाटर के पेड़ लगा देंगे, और बाकी करेला और ये सब हमारा सब तैयार हो ही रहा है।
0: कुल मिलाकर एक खेत में आप बहुत अच्छी तरीका से सब्जी की खेती कर लेते हैं, काफी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।
1: बस भैया मेहनत बहुत पड़ती है, जामे
0: तो खेती बाड़ी काम में मेहनत तो होती है,
1: रिश्तेदारी तक में ना जा पाते, कभी जो है दवा का छिड़काव करने, कभी पानी लगाने है, कभी फसल तैयार रहेगी तो उसको मार्केट में भिजवाने है, तो कोई बात नहीं भैया, बस सखोस है हम जो काम है अपने।
0: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया।
0: आपको क्या नाम?
2: मेरा नाम मान प्रताप सिंह।
0: आपकी उम्र कितनी हो?
2: मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है।
0: आपने पढ़ाई लिखाई करी?
2: हाँ, इंटर करा था मैंने पढ़ाई।
0: अच्छा, 60 साल पहले तो इंटर के बाद तो नौकरी मिल जाती है?
2: नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसमें सबसे बड़े हम ही थे, मम्मी पापा जो बुजुर्ग थे, तो काम करने के कारण जो है आगे पढ़ाई नहीं कर सके।
0: नौकरी पर भी ध्यान
2: न
0: तो
2: ना, नौकरी ध्यान नहीं दिया, 40 बीघा जमीन थी, इसे कौन करता,
0: जमीन पर ज्यादा फोकस रहो।
2: हाँ, फोकस जमीन।
0: अच्छा, पहले नौकरी पर ध्यान कम हो, खेती बाड़ी
2: ध्यान इसलिए ज्यादा था कि खेती से अपने जो है ये समझते थे कि ये हमारी भूमि है, ये हमारी वंचित ना रहे, खाली ना बचे,
0: खाली ना रहे।
2: हाँ।
0: खेती को ले ज्यादा ध्यान हो, नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान ना,
2: ध्यान नहीं था।
0: अच्छा, कहते भी पहले थे उत्तम खेती मध्य व्यापार कठिन चाकरी भीख नहीं था, नौकरी को काम जो हो सबसे कठिन,
2: नौकरी को काम देता कि पराई नौकरी है,
0: पराई
2: ये हमारा अपना काम है,
0: अपना काम
2: आज नहीं करेंगे हम तो नहीं करेंगे, और हम कहीं जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, नौकरी में छुट्टी लेनी पड़ेगी, नहीं भी मिल सकती है।
0: 60 साल की उम्र है और हमें लग रही है आप काफी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, का काम करते हैं?
2: काम हम तो देखो अब तो अपने दूध का काम कर रहे हैं, डेयरी का, बच्चे कर रहे हैं खेती बाड़ी का काम, दो बच्चे बाहर अपने जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: जिस जानवर जो बंधे सब आप ही के?
2: यहाँ आप नहीं है सब,
0: तो जिस जानवर देख रहे आप ही करते?
2: हाँ, हम ही करते हैं, दूध निकालना है, चारा खिलाना है, देख रेख करना है,
0: अकेले इतनी जानवर की देख रेख कर लेते?
2: हाँ, अकेले करते हैं, बेटा आता है शाम को, वो दूध बांटता है केवल।
0: इन्हें जैसे इस समय चारे में का चीज दी?
2: चारे में इस समय जो है ना चरी दे रहे हैं, बाटा है, एक चोकर बाटा था, गेहूं वाला बाटा, खल, ये सब मिला के मिक्स करके देते हैं।
0: कितना दूध हो जाता है?
2: दूध हमारे पास हो जाता है करीब 15-20 लीटर
0: रोजाना,
2: डेली,
0: दोनों टाइम का?
2: हाँ।
0: इस समय जानवरों के लिए का चीज है जो विशेष ध्यान रखना?
2: इस समय जो है इन्हें जौ का बाटा देना पड़ रहा है गर्मी के कारण, कि जोटे का बाटा ठंडा होता है, उसे मिलाएंगे। इस समय खल कम दे रहे हैं, गुड़ नहीं दे रहे हैं, गर्मी है, ये कुछ पशु हमारे जो आ रहे हैं, पहले वाला गुड़ तो है नहीं, अब तो मसाला वाला आ रहा है, उसे होता है नुकसान,
0: पहले सादा था। हाँ, अब मसाले वाला तो जामा का अंतर है?
2: इसमें अंतर जो है अब आदमी चाहिए क्वालिटी है, सफेद भैंस चाहिए, पहले जो गुड़ था काले रंग का होता था,
0: काले रंग का।
2: हाँ, और कच्ची राब बनती थी बिना मसाले की,
0: अब तो कुछ ऐसा है नहीं,
2: अब कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए जो है पेट को खराब करता है हमारे और आपके।
0: पहले जब सुनी जाती कि आपने भी देखे होंगे, हमारे बाबा भी

0: हमें बताते कि हम आधा आधा किलो गुड़ खा जाते हैं शाम को दूध।
1: हम तो उस समय वो कच्ची वाली जो राब आती पूरी रोटी खा जाते पेट भर के
0: राब से।
1: हाँ,
0: पहले क्या था,
1: दूध पीते थे, मट्ठा पीते थे, सत्तू खाते।
0: आपकी जो सेहत है वो घी और दूध मट्ठा।
1: हाँ, हम तो
0: सेवन करके
1: हम तो देखो खिचड़ी बनती तो हम तो अपने कटोरी में पूरा घी रख लिया और डेली तरह काट काट खा रहे हैं। उधर खा रहे हैं अपने खिचड़ी, वो खा रहे हैं घी।
0: देसी खाद की भी हम देख रहे हैं ढेर लगे हुए।
1: हाँ,
0: जमीन भी आप बता रहे हैं 40 बीघे जमीन। हाँ, है तो देसी खाद डालते
1: अपने। हाँ, डालते हैं अपने खेतों में डालते हैं।
0: काफी फायदा है देसी खाद।
1: देसी खाद जब हम डालते हैं तो समझ लो हमें जो है यूरिया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना के मुकाबले
0: देसी खाद बहुत जरूरी
1: है। बहुत जरूरी है देसी खाद। आप हर साल डालिए उसकी फसल देखिए फिर आपकी।
0: हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भाई बहन सुन रहे होंगे, आप उन सबका कहना चाहोगे?
1: ये कहना चाहूंगा जहाँ तक हो सके तो देसी खाद का उपयोग करें। अपने घरेलू अगर जगह है आपके पास तो आप जो है सब्जी वगैरह का इस्तेमाल

0: छोटी सी खाद का उपयोग करें, अपने घरेलू घर अगर जगह है आपके पास तो आप जो है सब्जी वगैरह का इस्तेमाल अपने घर पे ही करें से।
1: यानी कि जो सब्जी हम बाजार से लेके आ रहे हैं अगर हम अपने खान लायक अपने घर के आसपास अगर थोड़ी बहुत सब्जी करेंगे तो बीमारी से
0: निजात मिलेगी,
1: निजात मिलेगी, बिना दवाई की सब्जी मिलेगी। ठीक है भानु प्रताप सिंह जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, और अब हम चलते हैं उसी रास्ते आकाशवाणी बरेली की ओर। अब लो हमारी राम राम,
2: राम राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम।

0: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव में किसानों के साथ। गांव हो मोहम्मदपुर ठाकुरान, ब्लॉक भोजपुरा, तहसील बरेली, जिला बरेली को जो गांव हो, और प्रतिभागी थे परमेश्वरी दयाल, रामेश्वर दयाल और भानु प्रताप। और प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग रहो आपके भैया सुरेंद्र।
1: तो पुनः मैंने देखो जो हमारे किसान भैया बहन हमें अपने गांव बुलाना चाहता ना, तो अभी जाके लिए हमें लिख भेजा एक पत्र, और पत्र लिखने के लिए पुनः मैंने जरा पतो बता दियो अपने भैया बहन के।
0: भैया बहनों पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001।
1: पुनः मैंने देखो भैया बहन से एक बात और कहेंगे कि भैया पत्र पे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, जिससे कि हम आसानी से उनके गांव पहुंच सके।
0: हाँ भैया।
1: पूनम बहन देखो, और अब बात करते हैं कार्यक्रम में कृषि समाचार की। पहली खबर है पीएम किसान की 22वीं किस्त जल्द। कृषि मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर के आखिर तक ₹2000 की अगली किस्त आने की उम्मीद है, जिनका ई KYC पेंडिंग है वो तुरंत करा ले।
0: हाँ भैया। और एक खबर और है, धान की सरकारी खरीद शुरू। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में धान खरीद केंद्र चालू हुए गए हैं। नमी 17% से कम होना चाहिए, तब उनको पूरा MSP ₹2300 क्विंटल मिलेगा।
1: अब पूर्व में अगली खबर है, अगले 3 दिन बरेली भोजपुरा बेल्ट में हल्की बारिश के फिर से आसार। कटे हुए धान को खेत में हमारे किसान भैया न छोड़ा, फसल बीमा के लिए 72 घंटे में फोटो के साथ जरूर सूचना दे दें।
0: भैया बहनों, खाद और बीज से जुड़ी हुई सब्सिडी के बारे में भी जानकारी है। रवी सीजन के लिए DAP पर सरकार ने सब्सिडी बरकरार रखी है। बरेली जिले में सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध है, आधार कार्ड से मिलेगा।
1: तो जेते है पूनम बहन कृषि समाचार, और अब बता दियो कल के मौसम की जानकारी।
0: भैया बहनों, कल के मौसम को हाल, कल उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय हल्की धूप और कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बारिश होने की संभावना बहुत कम है। रात के समय आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और मौसम में हल्की ठंडक महसूस होगी।
1: जाते ही कल के मौसम की जानकारी, और पूनम महन अब बारी है बस सवाल के जवाब की, जो कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों से पूछो।
0: भैया बहनों, सवाल हो चने की बुवाई का उचित समय क्या है? जा सवाल को जवाब है, चने की बुवाई के लिए उचित समय है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर। अगर कोई भैया बहन जा बीच में रहियो जाए तो वे अपनी 10 नवंबर तक भी चने की बुवाई कर सकते हैं।
1: यानी कि हमारे किसान भैया बहन 10 नवंबर तक चना की बुवाई कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं ना पूनम बहन, बहुत से भैया बहन ने हमें लोकगीत सुनने की फरमाइश करी है, तो क्यों ना जो प्यारो से लोकगीत के साथ अपने भैया बहनों करा दे रहे हैं मनोरंजन।

0: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं लोकगीत, और हम उम्मीद करते हैं जो लोकगीत पसंद आए हुए वो पुनः मैंने देखो समय और ना बच हुआ कि अपने भैया बहन से और बातचीत करें, तो आज के कार्यक्रम से क्या नसीब मिलती है अपने भैया बहनों बता दो जरा।
1: भैया बहनों, खेती बाड़ी में जो काम करते हैं बाकी संग संग समय को विशेष ध्यान रखो, जिससे आपको खेती बाड़ी में ज्यादा फायदा हो
0: और अपनी आय को बढ़ावा। इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम किसान बाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र
1: और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की और इसको प्रस्तुत कर रहे थे सुरेंद्र पाल और पूनम बहन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत में कृषि पाठशाला।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनन बारे सब भैया बहन को आपके भैया सुरेंद्र
1: और आपकी बहन पूनम की
0: राम राम। तो आज हम अपने किसान भैया बहन के लेके आए हैं कृषि पाठशाला। विषय है पशुपालन क्षेत्र में पशु सखी पशु मित्र के रूप में उद्यमता के अवसर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक IVRI बरेली और पूनम बहन जो कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IVRI इज्जत नगर बरेली। तो आप वो सुन लेते हैं कृषि पाठशाला
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
3: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है कृषि पाठशाला ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप एक तरह से रेडियो पे ही स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में एक क्लास चलती है, 15 मिनट की क्लास होती है। उस 15 मिनट की क्लास में कोई ना कोई नया विषय होता है और वो आपको एक नए विषय पे जानकारी देते हैं। वो जानकारी आपके बड़े काम की होती है और आज का विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बहुत काम आने वाला है आपके लिए। विषय ये है कि पशुपालन के क्षेत्र में पशु सखी या पशु मित्र के रूप में उद्यमिता के अवसर कैसे हैं। इस पे जानकारी देने के लिए हमने किसको आमंत्रित किया है ये भी बता दें। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एनिमल रिप्रोडक्शन विभाग के IVRI बरेली में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद सर आपको भी और आपके सारे श्रोतागण को भी। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यहाँ पर एनिमल रिप्रोडक्शन डिवीजन IVRI में काम करता हूँ वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे। जैसा कि पशु सखी और पशु मित्र का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा नया है। हम लोगों ने इसको करीब आज से 3 साल 2023 से स्टार्ट किया है और इसमें जैसे ग्रामीण इलाकों के जो पढ़े लिखे लड़के या लड़कियां जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बेसिक ट्रेनिंग देते हैं और उस बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनको काफी ज्ञान हो जाता है। जैसे हम लोग उनको प्राइमरी हेल्थ केयर वैक्सीनेशन डीवर्मिंग मिनरल मिक्सचर फीडिंग हाउसिंग हाइजीनिक और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का भी ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के उपरांत उनमें काफी गुणवत्ता आ जाती है पशुओं के स्वास्थ्य को सही करने के लिए। तो फिर अपने गांव में वो वापस जब जाते हैं ट्रेनिंग के बाद तो वो वहाँ के लोकल वेटरनरी ऑफिसर्स अटैच होकर के और ये प्राइमरी हेल्थ केयर और इलाज का कार्य शुरू कर देते हैं तो जिससे उनको काफी इनकम होने लगती है।
3: हमारे किसान बहन भाई सोचते हैं कि इनकम कितनी होगी, पैसा कितना मिलेगा, तभी तो हम काम करें।
4: देखिए हम लोग जो है पशु मित्र का स्पेशली 2023 से एक एक महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी भी पोर्टल ओपन है। जो भी किसान भाई या बहन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की ट्रेनिंग करना चाहता है तो IVRI के एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर पर जाए और आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक महीने की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड हो जाए तो हम लोग उसमें उसको काफी सिखा देते हैं। फिर बाद में वो अपना कैनिस्टर और सीमेन उमेन भी हम लोग दे देते हैं। अच्छा। तो वो ले करके अपना गांव में कृत्रिम गर्भाधान करने लगे तो उससे आजकल हर गर्भाधान पर 200 से 250 किसानों को लोग चार्ज करते हैं तो ब्रीडिंग समय में अगर पर डे वो लोग 4-5 करेंगे तो ऐसे 1000 रुपया मिल जाएगा उनका, 1000 की बचत हो जाएगी। तो सीजन में कई बार 40-45 हजार रुपए की आमदनी पशु मित्र की हो सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना दूर बाइक चला सकते हैं, आपके व्यवहार कैसा है, पशुपालकों से आप बात करने की कैसी शैली है और आपकी तकनीकी दक्षता कितनी है। क्योंकि अगर गाभिन होगा तो पशुपालक फिर दोबारा आपको ही बुलाएगा और वो 10 लोग कृषि के बताएगा भी कि यहाँ फलाने फलाने से याई कराने पर रुक जाती है। तो ये रहा हमारा पशु मित्र का आमदनी का। उसी तरह हम लोग पशु सखी को भी ट्रेनिंग देते हैं जो पढ़ी लिखी है लेकिन घर के कार्य के बाद बाकी दिन क्या करें, उतना तो अब कृषि कार्य बचा नहीं है। इवन शहर की भी महिलाओं को हम लोग उसमें आमंत्रित करते हैं, उनका भी पोर्टल है। वो हमारे आए एटिक में डॉक्टर रूपसी तिवारी मैम है, उनसे मुलाकात करें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो उनको हम लोग बकरियों से रिलेटेड कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ कब उनको कीड़े की दवा देनी है, उनके बच्चों में डायरिया का क्या इलाज है, उनको मिनरल मिक्सचर कब और कितनी मात्रा में देनी है, प्रसव के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारे बेसिक ज्ञान हम लोग महिलाओं को। तो ये अपने गांव में जाती हैं तो आसपास में जो बकरी पालन है खास तौर से वो लोग मदद करती हैं। तो ये जब सर्विसेज देंगी तो कुछ न कुछ पैसा भी इनको मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा स्कीम चलाते हैं। जैसे हम लोग रॉयल खंडी गोट सीड विलेज बनाए हैं, हम लोग 100-200 बकरियां देते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। तो उन बकरियों की देखरेख में माताओं और बहनों और महिलाओं का काफी योगदान हो जाता है तो उनको देखरेख करेंगे, उनसे कुछ पैसा लेती रहेगी। तो होगा क्या कि अपने गांव में रहते हुए भी सेवाएं देकर के पैसा

0: कमाएंगी कि ये भी 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ कमाने लगेगी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बोलने लगी, जिनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा।
1: तो चुनाव कैसे करते हैं, आप कैसे चुनती हैं?
0: एक थोड़ी शैक्षणिक योग्यता हो, क्योंकि इसमें 10 पास और थोड़ा अंग्रेजी पढ़ ले, क्योंकि बहुत सारी दवाएं अंग्रेजी में आती है, उनका नाम पढ़ना होता है, उनके साइड इफेक्ट क्या है सब बताते हैं। उससे भी जो सबसे बड़ी हम लोग देखते हैं कि वो कितना उत्सुक है चीजों को सीखने में, कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। इसे युवाओं को, युवतियों को हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हम लोग सक्सेस स्टोरी भी इस बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में पशु मित्र बनाए हैं, और वो फीडबैक देते हैं कि सर हमने काफी पैसा आप कमा रहे हैं। और हम लोग कानपुर, शाहजहांपुर, इवन इस बार 2 हरियाणा के लोग आए थे, वो ट्रेनिंग लेके गए। उनका कंटिन्यूस फोन आता है कि सर आपकी ट्रेनिंग के बाद काफी मेरी प्रैक्टिस में सुधार हुआ और मैं काफी पैसा कमा रहा हूँ और मेरी समाज में इज्जत भी बढ़ी है।
1: क्या इसमें एक गांव में एक पशु मित्र रहते हैं या कई बन सके
0: है? योग्य हैं, हाँ बनाते हैं। हम साल में एक बार दो बार ट्रेनिंग देते हैं, वो हमारे कंटिन्यूस संपर्क में रहे।
1: लेटर वगैरह भी, आई कार्ड वगैरह भी देते हैं?
0: हाँ, उसके बाद हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये IVRI द्वारा प्रमाणित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन है। अच्छा। तो वो प्रमाणित रहते हैं और उनको हम लोग पूरा AI और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के भी बारे में अच्छा ज्ञान देते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर के भी बारे में देते हैं। हमारे चूंकि क्लिनिक से OPD है, वहां पर बहुत दूर दूर से किसान अपने जानवर ले आते हैं, तो उसमें भी उनका एक हफ्ते का ट्रेनिंग रहता है। तो वो जैसे वैक्सीनेशन, इंजेक्शन लगाना, घाव को साफ सुथरा करना, ये सब चीजें उनको बता दी जाती है। तो इस वजह से उनको ठीक ठाक ज्ञान हो जाता है और वो समाज में जाकर के रूरल ग्रामीण इकोनॉमी को बहुत बल देते हैं, क्योंकि पशुओं में इलाज अगर टाइम से सस्ता मिल जाए तो इससे खुशी की बात पशुपालकों को क्या हो सकता
1: है। इसमें क्या केवल पशुपालन के लिए है या खेती संबंधित का?
0: थोड़ा बहुत हम लोग लेक्चर जैसे फॉडर प्रोडक्शन, हरा चारा का उत्पादन और दूध का कैसे प्रोसेसिंग, और इसके बाद जैसे गोबर और उपले से और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, इन सब की भी ट्रेनिंग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर संपर्क करें तो इसकी ट्रेनिंग उनको वहां से मिल जाती है।
1: लेकिन अब क्या इसमें ये डेली आप लोगों को रिपोर्ट करना होता है?
0: बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग के लिए 1 महीना मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है। अच्छा। तो 1 महीना हम लोग देते ही हैं और ये उनके लिए ही फायदा है, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है उनको कि वो IVRI में एक्सपर्ट चिकित्सकों के द्वारा ट्रेंड होते हैं, तो उनको तो एक दिन मिस नहीं करते हैं। मैं देखा हूं जो भी बच्चे आते हैं वो फोन करते हैं सर आज संडे, आज भी आप आइए, आज भी हमें सिखाइए, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर उनको दोबारा इस तरह के प्रैक्टिकल करने का मौके सीधे फील्ड में ही मिलेगा और किसान अपने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने नहीं देगा आपको। तो वो करते हैं, जो बच्चे आते हैं बड़े अच्छे से 1 महीने पूरे सीखते हैं, और महिलाओं का भी है उसमें स्कोप, अगर वो चाहती हैं इतना अपने को आगे लेके आए तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, वो इसमें सहभागिता कर सकती है। और आजकल महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे तो है नहीं, कैंपस में अगर आप देखें तो 45 से 48% अब बच्चियां आ रही हैं।
1: एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कहा जा रहा है, ऐसे में पशु मित्र बनके आप न केवल अपने गांव के तमाम लोगों की पशु सखी भी है, स्त्री पुरुष दोनों, किसान बहन भाई दोनों बन सकते हैं, वो लोग सेवा कर सकते हैं और न केवल सेवा कि कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो और आज के विषय पे जो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एनिमल रिप्रोडक्शन विभाग के IVRI बरेली में, कि पशु मित्र और पशु सखी कैसे बना जा सकता है, वो क्या क्या काम करते हैं। इसमें ये हमने जानना चाहेंगे कि क्या कोई लिमिट होती है, एक साल के लिए बनाए जाते हैं, 2 साल के लिए?
0: नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है, वो सर्टिफिकेट लेके अपने गांव में या अपने जिस एरिया को चुनते हैं प्रैक्टिस करने का वहां भी जा सकते हैं। तो हाँ, तो ये क्या है, वो करते रहेंगे,
1: एक बार जो बन गया
0: हाँ
1: हमेशा के लिए,
0: हमेशा के लिए
1: एक मित्र,
0: पशु मित्र मतलब वो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का एक्सपर्ट हो जाता है। तकनीशियन लोग ही करते हैं या लोग करती हैं, डॉक्टर कम ही करता है। तो ये तो उनके लिए स्वरोजगार जैसा है और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप अपने गांव घर में रह करके अगर महीने का 20-25 हज़ार कमा रहे हैं और अपने भाई बंधु किसान कृषकों को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो इससे सुखद बात क्या हो सकती है। और उसमें गोट सखी में महिलाओं को भी हम लोग स्पेशली
1: ट्रेन, हाँ अलग अलग भी क्राइटेरिया बनाएंगे
0: कि महिलाएं जो है बड़े पशुओं को हैंडल करने में डरें।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो हम लोग बकरियों के लिए स्पेशली महिलाओं को रिक्रूट करते हैं कि वो गोट सखी बन जाएंगी, तो गांव घर जाकर के उनके प्रसव से रिलेटेड बच्चों के देख खान पान देख रेख और जो किड्स पैदा होते हैं उनमें डायरिया होता है, निमोनिया होता है, तो इनकी इलाज उलाज देती रहें। लेकिन ऐसा नहीं, अगर वो कृत्रिम गर्भाधान बड़े जानवरों में करना चाहती है तो वो भी स्वागत योग्य है, कोई रुकावट नहीं।
1: जैसे आप बरेली में हैं, पूरे देश में कई सारे संस्थान हैं, तो कहां से शुरुआत हुई ये और भी जगह पे चल?
0: पशु सखी की ट्रेनिंग लगभग हर वेटरनरी कॉलेज करवाता है।
1: अच्छा।
0: चूंकि IVRI एक केंद्र की संस्थान है तो हम लोग का ये मैंडेट है, पूरे भारतवर्ष से लोगों को लेते हैं, इवन कई बार एप्लीकेशन नेपाल से भी आ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो हमको फिर स्क्रीन करना होता है, फिर कुछ लोगों को हम चयनित करते हैं, हम लोग एक टीम चयनित करती है, उसके बाद उनको

0: प्रशिक्षण देते हैं और बहुत सारे प्रशिक्षण की स्कोप है। हम खासतौर से जो तराई बेल्ट के युवक और युवतियां हैं ऐसे ही आईवीआरआई घूमने फिरने आया करें, हम लोग का एक एटिक है और वहां जब लोगों से बात करेंगे तो आपको अपने गांव घर में रहते हुए संभावनाओं के अपार द्वार खुलेंगे। घर बैठ के कुंठित होने के बजाय आप ऐसे संस्थानों में आइए जहां आपका ज्ञान वर्धन होगा और संभावनाओं की और दरवाजे खुलेंगे।
1: अब इसमें अगर किसी को पशु मित्र या पशु सखी बनना है, बहुत सारे हमारे श्रोता इस समय सुन रहे होंगे, वो क्या करें, कैसे करें, उनको बेसिक नीड भी कोई जरूरत
0: नहीं। मैं सिर्फ आप हमारा ऑनलाइन पोर्टल है एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर का, उसमें आप जाइए खुद को रजिस्टर्ड होकर के एक महीने की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड हो जाइए।
1: एक महीने की ये जो
0: ट्रेनिंग है आपको अगर यही करना है तो एक महीने करना है। नॉर्मल प्राइमरी हेल्थ केयर है तो उसका एक हफ्ते 7 दिन 10 दिन का होता है, वो आप हमसे डायरेक्ट आकर के संपर्क कर सकते हैं या वहाँ पे हमारा एक एटिक है। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे आके आइए तो वो आपको डिटेल दे देंगे।
1: बाकी जो AI वाली है वो ऑनलाइन ही होगी?
0: नहीं सर, सब फिजिकल आना पड़ेगा। IVRI में रहने और खाने की सब व्यवस्था रहती है, अगर जो रहना चाहता रह सकता है, ऑन पेमेंट बेसिस पे खाना पीना सब व्यवस्था, पेमेंट करना होगा। बाकी हम लोग की फीस बहुत नॉमिनल, मात्र 5,000 है एक महीने की ट्रेनिंग का, जबकि और सेंटरों पर जाएंगे तो कई कई तो लाखों रुपए 40-45 हजार तक लेते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, 5,000 वही एक महीने की
0: जी जी
1: है, 5,000 रुपए पे करने।
0: हाँ,
1: उसमें रहना खाना सब है?
0: नहीं सर, रहना खाना का वो हमारा गेस्ट हाउस का जो चार्ज है वो देना है। कई बच्चे ये करते हैं कि ग्रुप में आते हैं और एक रूम ले लेते हैं एक महीने के लिए, उनको 1,500-2,000 का हो जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और पेट्रोमैक्स लेके खाना भी बना लेते हैं, तो इस तरह से वो
1: अपना ट्रेनिंग का चार्ज है, लेकिन 5,000।
0: हाँ, ट्रेनिंग का चार्ज 5,000।
1: 5,000 रुपए में केवल ट्रेनिंग दी जाती है?
0: पूरा बकायदे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं और मैनुअल देते हैं, पढ़ने लिखने की सामग्री देते हैं और हैंड होल्डिंग रहता है। ऐसा नहीं कि आप करके गए तो छूट गए, आपको बीच में लगता है सर हमको कंफ्यूजन हो रहा है, बीच में फिर आप आइए IVRI डिस्कस करिए, हम लोग उसका निदान करेंगे।
1: तो मतलब ये जो पशु मित्र बनने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को IVRI से संपर्क करना होगा, वहां पर जो ट्रेनिंग चलती है एक महीने की उसमें 5,000 फीस देनी होगी।
0: हाँ,
1: और उस फीस देने के बाद ट्रेनिंग होगी एक महीने की, फिर आप लोग
0: फ्री भी हैं, जैसे गोट सखी की ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। हाँ, वो फ्री में है, उसमें कोई पैसा नहीं देना होगा। जो उत्सुक और इच्छुक महिलाएं होंगी वो अपना आकर के सीधे IVRI मिलकर फॉर्म भर करके
1: और हम को छूट भी है इस फीस से,
0: शेड्यूल कास्ट का थोड़ा सा कम है। हाँ, और हम लोग कोशिश ये रहती है कि जो डाउन ट्रोडेन लोग हैं, जो सप्रेस्ड लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी कम मिली है, उनके चयन को हम लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
1: तो बस ये फीस का इंतजाम करना होगा हमारे किसान बहनों भाइयों को, 5,000 रूपए।
0: अगर सबसे कम फीस सिर्फ और सिर्फ IVRI की है,
1: फिर भी अगर आप चाहें 5,000 यहाँ ट्रेनिंग फीस देके एक महीने ट्रेनिंग करके आप सर्टिफिकेट लेंगे और अपने गांव जाके पशु मित्र या पशु सखी के रूप में काम करेंगे, तो न केवल जागरूकता फैलाएंगे बल्कि अपना एक स्वरोजगार, अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकेंगे।
0: आजकल गौशालाएं भी खुली है, आप गौशालाओं में जाइए, गवर्नमेंट सीधे आपको रिक्रूट कर लेगी, आप खुद की आई करके और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके आप पैसा कमाइए, और गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि पैराभेट को भी कुछ मानदेय तय किया जाए। अच्छा, तो भविष्य में हो सकता है कुछ आपको फिक्स अमाउंट भी मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, मतलब इसका भविष्य भी है, भविष्य में हो सकता है कुछ पैसे भी
0: मिलेंगे।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं आज इस कार्यक्रम से जरूर लाभान्वित होंगे और पशु मित्र या पशु सखी बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, IVRI बरेली जाकर के वहाँ विस्तृत जानकारी लें और पशु सखी या पशु मित्र बने। डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और पशु मित्र और पशु सखी बनने का एक जानकारी दिया आपने तमाम श्रोताओं को, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली।
3: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे कृषि पाठशाला, विषय हो पशुपालन क्षेत्र में पशु सखी पशु मित्र के रूप में उद्यमिता के अवसर। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक IVRI बरेली,
4: और इनसे बातचीत करी मिथिलेश श्रीवास्तव,
3: और जो कार्यक्रम के प्रायोजक थे IVRI इज्जत नगर बरेली।
4: इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया सुरेंद्र
3: और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम, राम।

0: FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 और 23 सेकंड हुए हैं। आइए अब खोए हुए व्यक्तियों संबंधित सूचना दे दें। धर्मपाल, जिनके पिता का नाम हेमराज है, जो ग्राम मल्लापुर गौटिया के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच, पतला मीडियम शरीर है, आँख काली, चेहरा लंबा है, रंग गेहुआ है, बाल भी काले हैं, जो 5/8/2026 घर से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो जयप्रकाश वर्मा उप निरीक्षक थाना इज्जत नगर जिला बरेली को सूचित कर सकते हैं। श्री सत्यवीर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम गौसगंज थाना भमौरा बरेली सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी शहजान, जिनकी उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट, रंग के हुआ, शरीर सामान, चेहरा गोल, बाल काले हैं और आंख सामान हैं, जो गुलाबी रंग का सूट और सलवार पहने हुए हैं, जो 1/9/2026 12 बजे से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो कुशल पाल सिंह थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी जिला बरेली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सस्ता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के रेहरा बाजार विकास खंड के बिलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बलरामपुर के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है। भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
1: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। उधर रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ी रद्द कर दी। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात जाम की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। यह अभियान फिट इंडिया और नशा मुक्त समाज के निर्माण की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 के आईची नागोया एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज

0: ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
3: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: विंध्याचल व उसके आसपास के मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में कुल 2,526 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 222 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन लगाए गए हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिलों में लगभग 10,000 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत 17, 18 और 19 अक्टूबर को प्रदेश के चयनित मंदिरों में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। सहारनपुर में आज एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा देवबंद में हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर उस समय हुआ जब मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर माता की ज्योत लेकर श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द।

इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, सौदे शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31:26 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर स्थिति, इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार और आपसे बातचीत कर रहे हैं मुकेश कुमार पांडे।
2: के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
4: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेडसाइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 से 10 तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे, और मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: पांडे जी, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, और हमारे श्रोता भी आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बात करेंगे समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति के विषय में, और इलाज में जो वेंटिलेटर और दूसरी जो मशीनों का इस्तेमाल आप करते हैं उनके बारे में। तो इससे पहले हमारे किसी श्रोता की कॉल आए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे आप बताते हैं या कहते हैं, या प्रीमैच्योर जिन्हें शायद कहते हैं, वो क्या होते हैं सर?
6: देखिए, जो समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे, जिनको कि प्रीमैच्योर बच्चे कहते हैं, जो 37 वीक्स से पहले पैदा हुए,
5: यानी 37 सप्ताह से पहले जो पैदा हो गए,
6: गर्भावस्था जो काल है वो 37 सप्ताह से 42 सप्ताह तक का नॉर्मल गर्भा काल है।
5: अच्छा,
6: गेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं इसको।
5: जी, जी, जी।
6: अगर उस 37 वीक से पहले बच्चा पैदा हुआ तो उसको प्रीमैच्योर बोलते हैं
5: जी।
6: और अगर 32 वीक से पहले पैदा हो गया बच्चा,
5: हाँ,
6: तो उसे बेरी प्रीटर्म बोलते हैं, और जो 32 से 37 के बीच में उसको लेट प्रीटर्म बोलते हैं।
5: अच्छा, अच्छा।
6: और 28 वीक से और पहले बहुत पैदा हो गया तो उसे वेरी वेरी प्रीमैच्योर बच्चे,
5: यानी 28 वीक से भी पहले बच्चे पैदा हो जाते
6: हैं। जी जी, 24-25 वीक्स के बच्चों का अगर प्रॉपर इलाज हो तो कई बार उनको हम लोग सर्वाइव करवा लेते हैं।
5: डॉक्टर साहब, बहुत ही जटिल परिस्थितियां आपने बता दी हैं। अच्छा, ये जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, आप बता रहे हैं कि 3-4 कैटेगरी आपने बताई हैं, तो क्या ये जरूरी है ऐसे बच्चे ऑपरेशन से ही पैदा करवाए जाते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी ऐसे बच्चों की होती है?
6: डिलीवरी दोनों तरीके से हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ऑपरेशन से भी हो सकती है। कई बार ये होता है कोई माँ को कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी आप नहीं करा पा रहे हैं, जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है माँ को, या फिर लेबर पेन शुरू हो गए, माँ का जो रप्चर है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, आपको डिलीवरी करानी ही करानी है। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ, और तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है।
5: अच्छा।
6: और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर आ रही है, या फिर बच्चे ट्रांसफर्स लाई हैं, या और कोई प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है
5: जी,
6: तो बच्चे ऑपरेशन से भी पैदा होते हैं।

0: बच्चे ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं,
1: अच्छा
0: तो कई बार फिर ऑपरेशन से पैदा होते हैं, नॉर्मल बच्चे पैदा करना ट्रिपलेट्स को मुश्किल होता है।
1: अच्छा मतलब जुड़वा बच्चे हों या दो, या दो
0: तिगड़े
1: से
0: हों
1: या तीन भी हो सकते हैं,
0: जी।
1: तो ऐसी परिस्थितियां वाकई में
0: आजकल
1: जटिल
0: खास
1: होती
0: तौर
1: हैं।
0: से जो IVF ट्रीटेड मदर्स हैं
1: जी जी
0: जिनका IVF की
1: IVF होता है।
0: इनफर्टिलिटी,
1: जी
0: हाँ,
1: जी जी
0: वहाँ पे कई बार ट्विंस भी बड़ा कॉमन है, ट्रिपलेट्स भी बड़े कॉमन है।
1: अच्छा, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं
0: जी
1: उनके विषय में आप बता रहे हैं सर।
0: जी
1: जी, अच्छा, ऐसे बच्चों में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए, एक तो जो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं हैं, वो अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं कि वो समय से पूर्व पैदा हुए
1: जी
0: और उनको वो टाइम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था जिसमें वो मेच्योर होते,
1: जी जी
0: तो उनके सारे ऑर्गन्स,
1: जी
0: अगर हम देखें तो ब्रेन है, दिल है,
1: जी
0: लंग्स हैं, इंटेस्टीन हैं, किडनीज हैं,
1: जी
0: सारे ऑर्गन प्रीमेच्योर हैं
1: ओहो, ये विकसित नहीं
0: और
1: हो पाते पूरी तरह
0: जी
1: से।
0: जी विकसित नहीं हो पाए,
1: जी
0: और जो टाइम एक्चुअली माँ के गर्भ में मिलना चाहिए था
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: टाइम नहीं मिल पाया।
1: जी जी
0: तो उस समय जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं इन्हीं सिर्फ ऑर्गन्स के इमेच्योर होने के कारण आती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बच्चे को सांस लेने में,
1: जी
0: क्योंकि बच्चा जब तक माँ के गर्भ में होता है तब तक तो अपनी सांस ले नहीं रहा होता, उसे ऑक्सीजन वगैरह सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे गैसेस के जो है ट्रांसपोर्ट है वो थ्रू प्लेसेंटा होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: माँ के थ्रू होता है।
1: जी
0: जब बच्चा पैदा हो गया तो वो अपनी सांस लेना शुरू करता है,
1: जी
0: बच्चा रोता है और सांस लेना शुरू करता है,
1: जी
0: तो उस समय अगर लंग्स मेच्योर नहीं है, कई बार लंग्स में जो परेशानी होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, या आजकल बोलते हैं उसे नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
1: अच्छा
0: तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो वजह होती है लंग्स प्रीमेच्योर होने पर, वो होती है कि सर्फेक्टेंट की कमी।
1: अच्छा
0: सर्फेक्टेंट एक पदार्थ होता है जो कि लंग्स में होता है, नॉर्मल लंग्स में, और वो जो बच्चे मेच्योर हो रहे होते हैं तो लास्ट में जब मेच्योरिटी की अवस्था आती है उस समय सर्फेक्टेंट लंग्स में बनना शुरू होता है,
1: अच्छा
0: लेकिन अगर बच्चे प्रीमेच्योर हो जाता है तो वो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन लंग्स में नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बच्चे को होती
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता लाइन पर इनकी बात
0: है।
1: सुन
0: जी
1: लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: मैं सुरेश बोल रहा हूँ रहेड़ी से।
1: सुरेश जी, अगली आवाज डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की।
0: हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार बोल रहा हूँ, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार।
2: सर ये जो बच्चों के अंदर कुछ समस्याएं देखी जाती है, हमारे एक रिलेटिव है, काफी
0: जी
2: समय हो जाता है, 2-2.5 साल का करीब बच्चा है, वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता, तो क्या इसका संबंध प्रीमैच्योर स्थिति से है या कोई और जनरल समस्या हो सकती है? वो
0: नहीं,
2: करीब वो 8.5 महीने का वो पैदा हुआ था।
0: नहीं देखिए, प्रीमेच्योर बच्चों में जो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उनके प्रॉपर केयर ना हो और उनको ऑक्सीजन की हाइपोक्सिक इंजरी ना हो, या कई बार उसको सीजर्स हो जाते हैं, या उस समय जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको सेप्सिस हो जाती है, या बच्चा पैदाइश होने में टाइम ज़्यादा लगता है तो कई बार HIE हाइपोक्सिक इश्मिक ब्रेन इंजरी हो जाती, तो उन बच्चों में डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, तो ये बच्चे देर से बैठना, देर से चलना, देर से बोलना, ये सब चीज़ें हो सकती है। उसको एक बार आप दिखा लीजिए एक अच्छे बच्चों वाले डॉक्टर को, तो उसमें ये बताइए वो बच्चा देर से बोलने के साथ साथ चला किस समय, बैठा किस समय, और उसकी नेक होल्डिंग कब आई, ये सब चीजें बताइए।
2: उसके चलने की करीब अभी कुछ समय पहले ही वो करीब 1.5 साल से ऊपर का जब वो पाया
0: हाँ,
2: था।
0: तो चला भी देर से, यानी ग्रॉस मोटर माइलस्टोन भी उसके डिलेड, तो टोटल डेवलपमेंट उसका स्लो है, क्योंकि 1 साल का बच्चा पैदल चलता है वैसे तो, है ना।
2: डॉक्टर साहब, जो 8.5 माह का जो बच्चा है, अगर उसको समय से पूर्व कह सकते हैं?
0: 8.5 महीने का बच्चा, हम बिल्कुल, अगर समय से पूर्व हुआ वो एक्चुअली 37 वीक से अगर गर्भावस्था कम है, जो नॉर्मल बच्चा कहते हैं हम 37 वीक से 42 वीक के बीच में जो पैदा होता है वो एक नॉर्मल गेस्टेशनल एज है, तो वो वहाँ पे नॉर्मल हुई, जो 37 वीक से पहले पैदा हो गया, नहीं 9 महीने से पहले पैदा हो गया, तो वो प्रीमेच्योर बच्चा है। और उसका बर्थ वेट कितना था, ये जरूरी है, उसका पैदा हुआ बच्चा तो उसका वजन कितना था,
2: 2.5 किलो।
0: 2.5 किलो था, तो और आप 8.5 महीने बता रहे हैं, तो प्रीमेच्योर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लेट प्रीटर्म है ये बच्चा, और लेट प्रीटर्म बच्चा है तो कई बार इन बच्चों में हाइपोक्सिक इश्मिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, या फिर और माँ को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं थी, जिन माओ को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी दिक्कत होती है, जिन मदर्स को शुगर की तकलीफ होती है उनके बच्चों को भी दिक्कतें आती हैं, तो माँ को अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या थायराइड प्रॉब्लम है, या अन्य कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, तो उसकी वजह से भी कई बार, ये बच्चे की पैदाइश नॉर्मल हुई थी या ऑपरेशन से हुई थी?
2: ऑपरेशन
0: ऑपरेशन क्यों हुआ?

0: आइए बताइए।
1: इसके बारे में तो जानकारी डॉक्टर साहब
0: नहीं
1: को
0: नहीं
1: होगा, उन्होंने
0: ऑपरेशन
1: बोला
0: देखो
1: था,
0: होने की जो
1: मैंने डॉक्टर
0: वजह
1: साहब से
0: है,
1: उन्होंने बोला था।
0: नहीं बोला तो किसी कारण, देखिए ऑपरेशन होना एक सामान्य चीज नहीं है। ऑपरेशन तब होता है जब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो पा रहा है, और आपका बच्चा ये एक तो प्रीमेच्योर बता रहे हैं आप 8.5 महीने का, और फिर ऑपरेशन बता रहे हैं। तो 8.5 महीने के बच्चे को ऑपरेशन क्यों करना पड़ा 2.5 किलो के बच्चे के लिए, एक वो भी जरूरी बात है।
1: ये जानकारी डॉक्टर साहब इतना उन्होंने दी नहीं थी, और जैसा बोला
0: नहीं
1: तो
0: दी नहीं,
1: मैंने
0: आपने
1: सोचा इसके
0: ली भी
1: बारे
0: तो
1: में।
0: नहीं, तो एक बार उसको भेजिए दिखाइए, फिर बताते हैं
1: आपके
0: आपको।
1: क्लिनिक पे इस तरह की समस्याओं का समाधान है क्या?
0: पहले कारण देखना पड़ेगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, समस्या का काफी हद तक निदान है, और अगर हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी है तो उसके लिए आप थोड़ा लेट हो गए, उन बच्चों का इलाज जल्दी होना चाहिए तो उनकी रिकवरी अच्छी होती है।
2: और कुछ जानना है आपको?
1: नहीं,
2: धन्यवाद धन्यवाद कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई है। लोगों को हिम्मत नहीं होती कई बार, तो कई बार उन्हें बताया भी नहीं जाता है कि क्या वजह है आखिर ऑपरेशन की।
0: कई बार वो इंसान सोच भी नहीं पाता है किस वजह से हम ये जानकारी हासिल करें,
2: बिल्कुल
0: है
2: बिल्कुल
0: ना।
2: जी, डॉक्टर किसी की बात पर सहमत होना ही पड़ता है सर, क्योंकि डॉक्टर ही सब कुछ। अच्छा, आप बात कर रहे थे सर जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट की जो फेफड़े के अंदर आपने बताया कि एक खास
0: तरल
2: एस,
0: पदार्थ होता
2: जी
0: है, जैसे हमारे बाइक्स में या आपके जो व्हीकल्स हैं उनमें मूवी ऑयल होता है,
2: इंजन ऑयल,
0: इंजन ऑयल होता
2: जी
0: है,
2: जी जी
0: उसी तरह से लंग्स को चलाने के लिए, उनको फैलने के लिए, सिकुड़ने के लिए फ्रिक्शन
2: जी
0: ना हो तो उसमें सर्फेक्टेंट होता है, और
2: अच्छा
0: सर्फेक्टेंट अगर डेफिशिएंट है तो लंग्स फिर
2: पूरा,
0: हार्ड टाइप हो जाते हैं, जिनको
2: अच्छा
0: मतलब लंग रिजिड बोल लीजिए, तो
2: अच्छा
0: वो
2: अच्छा
0: उनको खोलने फैलने में दिक्कत आती है,
2: दिक्कत
0: जिसकी
2: आती
0: वजह
2: है।
0: से बच्चा किनाने लगता है पैदा होने के बाद, उसकी सांस तेज चलने लगती है, जिसको हम लोग टेकिपनिया बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट उसका बहुत ज़्यादा होता है,
2: जी
0: और फिर रिट्रैक्शंस होते हैं, सांस में गड्ढे पड़ते हैं, ग्रंटिंग होती है, या जिसको किनाना बोलते हैं हिंदी
2: जी
0: में,
2: जी
0: ग्रंटिंग, सांस रिट्रैक्शंस, और फिर बच्चा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसकी वजह से बच्चे को हाइपोक्सिया होने लगता है, बच्चा कई जब हाइपोक्सिया काफी होने लगता है तो बच्चे नीले पड़ने लगते हैं, उससे पहले बच्चों को सेचुरेशन
2: अच्छा
0: मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इन बच्चों के लिए एक तो सर्फेक्टेंट थेरेपी होती है,
2: अच्छा
0: SRT बोलते हैं इसे,
2: हाँ
0: हाँ सर्फेक्टेंट रेस्क्यू थेरेपी। सर्फेक्टेंट भी दो तरह से देते हैं, एक प्रोफाइलेक्टिक है एक थेरेपेटिक।
2: अच्छा
0: प्रोफाइलेक्टिक जब हम सोच रहे होते हैं कि बच्चा बहुत प्रीटर्म है, मान लीजिए 28 वीक्स है या लेस है, और इसमें सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी होनी ही है,
2: जी,
0: तो वहाँ पे आप इससे पहले कि HMD डेवलप हो पहले ही आप सर्फेक्टेंट देते
2: ये
0: हैं।
2: पता आप कैसे लगाते हैं डॉक्टर साहब कि बच्चे के फेफड़े में सल्फेक्टेंट है या नहीं है, या फिर अगर
0: वो
2: देना
0: मैंने
2: होता है तो
0: आपको अभी
2: कैसे देते
0: लक्षण
2: हैं?
0: बताया ना,
2: जी,
0: देखिए
2: अच्छा
0: हाँ लक्षण ये है कि एक तो टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 पर मिनट,
2: अच्छा
0: रिट्रैक्शंस,
2: जी
0: गड्ढे सांस में पड़ना,
2: हाँ
0: बच्चे का किनाना, बच्चे का कराना, बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना।
2: अच्छा
0: CO2 मॉनिटर होता है, उसमें आप ऑक्सीजन लेवल नापेंगे तो वो less than 90 आने लगते हैं ना,
2: अच्छा
0: और फिर आपको ऑक्सीजन देने पे भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ती, बच्चे किनाने लगता है।
2: जी
0: गांव में जो हमारे लोकल सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं वो अक्सर कह देते हैं निमोनिया हो गया, तो
2: हाँ
0: ये तकलीफ निमोनिया नहीं है,
2: अच्छा
0: ये
2: वजह कुछ और
0: निमोनिया
2: है।
0: के जैसे लक्षण है लेकिन वजह सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी है। और एक अच्छी बात यह है कि सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी कम होती है अगर ट्रीटिंग डॉक्टर को, जो माँ जिससे इलाज करा रही है और उस डॉक्टर को ये आभास है कि ये प्रीमेच्योर बच्चा हो सकता है, तो जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन या वीटामेथासोन वो माँ को दिए जाते हैं, उससे लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी होने के
2: संभावना कम हो जाती है।
0: संभावनाएं कम हो जाती हैं।
2: जी,
0: तो अगर किसी भी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर या गायनकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं उनको ये आभास है कि इस माँ को बच्चे प्रीमेच्योर हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है या प्लेसेंटर प्रीविया है या फिर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि ग्रोथ अंदर नहीं हो पा रही और आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ेगी, आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन या वीटामेथासोन लगाते हैं मदर्स को,
2: जी
0: उसका एडवांटेज होने वाले शिशु को मिलता है कि लंग्स मेच्योर हो जाते हैं और आपको सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी नहीं होती, तो आप कई बार सर्फेक्टेंट लगाने से बच भी सकते हैं।
2: जी जी बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये ध्यान रखने की बात है, और विशेष तौर से उन डॉक्टर्स के लिए चाहिए जो माता का इलाज कर रहे हैं, जो
0: जी
2: परिस्थितियां अगर दिखती हैं तो जरूर इस तरह के इंजेक्शन का
0: नहीं वो
2: उपयोग करें।
0: लगाते हैं,
2: जी
0: वो
2: जी
0: लगाते हैं, ये तो बहुत कॉमन थेरेपी है।
2: अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए अगर किसी बच्चे में वाकई में सर्फेक्टेंट कम है या नहीं है तो आप लोग किस तरह देते हैं, क्या कोई मशीनें वहां काम आती हैं या फिर
0: देखिए
2: कोई और तरीका
0: सर्फेक्टेंट
2: है?
0: देने की जो विधि है,
2: आपने दो तरीके बताए।
0: नहीं, वो दो तरीके इंडिकेशन है,
2: अच्छा
0: प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेपेटिक।
2: अच्छा
0: थेरेपेटिक
2: अच्छा
0: मतलब ट्रीट करने के लिए,
2: जी
0: और प्रोफाइलेक्टिव मतलब उस चीज को आप पैदा ही नहीं होने दे रहे
2: आप
0: हैं,
2: बिल्कुल
0: बनने ही नहीं दे रहे हैं।
2: जी
0: देने के तरीके भी कई हैं
2: अच्छा
0: जो

0: सबसे कॉमन तरीका पहले होता था इंट्यूबेट करना, है इंश्योर टेक्निक कहलाती थी। इसमें आप इंट्यूबेट करते हैं, सर्फेक्टेंट देते हैं और फिर एक्सट्यूबेशन करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो एक ट्यूब होती है जिसको इंट्रोटेकल ट्यूब बोलते हैं, इसको सांस के रास्ते यानी ट्रेकिया में डाल के और आप सर्फेक्टेंट देते हैं और वो जिससे कि दोनों फेफड़ों में चला जाए
1: जी जी,
0: और उस ट्यूब को बाद में निकाल लेते हैं
1: जी।
0: ये तरीका इंश्योर। अब नए जो तरीके हैं उनमें लीसा एंड मीसा।
1: अच्छा,
0: लीसा मीन लीस्ट इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी या मीसा है मिनिमल इन्वेजिव सर्फेक्टेंट थेरेपी।
1: अच्छा,
0: तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इंट्यूबेट भी नहीं करते, आप इंट्रोटेकल ट्यूब भी नहीं डालते, एक कैथेटर लेके इसको सक्शन कैथेटर या आप एनजी ट्यूब या सर्फेक्टेंट डालने के लिए भी कैथेटर स्पेशली आते हैं
1: जी।
0: तो उसको आप प्लेस करके और बिना इंट्यूबेट करे आप सर्फेक्टेंट देते हैं, तो उसमें वो और बेहतर विधि है देने की
1: जी।
0: और उसमें आप इन्वेजिव वेंटिलेशन से बच जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और ये बच्चे सीपैप जो कि एक कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे थेरेपी है
1: जी,
0: वो सीपैप मशीन पे आप लगा के इनको बच्चों को सर्वाइव करवा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के जरिए थ्रू वेंटिलेटर्स।
1: अच्छा,
0: तो आपको इन्वेजन से बच जाते हैं। इन्वेजन का मतलब आप कोई ऐसा प्रोसीजर करें जिसमें आप शरीर के किसी हिस्से में अंदर घुस रहे हैं, तो इंट्यूबेट करे बगैर भी आप सर्फेक्टेंट दे सकते हैं और इंट्यूबेट करके भी सर्फेक्टेंट दे सकते हैं।
1: ये नई तकनीक है,
0: नई तकनीक में बिना इंट्यूबेशन के देते
1: बिना इंट्यूबेशन के देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिकल साइंस में नित नए आविष्कार हो रहे हैं और आप जो बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये भले ही हमारे आम आदमी की समझ से बाहर की हो लेकिन बड़ी
0: नहीं
1: महत्वपूर्ण
0: नहीं
1: बात
0: आम
1: है।
0: आदमी समझ बहुत सिंपल है
1: जी
0: भाई, एक तकनीक है, आप जब कोई चीज अंदर घुसा रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वहाँ डैमेज होने का
1: बिल्कुल,
0: चांस रहता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और दूसरा, आप जब सर्फेक्टेंट देते हैं तो अगर आप इंट्यूबेट करके दे रहे हैं तो आप पीछे से एक प्रेशर भी देते हैं
1: जी जी
0: जिससे कि वो दवाई नीचे चली जाए
1: जी
0: और बच्चों को फिर आप मैकेनिकली वेंटिलेट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत लंग डैमेज करने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप इंट्यूबेट कर ही नहीं रहे वैसे ही ट्रेकिया में,
1: यानी बिना कोई औजार अंदर डाले ऐसे ही ट्रेकिया से
0: हाँ
1: दे
0: बस
1: रहे हैं।
0: वहाँ पे आप ट्रेकिया के मुंह पे पहुँच के वो दवा को डाल लें
1: जी जी
0: और वो दवा
1: उस
0: फेफड़े में पहुँचनी चाहिए, वो पेट
1: बिल्कुल
0: में नहीं आनी चाहिए,
1: जी
0: अगर पेट में गई तो वो दवा काम नहीं करेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फेफड़े में जाएगी तभी फायदा
0: जी
1: करेगी और ये वाकई में सुरक्षित तकनीक है। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पर आ गए, इनसे बात करते हैं।
0: हेलो
1: जी जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, बताइए अपना प्रश्न बताइए।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
2: सर मुन्ना लाल जी बोल रहे हैं।
0: हाँ हाँ, मुन्ना लाल जी का फोन आज आ गया है
1: जी।
0: कैसे हैं मुन्ना लाल, आप बहुत दिनों से आपको फोन नहीं आ रहा था, तो प्रश्न क्या है आपका?
1: हाँ, ताजपुर के मुन्ना लाल जी हैं सर, हमारे नियमित श्रोता हैं
0: जी, बताइए।
2: सर ये पूछ रहे हैं कि नवजात शिशुओं में जो अस्पताल में लिखा जाता है कि जैसे HFO वेंटिलेटर की सुविधा, ड्रैगर मशीन की सुविधा, ABG मशीन की सुविधा, इनक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, ये किस स्थिति में कब कहाँ पर बच्चों को कब कब जगह जरूरत पड़ती है जो इस्तेमाल किया
1: जी?
0: आप चलिए, आपके जो प्रश्न का बहुत बड़ा प्रश्न है इसके जवाब धीरे धीरे एक एक करके देते हैं। तो सर्वप्रथम जो आपने सवाल किया कि इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स वो क्लोज मशीन है एक्चुअली टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो हम दो तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन की मशीन यूज करते हैं, एक जो होते हैं ओपन बार्मर्स और दूसरी मशीन होती है इंक्यूबेटर्स, और तीसरी तरह इसमें एक मशीन होती है जिसको हम जिराफ ओमनी बेड भी बोलते हैं, जो दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाती है, एज ए रेडिएंट बार्मर भी और एज ए इंक्यूबेटर्स भी, क्योंकि जब उसे ओपन कर लेते हैं तो एज ए बार्मर काम करती है और जब क्लोज कर लेते हैं तो एज ए इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो मशीन अच्छी है वो छोटे बच्चों के लिए अच्छी है, जो जिनके वजन खासतौर से 1 किलो या उससे कम वजन के जो बच्चे हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो जाती है। रेडिएंट बार्मर्स में ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए जो प्रीटर्म बच्चे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 1.5 किलो के 2 किलो के बच्चे हैं, उनको रेडिएंट बार्मर्स उपयुक्त मशीन है, और जो बहुत कम वजन के बच्चे हैं उनको इंक्यूबेटर्स। दूसरी मशीन कौन सा आप जानना चाहते हैं?
2: HFO
0: वेंटिलेटर। आपका ये सवाल तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई मेडिकल डॉक्टर हैं क्या?
1: बहुत तकनीकी प्रश्न है।
0: हाँ, तकनीकी प्रश्न। HFO वेंटिलेटर बोलते हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, या HFV बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो हम वेंटिलेटर्स जो बच्चों को होते हैं या इन्फेंट्स के होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी रेट जो हम लोग सेट करते हैं वो 40, 45, 50, 55, 60 तक का। जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा ज्यादा सेट करते हैं मशीन पे, जिससे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज के पास पहुंच जाए बच्चा। और जो HFO मशीन होती है, जब नॉर्मल वेंटिलेशन काम, वेंटिलेटरी मशीन जो नॉर्मल वेंटिलेशन वाली मशीन है वो काम नहीं करती है, और बच्चे की डेस्परेट ऑक्सीजन ज्यादा देने के बावजूद, ज्यादा पीप देने के बावजूद बच्चा जो मशीन

इन काम नहीं कर पाती, तो हम लोग HFO मशीनें यूज करते हैं जिनमें की हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेशन, मतलब एक मिनट में आप 600 सांस इससे अधिक भी सांसें दे सकते हैं। तो नॉर्मल वेंटिलेशन हम 60 तक देते हैं, और जो HFO मशीनें अक्सर उनमें जो शुरू करते हैं 10 की फ्रिक्वेंसी शुरू करते हैं, उसमें एक मिनट में 600 बार सांस देते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है, जो उसका मैकेनिज्म है उसमें आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अलग अलग कंट्रोल

0: इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीओ टू रिमूवल और ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन दोनों पार्ट इसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो कई बार बच्चे जो नॉर्मल वेंटिलेशन पे नहीं चल पा रहे हैं वो HFO वेंटिलेशन पे चल जाते हैं। तीसरा आपकी मशीन थी फोटोथेरेपी मशीन। फोटोथेरेपी मशीन इस्तेमाल होती है उन बच्चों के लिए जिनका पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रीमेच्योर बच्चों में पीलिया की लिमिट थोड़ा नीचे रखी गई है, तो 12 मिलीग्राम या और वेरी प्री टर्म बच्चे हैं जिनका वजन बहुत कम है उनके लिए एक अलग कर्व है, एक अलग ग्राफ है जो आते हैं आप वो नेशनल फोरम ऑफ न्यूनेट्स NF के वो आते हैं ग्राफ, तो उस पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे आपको फोटोथेरेपी की जरूरत है। तो जितना बच्चा कम वजन का होता है उसको फोटोथेरेपी उतनी जल्दी लग जाती है, और जो टर्म बेबी होते हैं उनमें जो फोटोथेरेपी लगाने की लिमिट है 14 मिलीग्राम। हाँ, तो फोटोथेरेपी लगाना इसलिए जरूरी है अगर बिलोबिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 20 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है अगर, और बच्चा हमारे 3 दिन का 4 दिन का ही बच्चा है, तो उसमें कई बार बच्चे को ब्रेन में बिलिरुबिन एन्सेफलोपैथी होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसको हम लोग कंडक्टेरस भी बोलते हैं।
1: तो बिलिरुबिन मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा,
0: एक मिनट, बिलिरुबिन जो ब्रेन में पहुंच जाता है 20 मिलीग्राम से ज्यादा होता है तो वो बच्चा को हैंडीकैप कर सकता है। आप पूछिए आपके
1: जी, ये ब्लूरुबिन जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जो नवजात शिशु है उनमें पीलिया हो जाता है तो उससे संबंधित होता है ना?
0: जी, बिलिरुबिन को हिंदी में पीलिया कहते हैं, बिलिरुबिन बढ़ने को, लेकिन ये नवजात शिशुओं का पीलिया बड़े वाले पीलिया से बिल्कुल अलग होता है। जो बड़े लोगों को पीलिया होता है वो वायरल हेपेटाइटिस होती है
1: जी,
0: तो वो वहाँ पे अक्सर जो जॉन्डिस बढ़ता है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों बढ़ते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें मेनली जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है बिकॉज वो प्रीमेच्योरिटी की वजह से, और वहाँ पे अक्सर जो एडल्ट्स में होता है हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अन्य वायरल हेपेटाइटिस होती है या कोई ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है। जो नवजात शिशु में पीलिया होता है वो एक तरह से कई बार फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है
1: जी।
0: तो अगर कोई नवजात शिशु है जो जिसका प्रीटर्म नहीं है तो अगर 10-12 तक बिलिरुबिन जा रहा है तो वो नॉर्मल है, वो कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। तो इलाज की जरूरत जब होती है जब पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है
1: जी, जी।
0: पीलिया 20 से या उससे ज्यादा हो जाता है, या जब नवजात शिशु में पीलिया शुरू होता है तो शुरुआत होती है चेहरे से
1: जी।
0: तो चेहरे पे जो पीलिया होता है वो 5 मिलीग्राम तक का होता है।
1: अच्छा।
0: और चेहरे के बाद ट्रंक पे आता है, पेट पे और पीठ पे
1: जी, जी।
0: तो यहाँ तक होता है 10 मिलीग्राम, और फिर नीचे इसको केफेलोपेडल प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर तलवे तक पीलिया आ रहा है तो ये वो 15 मिलीग्राम के या उसके ऊपर है
1: जी, जी।
0: तो जिस बच्चे को पीलिया ज्यादा हो गया या जिस बच्चे का बिलिरुबिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मान लो पहले ही दिन या दूसरे दिन पीलिया उसका 12-14 हो गया, तो इससे यानी तीसरे चौथे दिन पीलिया और ज्यादा हो जाएगा
1: जी, जी।
0: तो उन बच्चों में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके फोटोथेरेपी दी जा सकती है, या बच्चे का पीलिया बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लड एक्सचेंज भी करते हैं, टोटल ब्लड एक्सचेंज करते हैं जिसमें पूरा बच्चे का ब्लड बदल देते हैं।
1: ये काम तो डॉक्टर बड़ा तकनीकी काम है,
0: तकनीकी काम है लेकिन करते हैं हम लोग, करते हैं।
1: अच्छा। जी मुन्ना लाल जी, और कोई प्रश्न आपका?
2: एबीजी और ओईआर मशीन,
0: एबीजी मशीन तो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एक्चुअली जो हमारे लंग्स काम करते हैं उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है ऑक्सीजनेशन जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के लिए, दूसरा काम होता है वेंटिलेशन जिससे हम CO2 अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एबीजी मशीन हमारे शरीर ब्लड में कितनी PO2 है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, उस मशीन के द्वारा ये दोनों गैसेस नापी जाती हैं ब्लड के अंदर। नॉर्मल जो CO2 होती है वो 35 से 45 के बीच में होती है, ऑक्सीजन होती है 80 से 100 के बीच में
1: जी।
0: तो इस रेंज से जब ऊपर नीचे होती है तो हमें वेंटिलेशन में चेंज करना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति वेंटिलेशन करता है उसके एबीजी मशीन मैंडेटरी है, उसके बिना उसको आइडिया नहीं लगेगा कि उसकी CO2 लेवल क्या है और PO2 लेवल क्या है। तो एबीजी मशीन और किस मशीन के बारे में आप? ओईएवीआर एक ये है ऑटिस्ट, उसके लिए आपका हियरिंग स्क्रीनिंग मशीन है, जो बच्चे को नॉर्मल सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा उसको टेस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ABR होता है और OE दोनों एक बार कंबाइंड भी होती है।
1: अच्छा।
0: और एक और कॉमन मशीन है जिसको TCB भी बोलते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनमीटर, जिसको आप बिना ब्लड के खून लिए बगैर ही पीलिया की आप जांच कर सकते हैं,
1: बिना खून लिए,
0: बिना खून लिए बॉडी टच करके, स्पेशली ईयर लोबियल चेस्ट पे फोरहेड पे आप मशीन को टच करिए, वो आपको बता देती है, अप्रोक्सीमेट बताती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं। तो अगर उससे आपको मशीन टीसीवी से पता लग रहा है कि 14 से ऊपर है तो आप फिर ब्लड की जांच करा लीजिए, तो वहां से पता लग जाएगा।
1: तो ये तो बहुत तकनीकी बातें हैं।

0: लाल जी जो आपने
1: हाँ,
0: पूछी है।
1: आपने मनाला जी, आप अगले प्रोग्राम में प्रश्न करिएगा, क्योंकि अब हमारे साथ समय पूरा होने वाला है।
0: जी जी, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए, और इतना तकनीकी ज्ञान आप जहाँ से भी अर्जित करते हैं उसके लिए हम आपको भी और जिनसे सीखा है उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि समय जैसा आपने कहा सीमित है हमारे कार्यक्रम का, तो हम ये चाहेंगे आज का ये रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम ऐसे समय में हमारे श्रोताओं तक जा रहा है,
1: आज इसको पार्ट वन कर लीजिए, पार्ट टू अगली बार
0: जी,
1: कर लेते।
0: बिल्कुल, कोई और मशीन अगर जिसके बारे में
1: अभी बहुत कम जानकारी हम लोगों को दे पाए।
0: जी, जी
1: और इसमें अभी बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी चीजें हैं जो और बतानी है।
0: और भी मशीनें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है इलाज में, और ये कहा जाता है कि वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता उन मशीनों के विषय में भी जान लें जो कि नवजात शिशुओं के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और आसानी से उपलब्ध नहीं हो।
1: देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं वेंटिलेटर्स की, सीपैप मशीन की, दूसरा टीसीबी की, बाकी मॉनिटर्स, मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, जिससे आपको बच्चे के बारे में हार्ट रेट का, बच्चे के SpO2 का, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट का, टेम्परेचर का, तो ये मल्टीपैरा मॉनिटर होते हैं जो 5-6 चीजों को आपको बताते हैं, ECG, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, हार्ट रेट, टेम्परेचर।
0: अच्छा,
1: तो ये मल्टीपैरा 5 जो वाइटल्स हैं वो एक साथ बताते हैं।
0: अच्छा,
1: इसके बाद जो और इससे ऊपर के ज्यादा पैरा वाले मॉनिटर्स होते हैं उनमें आप IBP नाप सकते हैं।
0: जी, ये IBP क्या है डॉक्टर साहब?
1: इनवेजिव ब्लड प्रेशर।
0: अच्छा,
1: इसमें RTL कैनुलेशन करके हम एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर आ जाता है।
0: अच्छा,
1: अदरवाइज जो हम लोग BP नापते हैं वो कफ बांध के नापते हैं।
0: जी, जी,
1: तो कई बार जो नवजात शिशु होते हैं, सीरियस बच्चे होते हैं, उनका उस विधि से BP आ नहीं पाता या फिर सही से नहीं आ पाता।
0: जी, जी,
1: तो उसके लिए हम लोग फिर आगे सीरियस बच्चों के लिए इन्वेजिव ब्लड प्रेशर भी नाप सकते हैं। और एक और पैरामीटर होता है जिसको ETCO2 बोलते हैं।
0: ETCO2,
1: हाँ जी, जो हम हवा बाहर फेंक रहे हैं अपने फेफड़ों से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है।
0: अच्छा,
1: तो हमारा दोनों जो वेंटिलेशन, जो वेंटिलेटर मशीन करती है, दो काम करती है, शरीर को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है।
0: अच्छा,
1: तो अगर हम लोग एडिक्वेट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, उसके लिए ETCO2 मशीन मॉनिटर यूज होता है।
0: जी, जी,
1: तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट मशीन है आपका मॉनिटर्स हो गए, सिरिंज पंप्स।
0: जी,
1: जो नवजात शिशु हैं जिनका वजन बहुत कम है, मान लीजिए 600 ग्राम का बच्चा है या 500 ग्राम का बच्चा है,
0: जी,
1: उसको बहुत लिमिटेड आपको IV फ्लूड देना है।
0: 600 ग्राम, 500 ग्राम के भी बच्चे
1: हाँ बिल्कुल बच जाते हैं।
0: अभी हमारे
1: ट्विंस थे एक, तो वो एक का 600 ग्राम वजन था, एक का 650 ग्राम वजन था।
0: जी,
1: वो ठीक होके गए।
0: बहुत कम वजन है,
1: वजन कम वजन है, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर देखभाल कर पाओ और उनके साथ उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि नेक्रोडाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस ना हो, रेटिनोपैथी हो, प्रीमेच्योरिटी ना हो, ROP उनका चेक कराइए, उनकी हियरिंग चेक कराइए, उनका बीच में सेप्सिस ना हो, उसके लिए आप उनके CBC और सेप्सिस स्क्रीन कराइए और साथ में ब्लड कल्चर कराइए। तो इन सब चीज़ों को आप चेक कराते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको PRBC ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इन बच्चों में CPAP है या सर्फेक्टेंट थेरेपी है
0: जी,
1: उसकी जरूरत पड़ती है तो उस तरह से, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो, फिर इनको टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छी मशीन होनी चाहिए जो टेम्परेचर रेगुलेट करे उनका, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इंक्यूबेटर्स अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, और थोड़ा सा अगर लेट प्रीटर्म है तो उनके लिए आप बार्मर्स भी यूज कर सकते हैं
0: जी,
1: और फिर इनका रेगुलर आपको ब्लड शुगर भी मॉनिटर करना पड़ता है, तो और फिर इनके बीच बीच में आपको एक्सरे भी लेने होते हैं।
2: प्रायोजक
0: मिलेंगे से, मैं मुकेश कुमार पांडे, डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी के साथ आप सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096484।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय था समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर स्थिति, इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार और आपसे बातचीत कर रहे थे मुकेश पांडे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: हमारे सुनने वालों को बताएं कि इस साइबर सुरक्षा क्या है।
2: देखिए, कहते हैं कि चाहे हम अपने घर में रह रहे हों तो हम घर के बाहर गेट लगाते हैं, ताला लगाते हैं। हम अगर कहीं रोड पर निकलते हैं किसी वाहन से तो सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन यानी अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, तब उस समय हमें जितने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी है या आपके ऊपर होने वाले हमले हैं उनसे बचने के लिए साइबर सुरक्षा की जाती है। उसके कई सारे लेवल्स हैं और ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आजकल सारे व्यापार, सारा बिजनेस, हर एक चीज, सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी हो, सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। और एक रीढ़ की हड्डी अगर कहें तो वो ऑनलाइन है। तो इसीलिए ऑनलाइन अगर आना है तो सुरक्षित रहना, वही साइबर सुरक्षा है।
1: अच्छा, आम नागरिक जिस तरीके से साइबर अपराध का शिकार होता है, वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं इस तरह के लोग?
2: देखिए, तरीके कई सारे हैं। सबसे पहले तो जब अभी अगर पहले का समय बात करें तो जब साइबर अपराध की शुरुआत हो रही थी तो ईमेल पर लॉटरी के मेल भेजते थे, मोबाइल पर मैसेजेस भेजते थे टेक्स्ट में, उसी से साइबर अपराधी आगे कम्युनिकेशन करते थे। उसके बाद अब आया कि साहब OTP आ गया, तो जब OTP आए तो OTP लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। आज समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, म्यूल अकाउंट्स का है और कहीं ना कहीं डेटा हार्वेस्टिंग का है, डेटा थेफ्ट का है। अगर बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन जितनी भी चीजें आती हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें खुद से पता नहीं चलता। उदाहरण स्वरूप मैं आपसे लेता हूँ, एक व्यापारी है
1: जी,
2: किसी भी चीज का व्यापार कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर रहा हो, अगर वो व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देता है तो व्यापार बढ़ाने, फ्रेंचाइज देने या किसी भी नए व्यापार के प्रारंभ यानी शुरुआत करने हैं तो जो मार्केट प्राइस है उससे नीचे की चीजें उसको देना, ऑनलाइन ऑफर करना, इस तरीके की चीजों से वो ऑनलाइन उनकी बातों में आके कहीं ना कहीं अपना बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए निजी जानकारियों को साझा कर देता है। और जो ये डेटा मिलता है वही डेटा से बाद में साइबर अपराधी अपराध घटित करते हैं। ऐसे ही एक बच्चा जो नौकरी सर्च कर रहा है, वो नौकरी के लिए कई जगह पर अपने आवेदन कर रहा है तो वहाँ वो अपने निजी सारी जानकारियां दे रहा है। इस प्रकार से अन्य जो लोग कॉमन बैठे हुए हैं, कभी वो किसी वीडियो देखने के लिए, कभी कोई मूवी देखने के लिए, कभी रिव्यू देखने के लिए, कभी फेसबुक पर रील्स स्क्रॉल करने के लिए, मतलब कहीं पर भी, जहां पर भी हम किसी भी अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि अब ये सर्फिंग भी इंटरेस्ट बेस्ड हो चुकी है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई करूं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएंगे।
1: जी जी जी।
2: क्योंकि ये सर्च रिलेटेड क्वेरीज हैं। जैसे अगर हम बात करें, गूगल भी स्मार्ट है तो गूगल का भी रोबोट है क्रॉलर, CRAWLER। तो क्रॉलर क्या करता है कि आपके प्रीवियस हिस्ट्री को अगर आप अपने ब्राउजर में भी लेके चलते हैं, चाहे वो किसी भी ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर हो, तो उनकी भी हिस्ट्री में सेव होता है। तो इन आधार पर जो ब्राउजर में सेव हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप जिस भी थर्ड पार्टी किसी भी सर्वर में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं इन्फॉर्मेशन से आपके साथ अपराध घटित हो जाता है। और अब वो अपराध नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट से भी जुड़ा हुआ अपराध है। सिर्फ पेमेंट कटने से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पेमेंट आने से भी आप जेल के सलाखों में पहुंच जाएंगे।
1: आजकल हमने देखा कि कई बार बैंक का अधिकारी बन करके या कोई पुलिस अधिकारी बन करके या कोई फर्जी कर्मचारी बन करके कोई अगर फर्जी फोन कॉल करता है तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये फर्जी है करके?
2: देखिए, सबसे पहले तो कि डिजिटल अरेस्ट, आप जो बात कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में आजकल डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है, जिसमें शख्स कोई भी कोर्ट में कोई भी जज ऑनलाइन अपीयरेंस लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जज साहब खुद से फोन करके आपकी तुरंत ही कोर्ट बैठ जाए, सारा प्रोसेस इंस्टेंट हो, ये सारा प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता है। इसकी पहचान करने का तरीका ये है, जब भी आपको किसी थाने से फोन आता है तो आप प्रत्यक्ष

0: रूट टाल दें। कहते हैं ना प्रेमा फेसिया, यानी प्रथम दृष्टि आपको यही करना है, आपको यही कहना, बहाना मार के कि ठीक है मैं 2 दिन के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, मैं 2 दिन बाद आपसे बातचीत करता हूँ या करती हूँ। तो उससे क्या है कि अगर वो साइबर अपराधी है तो वो उसी बात पर भड़क जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है या कहीं पर भी कुछ है, अपेरेंस के लिए कोई आपको डायरेक्ट फोन करके नहीं कहेगा कि आप तुरंत चले आइए सारा काम छोड़कर, उसमें भी पूर्व में सीआरपीसी में हमारे पास अधिकार था 411, जिसको 41(1) कहते हैं हम, तो उसमें सीआरपीसी में प्रावधान था कि पुलिस अधिकारी आपको नोटिस सर्व करेगा तब आपको बुलाएगा। नवीन धाराओं में भी अगर हम बात करें, बीएनएसएस में 35(3) का अधिकार है उनके पास कि वो 3503 की आपको बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की आपको एक नोटिस सर्व करेगा। नोटिस में भी आपको ऐसा नहीं कि आप तुरंत आ जाइए या तुरंत ऑनलाइन आ जाइए, उसमें भी कहा जाता है कि विदिन 15 डेज और विदिन 10 डेज आप आइए और हमारे को जांच में सपोर्ट कीजिए।
1: अच्छा, ये हम लोग जो पेमेंट करते हैं यूपीआई से या क्यूआर कोड के इस्तेमाल से, तो इस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है सुरक्षा की दृष्टि से?
0: देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ऑनलाइन तो अब क्योंकि डिपेंडेंसीज हो गई हैं, हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन के बगैर जमाना चलेगा ही नहीं,
1: जी।
0: क्योंकि कई ऐसे अमाउंट्स होते हैं आप देखते हैं जैसे 139 रुपीज, 249 रुपीज, तो अब जो छोटा पैसा चेंज जो है, अब लोगों के जहन में भी ये चीज आ चुकी है कि ठीक है भाई हम चेंज लेके जेब में क्यों घूमें, जो क्वाइंस है उन्हें रखने में दिक्कत
1: हाँ
0: होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: हर व्यक्ति की
1: जी जी
0: समस्या है, इसलिए डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है यूपीआई पर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर, और इन पर इनमें सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी चाहिए कि कभी भी यूपीआई में जो हम मतलब स्कैन करते हैं उससे हमें पेमेंट आती है या उससे पेमेंट जाती है, आना और जाना इसी में कंफ्यूज कर देते हैं। गूगल पे पर या फोन पे पर या किसी अन्य पे पर जितने भी ये हैं, इन सारे में ऑप्शन ये भी आता है कि आप पेमेंट को कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। इवन जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी एप्स में भी ये एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट जाकर वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी यूपीआई आईडी से, तो वहां पेमेंट आप ले नहीं रहे, आप पेमेंट वहां पे उल्टा कर दे रहे हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है और यू जस्ट ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द कंसर्न डोनर। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, किसी को भी पेमेंट अगर करनी भी हो तो 1 रुपए की पेमेंट पहले इनिशिएट करें, चेकआउट करें,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद
1: जी
0: फिर कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करें।
1: हमारे सुनने वालों को बताएं कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, फौरी तौर पर उसको क्या करना है?
0: देखिए सर्वप्रथम अगर कहें तो हमारे पास जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जैसे पुलिस को बुलाने के लिए 112 डायल किया जाता है, इसी प्रकार से अगर आपके साथ साइबर अपराध या धोखाधड़ी हो जाती है तो आप 1930 यानी 1930 इस नंबर पर आप डायल करेंगे और इस नंबर पर आप जाके अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। www.cybercrime.gov.in सरकारी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप ऑनलाइन, आपके पास चाहे वो वित्तीय आपके कोई लेन देन है, चाहे आपको सोशल मीडिया पर कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, चाहे अतिरिक्त आईटी या आईटी से रिलेटेड या अदर देन जो भी साइबर से जुड़े हों, उनको आप वहां पर कंप्लेन निश्चित कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर।
1: दोस्तों, यदि आपके साथ वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होती है तो भारत में तुरंत, जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, कि 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें और जो आधिकारिक जो पोर्टल है उस पर शिकायत करें। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि संकल्प लें कि डिजिटल सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी से करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। याद रखें, सतर्क नागरिक, सुरक्षित डिजिटल भारत। डिजिटल दुनिया में समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मोहित जी, आप हमारे स्टूडियो आए और साइबर सुरक्षा के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे थे मोहित बजाज से सुरेंद्र राजेश्वरी की भेंट वार्ता, विषय था साइबर सुरक्षा।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:10 और इसी के साथ आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के गाए देवी भजन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के गाए देवी भजन, और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार सायं 6:30 से सायं 7:20 तक कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30 और इसी के साथ आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है नीरजा पंडित और अभिजीत ने। गीत के बोल हैं गुलजार के और संगीत जतिन ललित का।

अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत फिल्म का गीत। आवाजें थी अभिजीत और नीरजा पंडित की। कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, अभी रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्य।

कार्यक्रम और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में संघर्ष फिल्म का गीत। श्रोताओं, इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत जतिन ललित का।

संघर्ष फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी सोनू निगम की। आइए अब आपको सुनवाते हैं परिंदा फिल्म का गीत, सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाजों में।

परिंदा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं सुरेश वाडकर और आशा भोसले की, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया।

0: दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है।

0: कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों

0: भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
3: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
5: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
3: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी।

0: एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए मैं।

0: हम सुन रहे थे ये गीत सुहाना सफर फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए में ये गीत जो है फिल्म तेरे मेरे सपने से। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गोपाल दास नीरज के बोल हैं और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरे अपने फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और कार्यक्रम आपके लिए समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा।

0: जा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या कथु थे मेरी, जरा बताओ तो।

0: रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।
1: हाँ, हाँ।

0: चार लगे पचासी झटके हो शेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया।

चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला, ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों, रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा,

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ, पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT इंटरनेट स्ट्रीमिंग।
3: नमस्कार,
4: ये आकाशवाणी है। अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
5: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
4: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका है और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी है। अर्चना को MS सुबलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
5: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasanta Lakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present.

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतिया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतिया, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्री गुरु गुहा, विच इज सेट इन रागा उदय रविचंद्रिका।

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापू ताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंग पर बालकृष्ण भस्म ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mrudangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा

0: द्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain underrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more represented. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture, and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PSD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council and the Eurasian Economic Union. The National Investigation Agency has registered a case to investigate last month's mid-air cockpit attack on Captain Smith Machar aboard a Fly Dubai flight. The case has been registered under the relevant provisions of the Anti-Hijacking Act 2016 and the Unlawful Activities Prevention Act 1967.